वंदे मातरम, सुप्रभात, नमस्कार। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूँ आप सभी का रेडियो साथी सैकत चटर्जी। आप सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें, इसी मंगल कामना के साथ आपका स्वागत है आज की हमारी प्रातकालीन सभा में। आज है दिन गुरुवार, अंग्रेजी सन ईस्वी 2026 की अक्टूबर माह की 15 तारीख, तदनुसार शक संबत 1948 की आश्विन माह की 23वीं तिथि। अभी हमारी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री लेह स्थित कोशुक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निमू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाह हनु खालसी ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के अंतर्गत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपए और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपए होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर

0: किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
1: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते SIOFA में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि समिति किसानों के प्रतिनिधियों, चीनी मिल संघों, राज्य सरकारों और अन्य विशेषज्ञों सहित सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेगी। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अभी भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी हैं। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथी T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के 248 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 220 रन ही बना सका। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने मात्र 50 गेंदों में 102 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र FM के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आप इससे पहले हमारे दिल्ली केंद्र से जुड़कर सुन रहे थे हिंदी समाचार। आइए दोस्तों, अब आकाशवाणी डाल्टनगंज की प्रस्तुति सुनते हैं खेती की बातें। आज का विषय है पॉली हाउस में बेमौसमी सब्जी उत्पादन। वाचन स्वर रेडियो साथी प्रतिमा वर्मा का है।
3: किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें की आज की इस कड़ी में बातें पॉली हाउस में बेमौसमी सब्जियों की खेती के बारे में। सब्जी उत्पादन और आधुनिक बागवानी में पॉली हाउस का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि किसान कुछ विशेष सावधानियों को ध्यान में रखें तो इसमें बेमौसमी सब्जियों की खेती एक वरदान के रूप में सिद्ध हो सकती है। पॉली हाउस में आम तौर पर सभी सब्जियों को उगाया जा सकता है, पर सब्जियों का चयन पौधों की ऊंचाई, मौसम, सब्जी तैयार होने का समय, उत्पादन लागत और बाजार भाव को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इसके लिए ज्यादातर उन सब्जियों को चुनें जो कम जगह घेरती हो और उनका बाजार भाव ज्यादा मिलता हो। पॉली हाउस में उगाने के लिए बहुत सी सब्जियां उपयुक्त रहती हैं, जैसे शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा, खरबूजा, लौकी, गोभी, बैंगन, फ्रेंच बीन, करेला, तरबूज वगैरह। पॉली हाउस तकनीक के उपयोग हम आपको बता दें, विपरीत मौसम यानी बेमौसमी सब्जियों की नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं और कम समय में नर्सरी तैयार होती है। ये संरचनाएं सब्जियों को ठंड, पाला, गर्मी और हवा से बचाती है। सब्जियों की अगेती पौध तैयार करने में सहायक है, जिससे अगेती फसल लेकर ज्यादा भाव में बाजार में बेचा जा सकता है। अधिक मूल्य वाली सब्जियों का उत्पादन करना पॉली हाउस तकनीक से संभव हो पाया है। बेमौसमी सब्जी उत्पादन खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर का वर्ष भर उत्पादन किया जा सकता है। सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी भी संभव है। सब्जियों की गुणवत्ता बढ़ती है। कीड़ों और बीमारियों की रोकथाम आसानी से की जा सकती है। सब्जियों की मोनोक्रॉपिंग को बढ़ाना यानी साल में कई बार फसल उगा सकते हैं, जिससे क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ती है। ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में सब्जियों की नर्सरी का विकास तेजी से होता है। इसमें सब्जियों की विपरीत मौसम में नर्सरी तैयार करके किसान अधिक लाभ ले सकते हैं।

0: से कम लागत वाले पॉली हाउस में सब्जियों की नर्सरी जैसे शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन और बेल वाली सब्जियां जैसे खीरा, लौकी, करेला, तुरई, कद्दू और ककड़ी वगैरह की बेमौसमी अर्थात सर्दी में नर्सरी पौध तैयार करके एक दो महीने अगेती फसल ली जा सकती है, जिसके बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। इसके लिए बांस की खपच्ची, पॉलिथीन शीट, सुतली से एक झोपड़ी नुमा ग्रीन हाउस बनाया जा सकता है और इसमें सब्जियों की पौध दिसंबर से जनवरी में तैयार की जा सकती है। किसान भाइयों, पॉली हाउस में अगेती नर्सरी यानी पौध से कई फायदे हैं, जैसे अधिक पैदावार, बेमौसमी उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता, कम पानी की आवश्यकता, कम खरपतवार और आसान नियंत्रण, स्वस्थ व समय पर पौधे उत्पादन, विपरीत परिस्थितियों से बचाव, कीट और रोग नियंत्रण आसान। किसान भाइयों, पॉली हाउस में आप जब भी खेती करें तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान अवश्य रखें। केवल उन्नत और संकर किस्में ही उगाएं। सही सब्जी की फसल और सही किस्म का चयन करें। सब्जी की बिजाई से पहले पॉली हाउस से गोबर की खाद डालकर अच्छी तरह मिला दें और जमीन को 5% फॉर्मेलिन से उपचारित करें। शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा आदि ज्यादा लाभदायक फसलें होती हैं। पॉली हाउस में पौधों को प्रोपेगेशन ट्रे में तैयार करें। सब्जियों की पौध के लिए प्रोपेगेशन ट्रे, जिसे प्रो ट्रे भी कहते हैं, का इस्तेमाल करें, जो आमतौर पर 98 छिद्रों वाली होती है। इसमें कोकोपीट, परलेट और वर्मिकुलेट का 4:1:1 के अनुपात में मिश्रण लेकर ट्रे तैयार कर लें और बीज की बिजाई कर दें। पॉली हाउस में खेती के अनेक फायदे हैं किसान बंधु, जैसे प्रत्येक बीज का बिना क्षति के अनुकरण, जड़ों का पूरा विकास और निकालने एवं रोपाई में सुविधाजनक, पौधों का विकास एक समान और स्वस्थ पौधों का तैयार होना, कम समय में पौध का तैयार होना, पौध की बीमारियां कम होती हैं, कीट नियंत्रण सरलता से किया जा सकता है, रोपाई उपरांत कम मृत्यु दर और पौधों का विकास जल्दी होना। पॉली हाउस को बागवानी के व्यवसायीकरण ने किसानों की एक खास जरूरत बना दिया है, जिसमें बेमौसमी सब्जियां उगाकर आमदनी को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। परंपरागत कृषि विधियों की अपेक्षा पॉली हाउस में सब्जियों को उगाने से खुले वातावरण की तुलना में 2 से 4 गुना तक अधिक पैदावार ली जा सकती है। वर्ष भर सब्जी उत्पादन करना साथ ही उत्पादन की मात्रा, गुणवत्ता और उत्पादकता से भी काफी बढ़ोतरी प्राप्त की जा सकती है। जी हाँ किसान भाइयों, इस प्रकार पॉली हाउस में बेमौसमी सब्जियां उत्पादन कर हम बेहतर आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
1: आइए दोस्तों, खेती की बातें कार्यक्रम के बाद जुड़ते हैं रामचरितमानस गान से और सुनते हैं रामचरितमानस गान की कड़ी संख्या 298,
2: एपिसोड नंबर 298, 298।

रावण का दूत शुक, जिसको उसने विभीषण के पीछे पीछे श्रीराम की सेना का भेद लेने के लिए भेजा था, लौटकर रावण को वानर सेना की विशालता और बल का विवरण देता है। उसने द्विविध, मयंद, नील, नल, अंगद, शट, जामवंत आदि वीरों के अतुलनीय बल की झलक देखी थी और सहज ही परिणाम का अनुमान लगा लिया था। शुक ने रावण को वास्तविकता से परिचित कराने का भरसक प्रयत्न किया। वे करोड़ों शूरवीर रावण को सहज ही परास्त कर देंगे। सभी वानर समुद्र को सोख लेने या पर्वतों से उसे पाट देने को उतारू हैं, केवल राम की आज्ञा उन्हें नहीं मिल रही। स्वयं शुक तथा अन्य गुप्तचरों की भी उन्होंने मारपीट कर दुर्गति कर दी थी। वह तो श्री राम की सौगंध सुनकर उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। शुक संवाद को रावण हंसकर टाल देता है, किंतु जब उसने लक्ष्मण का पत्र उसे दिया तो रावण एक बार भय से कांप गया।

दोस्तों, रामचरितमानस गान के बाद अब बारी है चिंतन की, तो सुनते हैं शालीनता गुण या अवगुण। वाचन स्वर रेडियो साथी निर्मला तिवारी का है।

जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहनशील होना अति आवश्यक है। सहनशीलता व्यक्ति को मजबूत बनाती है, जिससे बड़ी से बड़ी परेशानी भी आसान हो जाती है। सहनशील व्यक्ति के आगे पहाड़ जैसी परेशानियां भी चींटी के समान ही हो जाती है। सहनशील का तात्पर्य किसी को कायर बनाना, कमजोर बनाना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा गुण है जिससे कांटों भरे पथ पर भी इंसान हंसते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ना सीख जाता है। कभी कभी देखने को मिलता है कि हम छोटी सी छोटी बातों पर भी घबरा जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, जिससे बात बनते बनते बिगड़ जाती है और कभी कभी तो अनिष्ट हो जाता है। लेकिन ऐसी ही छोटी छोटी बातों को यदि हम मुस्कुराते हुए सुने और सह लें तो बात बन जाती है। प्रभु श्री राम की ही बात ले लीजिए, वो अपने जीवन में बहुत सहनशील थे। उनके स्वयंवर की घटना है। स्वयंवर के समय जब धनुष तोड़ा गया तो परशुराम जी आए और क्रोधित हो गए। उन्होंने श्री राम को बहुत भला बुरा कहा, किंतु उस समय प्रभु श्री राम ने धैर्य बनाए रखा और परशुराम जी के वचनों को मुस्कुराते हुए सुनते रहे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और जब भी बोला बहुत धैर्य, बहुत ही मीठे वचन बोले, जिससे बात बिगड़ी नहीं बल्कि बन गई। इसी तरह प्रभु यीशु की ही बात ले लें, उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया, इसके बाद भी वो मुस्कुराते रहे और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे, उन्हें क्षमा करने के लिए कहते रहे। तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं हैं। संत महापुरुषों के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके अंदर की सहनशीलता, धैर्य हमें बताती है कि व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए यह सबसे अच्छा गुण है कि व्यक्ति अधीर ना हो, उसके अंदर सहनशीलता हो, तो वह बड़े से बड़े काम को भी आसानी से कर लेता है। भक्त प्रहलाद की ही यदि हम बातें करें तो उनकी तो विभिन्न प्रकार से परीक्षा ली गई, उन्हें सताया गया।

डॉक्टर प्रहलाद की जीत हुई। इस तरह से बहुत सी घटनाएं हैं जो हमें यह बताती हैं कि सहनशीलता वह गुण है जो व्यक्ति को मजबूती प्रदान करती है। हाँ, यह अलग बात है कि जब यह सहनशीलता कमजोरी बन जाए तब यह चिंता की बात है, क्योंकि कमजोरी कायरता की ओर ले जाती है और फिर इंसान डरपोक हो जाता है और वह बात बात पर डरने लगता है, उसका जीवन फिर नरक बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन रखना आवश्यक है। धैर्य रखना, सहनशील होना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी बात की अति अच्छी नहीं होती है। जब यही सहनशीलता अवगुण हो जाए, कायर बनाने लगे, तो फिर यह अच्छा नहीं। इसलिए सहनशीलता को अपनाइए, लेकिन उसे कमजोरी मत बनाइए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जीवन का संतुलन

चिंतन के बाद अब बारी है भक्ति संगीत की, तो आइए जुड़ते हैं भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम आराधना के साथ। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए नवरात्र के इस पवित्र मौके पर सुनते हैं लखबीर सिंह लखा के गाए कुछ भक्ति संगीत।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम आराधना। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब जुड़ते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम से। आज का भेंटवार्ता का विषय है डायबिटिक कारण लक्षण एवं सावधानियां। भेंटवार्ताकार है डॉक्टर रविन्द्र कुमार अम्बस्ट, जबकि बात कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों नमस्कार। मित्रों आजकल की जो जीवन शैली है काफी अव्यवस्थित हो गई है। हमारा खाने पीने का तरीका में काफ़ी बदलाव आ गया है, रहन सहन में काफ़ी परिवर्तन आ गया है और ऐसे में बहुत सारी बीमारियां आप तक पहुंच जा रही है। छोटे छोटे बच्चे भी बीमारी से परेशान हैं, बड़ों के क्या कहें। और एक ऐसे ही बीमारी है मधुमेह या डायबिटिक, जिससे हमारे लगभग बहुत सारे साथी, हम तो यूँ कहें कि 10 में से 4 या 5 व्यक्ति मधुमेह के शिकार हो जा रहे हैं। तो ये मधुमेह होने का जो प्रमुख कारण क्या है, क्या हमारी बदलती जीवन शैली है, हमारा खान पान है और इसके लक्षण क्या हैं, ताकि समय रहते हम इसका उपचार शुरू कर दें और अपने जीवन शैली में हम बदलाव करें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर रविन्द्र कुमार अम्बस्ट जी। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, वर्तमान समय में डायबिटिक होने का क्या कारण मानते हैं?
2: वर्तमान समय में डायबिटीज़ होने का मुख्य कारण जो है से आजकल की जीवन शैली। आजकल का जो जीवन शैली है वो बड़ा ही पहले की अपेक्षा बिल्कुल ही बदल गया है। पहले के लोग जो है से समय पर खाना पीना करते थे, समय पर सोते थे, उतना ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस नहीं था। आजकल हर व्यक्ति जो है से स्ट्रेस में जी रहे हैं और रात में को दिन की तरह काम कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि पैसे कमाने के होड़ में जो है सो अपना स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब किए जा रहे हैं। खाने पीने पर कोई ध्यान नहीं है, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ नहीं खा रहे हैं, कभी शाम खा रहे हैं, कभी सुबह खा रहे हैं, पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ खा रहे हैं, उसके साथ नशा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही सब कारण डायबिटीज़ वगैरह बहुत फैल रहा है। और डायबिटीज़ हर घर में देखिएगा तो एक ना दो जन इससे पीड़ित हैं। डायबिटीज़ दो प्रकार के होते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस उसको कहते हैं जिसको कि उसको एक्चुअल में हिंदी में मूत्रमेह बोला जाता है, जिसमें कि जो व्यक्ति पेशाब करते हैं उसमें शुगर का कोई शिकायत नहीं होता, लेकिन उसको पॉलीयूरिया भी बोलते हैं, बहुमूत्र बोलते हैं। जो व्यक्ति जो है सो रात में कई बार उठ उठ के बाथरूम जाते हैं, दिन में भी जाते हैं, इवन बेड वेटिंग भी आता है, बच्चों को बेड वेटिंग हो जाता है, और यही सब जो है सो पोल्यूरिया का कारण है। अगर पैथोलॉजिकल जांच कराएंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका बढ़ावा मिलेगा।
3: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी।

0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीयमाध्यमेन लद्दाखराज्ये प्रायः 50-300-कोटिरूप्यकाणां पञ्चप्रमुखविकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं राष्ट्राय समर्पणं विधास्यति। एतासां परियोजनानाम् उद्देश्यं सम्पर्कव्यवस्थायाः सुदृढीकरणम्, ऊर्जासम्बद्ध आधारित संरचनायाः परिष्करणम्, सांस्कृतिकवैभवस्य संरक्षणम् तथा क्षेत्रे जलसुरक्षायाः संवर्धनम् चास्ति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री एकां जनसभाम् अपि सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदिल्ल्याम् अस्मिन् वर्षे आयोजितासु एशियाक्रीडायाः भारतीयक्रीडकदलस्य सदस्यैः सह संवादं विधास्यति। अस्मिन्नवसरे प्रधानमन्त्री उपस्थितजनसमूहमपि सम्बोधयिष्यति। अवधेयं यत् जापानदेशस्य आइचे नागोयानगरे आयोजितासु एशियाक्रीडासु भारतं पदकतालिकायां चतुर्थं स्थानं प्राप्तवत्। भारतेन आहत्य 85 पदकानि प्राप्तानि, येषु 21 स्वर्णपदकानि, 27 रजतपदकानि तथा 37 कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: यात्रारताः अपि जगद्वृत्तान्तेन सह एकीभूताः तिष्ठन्तु। एक्स् पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। पीबी शब्द माध्यमेन च आकाशवाणी वार्ताः शृण्वन्तु।
0: प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 40,000+11,00,000 रेलकर्मचारिभ्यः 78 दिवसानां वेतनसमतुल्यं PLB इति उत्पादकतासम्बद्ध प्रोत्साहनधनम् अनुमोदितम्। मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं सूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनीवैष्णवः वार्ताहरान् संसूचितवान् यत् अस्य धनस्य वितरणाय प्रशासनेन 90,000,000,000,000 रूप्यतोप्यधिका राशि आवंटितास्ति। केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन अस्माद् वर्षादारभ्य 5 वर्षपर्यन्तं राष्ट्रियसामाजिकसहायताकार्यक्रमस्य निरन्तरतायै अनुमोदनं प्रदत्तम्। अस्य कार्यक्रमस्य कृते 28,400,000-53,000,000 रूप्यकाणां व्ययः निर्धारितः अस्ति। अस्य राष्ट्रियसामाजिकसहायताकार्यक्रमस्य नाम परिवर्त्य प्रधानमन्त्रीसामाजिकसहायतायोजना इति कृतमस्ति। श्रीवैष्णवः दिव्याङ्गपेन्शनयोजना इत्येताम् आलक्ष्य अवदत् यत्
2: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: कृषि कृषक कल्याण विभागः अद्य नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य महिला कृषक दिवसस्य राष्ट्रिय स्तरीयं कार्यक्रमस्य आयोजनं करिष्यति। अस्य आयोजनस्य उद्देश्यं भारतीय कृषिक्षेत्रे महिलानां योगदानस्य सम्मानः अस्ति। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य हरियाणा, चण्डीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी चेत्येतेषु स्थलेषु अतिवृष्टेः संभावनां दृष्ट्वा नारंगवर्णपरा संचेतना प्रकाशिता। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ हैदराबादे आयोजितायां चतुर्थायां 20-प्रति20 अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धायां वेस्टइंडीज दलेन भारतं 24 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दह हनु खालसी ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की।
2: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
3: सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: समिति गन्ने के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य में वृद्धि की मांग की समीक्षा करेगी, जिसमें खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। यह चीनी उत्पादन लागत, बाजार में मिलने वाले दाम और चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता के संदर्भ में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन की मांग की भी समीक्षा करेगी। जांच के अन्य प्रमुख बिंदुओं में शुगर रिकवरी की टेस्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा तंत्र और चीनी मिलों में गन्ने का वजन करने के मौजूदा तरीके भी शामिल होंगे। समिति मशीन से काटे गए गन्ने के वजन में से कटौती से संबंधित मौजूदा तरीकों की भी जांच करेगी और कटाई से होने वाले वास्तविक नुकसान यदि कोई हो तो उसका आकलन करेगी। यह किसानों के देय गन्ने के मूल्य पर वर्तमान तरीकों के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति ने कल विजयवाड़ा के श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी मंदिर में देवी कनक दुर्गा की पूजा अर्चना की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास, कानून व्यवस्था और सुशासन के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। श्री कोविंद लखनऊ में आयोजित एक समारोह में अपनी आत्मकथा भारतीय गणतंत्र की विजय गाथा मेरा जीवन मेरा संघर्ष के हिंदी संस्करण के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सऊदी में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित ना करें। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने मात्र 50 गेंदों में 102 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर हैं। श्रृंखला का अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate and dedicate to the nation five major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage and enhance water security in the region. The Prime Minister will inaugurate the new passenger terminal building at Kushok Bakula Rinpoche Airport, Leh, built at a cost of 640 crore rupees. The Prime Minister will dedicate to the nation the 298 kilometer long Nimu Padum Darcha Road constructed by the Border Roads Organization BRO. Mr. Modi will also inaugurate the 9 megawatt Hanu small hydroelectric project and the 66 kV double circuit Da Hanu Khalsti transmission line. The projects will strengthen power evacuation infrastructure and improve the reliability of Ladakh's electricity network. Mr. Modi will inaugurate India's first Petroglyph Conservation Park at Sindhu Ghat, Leh, and 40 water bodies developed across 40 villages under Project Him Sarovar. The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Program for 5 years from 2026-27 to 2030-31 with an outlay of 53,428 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav made the announcement while briefing the media after the Union Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi in New Delhi. The National Social Assistance Program has been renamed as Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. Mr. Vaishnav said the assistance under the Disability Pension Scheme will be 375 rupees for beneficiaries up to the age of 79 years and 625 rupees for those aged 80 years and above.
6: The eligibility threshold for disability pension has been reduced from 80% to 40%. This means that persons with disabilities with a 40% disability will now also be eligible for the pension. Earlier, disability pension was provided only to individuals above the age of 18. Now, persons with disabilities will be eligible for the pension from birth. The number of beneficiaries is expected to increase significantly, with approximately 27 lakh persons with disabilities expected to benefit under this pension scheme. The total number of beneficiaries will rise to around 3 crore 20 lakh.
5: Pension schemes for senior citizens and widows as well as the family benefit scheme will continue in the existing form. The Union Minister said the government has also given nod to the strategic restructuring of IDBI Bank.

ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। इससे पहले आप हमारे दिल्ली केंद्र से जुड़कर सुन रहे थे संस्कृत हिंदी व अंग्रेजी समाचार। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं प्रातःकालीन सभा में होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर बाद 7:15 से हम सुन पाएंगे शास्त्रीय संगीत पर हमारा कार्यक्रम राग रंग। आज के हमारे राग रंग के कलाकार हैं पंडित भीमसेन जोशी व पंडित विश्वमोहन भट्ट। इसके बाद दोस्तों 7:45 से हम जुड़ेंगे सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता से। आज के हमारे स्वर सरिता के कलाकार होंगे जगजीत सिंह।

दोस्तों सुबह 8 बजे का समय होगा दिल्ली केंद्र से जुड़ने का, जहां से हम सुनेंगे समाचार प्रभात, और 8:15 पे दिल्ली केंद्र से ही रिले मॉर्निंग न्यूज सुनने के बाद 8:30 पर हम जुड़ जाएंगे रांची केंद्र से और सुनेंगे रांची से रिले प्रादेशिक समाचार। 8:40 का समय होगा विज्ञापन प्रसारण का, जबकि 8:45 पर हम वापस फिर से एक बार जुड़ जाएंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर, जहां से सुनेंगे पुराने फिल्म गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत गुंजन। सुबह 9 बजे का समय जोहार पलामू के लिए निर्धारित है दोस्तों, जिसमें हम अन्य कार्यक्रमों के अलावा फिल्म गीतों के अलावा सुनेंगे कृति शाही द्वारा प्रस्तुत वार्ता पूजा पंडालों में साफ सफाई। इसके बाद दोस्तों 9:30 का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग से जुड़ने का, और 10 बजे हम जुड़ जाएंगे दिल्ली केंद्र से, जहां से सुनेंगे अंग्रेजी समाचार। 10:05 पे दिल्ली केंद्र से ही रिले हिंदी समाचार सुनने के बाद 10:10 पे हम जुड़ जाएंगे मुंबई केंद्र से, जहां से सुनेंगे विविध भारती की प्रस्तुति आज के मेहमान। दोस्तों ये सिलसिला यानी कि दिल्ली रांची और मुंबई केंद्र से जुड़ने का सिलसिला लगातार 5:30 तक जारी रहेगा। 5:30 पर हम सुनेंगे आकाशवाणी डाल्टनगंज से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण जो हमारे रेडियो साथी देंगे। इस बीच दोस्तों हम लगातार विविध भारती से सुनते रहेंगे रंग तरंग, यादों की महफिल, सुरीला सफर, सदाबहार नगमे और सखी सहेली जैसे कार्यक्रमों को। दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी समाचार और रांची केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए जुड़ते हैं शास्त्रीय संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम राग रंग से। दोस्तों, आज राग रंग में हम सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी से गायन, प्रस्तुत करेंगे राग तोड़ी और पंडित विश्वमोहन भट्ट से सुनेंगे अहीर भैरव, पंडित जितेंद्र अभिषेकी से सुनेंगे राग रामकली, डॉक्टर प्रभा अत्रे से सुनेंगे राग देसी। तो आइए जुड़ते हैं शास्त्रीय संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम राग रंग से।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम राग रंग। यह है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए जुड़ते हैं सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता के साथ। स्वर सरिता के आज के हमारे कलाकार हैं जगजीत सिंह।

0: गीत और संगीत की महफिल के मुअज्जिज़ मेहमानों, खुश आमदीद। आज की यह हसीन शाम अपने दामन को गजल के हसीन सितारों से सजाए आप तमाम संगीत प्रेमियों का इस्तकबाल करती है। ये मदहोश और रंगीन शाम तखय्युल और अल्फाज के जीने पर कदम ब कदम लहराती हुई एक गुनगुनाती रात में तब्दील हो जाएगी। एक ऐसी रात जो सदा के लिए एक खूबसूरत याद बनकर रह जाएगी। आज की इस हसीन महफिल की शम्मा हैं जगजीत सिंह। जगजीत सिंह, जिन्होंने कलाम के इंतखाब से लेकर गजल की अदायगी तक गजल को एक नया रंग, एक नया नूर बख्शा। गजल जो सिर्फ उर्दू जानने वालों की मिल्कियत समझी जाती थी, जगजीत सिंह की सहराना आवाज और पेशकश के अंदाज ने इसे अवाम के दिलों तक पहुंचा दिया। आइए आज की महफिल में सुने जगजीत सिंह की पुरासर, पुरसोज, पुरनूर, दिलकश आवाज।
1: कौन जीता तेरी जुल्फ़

दोस्तों, स्वर सरिता कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जगजीत सिंह को। आइए अब जुड़ते हैं दिल्ली और रांची केंद्र से, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज और प्रादेशिक समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मंत्रिमंडल ने 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी। सरकार ने गन्ना किसानों के मुद्दों की जांच और उचित उपाय सुझाने के लिए समिति गठित की। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश की संभावना और वेस्टइंडीज ने चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हराया, श्रृंखला 2-2 से बराबर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वे इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई यात्रा टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। लेह के निम्मू को हिमाचल प्रदेश के दारचा से सुदूर जांस्कर घाटी के माध्यम से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क गलियारा प्रदान करती है, जिससे श्रीनगर लेह और मनाली लेह मार्गों पर आवागमन और आसान हो जाएगा। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाह हनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 लाख 40 हजार से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस PLB को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने इसके लिए 2009 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का बोनस दिया जाएगा।
2: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: इसमें रेलवे लाइन रखरखाव कर्मचारी, लोको पायलट गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के कर्मचारी सहित ग्रुप सी के रेलकर्मी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भी 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है।
2: दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का

0: एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: जालिम लोशन दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: समिति गन्ने के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य में वृद्धि की मांग की समीक्षा करेगी, जिसमें खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। यह चीनी उत्पादन लागत, बाजार में मिलने वाले दाम और चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता के संदर्भ में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन की मांग की भी समीक्षा करेगी। जांच के अन्य प्रमुख बिंदुओं में शुगर रिकवरी की टेस्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा तंत्र और चीनी मिलों में गन्ने का वजन करने के मौजूदा तरीके भी शामिल होंगे। समिति मशीन से काटे गए गन्ने के वजन में से कटौती से संबंधित मौजूदा तरीकों की भी जांच करेगी और कटाई से होने वाले वास्तविक नुकसान यदि कोई हो तो उसका आकलन करेगी। यह किसानों के देय गन्ने के मूल्य पर वर्तमान तरीकों के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। ये समझौता समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी सहायक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 18 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंधिया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारी इस विशेष श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे इस संकल्प को रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम जैसी संस्थाओं के माध्यम से साकार किया गया है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों के लिए काम कर रही है।
5: वर्ष 2016 में संसद ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पारित किया। इसके तहत राज्य रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज की स्थापना की गई। रेरा लागू होने के बाद से किसी भी फ्लैट के बेचने से पहले प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना जरूरी है। इसके तहत डेवलपर्स और खरीदारों के बीच के विवाद प्राधिकरण के पास जाते हैं और तय समय सीमा के भीतर सुने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेरा के माध्यम से ग्राहक और डेवलपर्स के बीच का भरोसा बढ़ा है।
6: इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया।
5: गौतम बुद्ध नगर निवासी अनिल तिवारी ने बताया कि रेरा के आने से डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के बीच आपसी समझ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि रेरा के कारण बिल्डर समय से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और समय पर लोगों को कब्जा मिलना शुरू हो गया है।
7: डेवलपर और क्लाइंट के बीच में पारदर्शिता होती है। जो पैसे हम लगाते हैं डेवलपर के साथ वो हमारा सुरक्षित पाया जाता है और हमें कोई भी आपत्ति यदि रियल एस्टेट के माध्यम से होती है तो हम किसी और के पास न जाके हम सीधा रेरा के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं और पूरी तरह से रेरा हमें संतुष्ट करता है।
5: रेरा ने डेवलपर्स और क्लाइंट के बीच के संबंधों को बेहतर बनाया है और खरीदारों के अधिकारों को वैधानिक रूप दिया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: देश भर में आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग इस अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना है। पुदुचेरी का लीसे फ्रांशे इंटरनेशनल डी पौंडिचेरी आज 200 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ये स्कूल अन्य देशों में अभी भी संचालित सबसे पुराने फ्रेंच स्कूलों में से एक है। एक रिपोर्ट।
8: इस आयोजन में 400 से अधिक पूर्व छात्र हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें कई फ्रांस से आए हैं। आज शाम होने वाले मुख्य समारोह में 1000 से अधिक मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, फ्रांसीसी शिक्षा एजेंसी के महानिदेशक अलेक्जेंडर मोरोइस, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन रंगसामी भी शामिल होंगे। इस स्कूल की स्थापना ऐसे दौर में हुई थी जब उपनिवेशिक समाज में नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव होता था। बाद में प्रवेश के अवसर बढ़ाए गए और पाठ्यक्रम में तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली जैसी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। पुदुचेरी से विविन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
3: और अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: जी फरहत, शुरुआत करते हैं रियाद स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श से। दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अब भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी है। भारतीय विमानन कंपनियों ने इस महीने की 17 तारीख तक सऊदी अरब को आने जाने वाली उड़ानें निलंबित की हैं। उधर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय सिंगापुर के दो मालवाहक जहाजों जीएफएस प्राइड और जीएफएस गिसेले पर अज्ञात मिसाइल हमलों से हमला किए जाने की खबर भी है। फिलहाल दोनों जहाजों के सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने पनडुब्बियों से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया है। हालांकि दक्षिण कोरिया की सेना ने परीक्षणों पर अभी तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। और कोलंबिया ने कल यरूशलम में अपने दूतावास का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही कोलंबिया के नए राष्ट्रपति अबिलार्डो डे ला एस्प्रियेला ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल कर लिए हैं। तो फरहत, ये थी अब तक की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए।
10: एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष पांच देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इन खेलों में भारत कारीगर व तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, पुरुष और महिला हॉकी में स्वर्ण पदक और सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पहली बार पदक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इनमें महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक, 28 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक भी शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: और अब बात खेलों की। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। दोनों टीमें श्रृंखला में 2-2 की बराबरी पर हैं। अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: Railway employees. Government forms committee to examine issues raised by sugarcane farmers and recommend appropriate measures. IMD focus heavy rain in Haryana, Punjab, Delhi, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry today. And in men's cricket, West Indies beat India by 24 runs in the fourth T20 match to level series 2-2. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। इसके पहले ये संदेश।
2: दीदी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है बच्चे के जन्म को लेकर।
3: चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना, सब बहुत अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई।
4: पर खर्चा?
3: बच्चे का जन्म और दो रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल।
4: तो ठीक है, पर खर्चा?
3: अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना?
5: चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना?
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
7: डॉक्टर दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहू का प्रसव अच्छे से हो गया, क्या आप जच्चा बच्चा को घर ले जाएं?
8: अभी माँ बहुत कमजोर है, उसे दो दिन यहीं रहने दें। प्रसव के तुरंत बाद जच्चा बच्चा को संक्रमण और रोग का खतरा ज्यादा रहता है। सही देखभाल और संक्रमण से बचने के लिए माँ और बच्चे को प्रसव के बाद दो दिन अस्पताल में ही रहने दें। यह सुविधा सभी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से करेंगे संवाद। कई स्पर्धाओं में भारत ने रचा इतिहास, झारखंड की बेटियों ने भी बढ़ाया देश का मान। झारखंड में पुल गिरने के मामलों में हाईकोर्ट सख्त, धनबाद, पलामू और गुमला में दर्ज मामलों की जांच 3 महीने में पूरी करने का निर्देश। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, जनहित के कार्यों में देरी पर जताई नाराजगी, अधिकारियों को लंबित फाइलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश। रिम्स शासी परिषद की 66वीं बैठक आज, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी होंगे शामिल, कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा। और राज्यभर में दुर्गा पूजा का उत्साह, रांची में कई पूजा पंडालों के खुले पट, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में आयोजित एशियाई गेम्स 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। झारखंड की सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था। एक रिपोर्ट।
9: जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए। एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष 5 देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इन खेलों में भारत करिकर व तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, पुरुष और महिला हॉकी में स्वर्ण पदक और सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पहली बार पदक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इनमें महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक, 28 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक भी शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में पुलों के ढहने के मामले की जांच वर्षों से लंबित रहने पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायाधीश मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने धनबाद, पलामू और गुमला में दर्ज मामलों की जांच प्राथमिकता के आधार पर 3 महीने में पूरी कर अंतिम रिपोर्ट संबंधित अदालतों में दाखिल करने का निर्देश दिया है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ लंबित विभागीय कार्यवाही भी 3 महीने में पूरी कराने का प्रयास करने को कहा गया है। गुमला जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय सभागार में लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सांसद सुखदेव भगत ने सभी विभागों को पूर्व की बैठकों में दिए गए निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
10: सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी राशि है, उसका प्रॉपर वे में कार्य हो रहा है नहीं, हर विभाग में कोऑर्डिनेशन हो ताकि सरकार जो नीतियां ला रही है उसका प्रॉपर वे में क्रियान्वयन हो। हर विभाग पर हमने चर्चाएं की है, जो अच्छा काम करते हैं वो प्रोत्साहन के पात्र हैं, जो काम के प्रति लापरवाही बरते हैं वो दंड के भागी है। आयुक्त महोदय से भी हमारी बातचीत हुई, उनको भी और DDC को भी हमने निर्देश दिया है कि जो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो हमारे सदस्यों को भी पहले दिया जाए ताकि उन चीजों को जाँच कर पाए।
1: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कामकाज में देरी और लंबित मामलों को लेकर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कल आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि आम लोगों को बेहतर पेयजल और स्वच्छता सुविधा देना सरकार की प्राथमिकता है, जनहित के कामों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने फाइलों और अभिलेखों की जांच कर लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर तय समय में निपटाने, पारदर्शिता बनाए रखने, योजना साइबर ठगी पर प्रहार के तहत न्यायालय में कल LADC चीफ की अध्यक्षता में पैरा लीगल वॉलंटियर्स की क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए डिप्टी LADC राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट जागरूकता और पीड़ित सहायता योजना 2026 को लेकर 150 कार्यरत PLV को प्रशिक्षित किया गया। इस अवसर पर PLV को निर्देश दिया गया कि पीड़ितों को न्यायालय और डालसा की योजनाओं के बारे में बताकर सहायता करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रिम्स शासी परिषद की आज 66वीं बैठक होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें रिम्स के निदेशक का सेवा विस्तार, संस्थान के प्रशासनिक, वित्तीय और मरीज सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए जाएंगे। 12वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता इंस्पायर अवार्ड में चतरा के गिद्धौर प्रखंड के गंगा स्मारक उच्च विद्यालय के छात्र दीपक कुमार को दीपक देश में टॉप 60 पुरस्कार विजेताओं में अपना स्थान बना लिया है। कल नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। चतरा के दीपक कुमार ने प्रतियोगिता में स्मार्ट बोरवेल पाइप कटर का नवाचार प्रस्तुत किया था। प्रतियोगिता में रामगढ़ के छात्र पूरब जैन को देश भर में तीसरा स्थान मिला है। जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में बाघिन सुनैना ने 23 सितंबर को दो मादा और एक नर शावक को जन्म दिया। फिलहाल तीनों शावकों की स्थिति संतोषजनक है और उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। चिड़ियाघर प्रबंधन ने नामकरण के लिए मोबाइल नंबर 9438291637 पर आम लोगों से 19 अक्टूबर तक व्हाट्सएप या संदेश के जरिए सुझाव मांगे हैं। तीन सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को सम्मानित किया जाएगा।
11: नागपुर से मेल लेकर आए थे, फीमेल के साथ मिलकर तीन बच्चों को जन्म दिया, एक मेल है दो फीमेल। रुद्रा के ये बच्चे हैं, सुनैना इनकी माँ का नाम है। CCTV से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम लोग, ग्राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग करते हैं बच्चे के साथ, और पब्लिक से 18 तारीख तक नाम मांगे हैं। उसके बाद जैसे नाम आ जाएंगे, पैनल में अच्छे नाम लगेंगे, उनको हम सेलेक्ट करेंगे।
1: राज्यभर में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह का माहौल है। कल रांची में कई प्रमुख पूजा पंडालों का उद्घाटन किया गया। इधर उपराजधानी दुमका में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा संपन्न कराने को लेकर इंडोर स्टेडियम में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार और विभिन्न पूजा समितियों के प्रतिनिधियों तथा संबंधित पदाधिकारियों ने भाग लिया। उपायुक्त ने बताया कि मेले के दौरान सभी पूजा पंडालों में मजिस्ट्रेट के साथ सुरक्षा बलों की

0: तैनाती रहेगी।
1: दुर्गा पूजा में बहुत भी रहता है लॉ एंड ऑर्डर और उन्हीं की भी घटनाएं जो शहर है, इसलिए फोर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट जो है वो हर सभी पंडाल में तैनात किए जाएंगे। ऐसे लोग लॉ एंड ऑर्डर को सर्व कर सकते हैं, वैसे लोग भी चिन्हित हैं एनएस के द्वारा 126 के तहत कार्रवाई भी की जा रही है।
0: दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए रांची जिला पुलिस द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में कल एसपी नगर और एसपी यातायात ने शहर के विभिन्न पूजा पंडालों और महत्वपूर्ण मार्गों का रूट वेरिफिकेशन तथा स्थल निरीक्षण किया। रांची जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने भारतीय युवक संघ बकरी बाजार, ओसीसी क्लब त्रिकोण हवन कुंड और गीतांजलि क्लब मोराबादी दुर्गा पूजा पंडालों के भव्य उद्घाटन में शामिल होकर विधि व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की खबर को राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने लिखा है 40% दिव्यांगता वालों को मिलेगी जन्म से पेंशन। दैनिक भास्कर लिखता है मां के दर्शन को खुले पंडालों के पट। हिंदुस्तान की सुर्खी है केंद्र ने दिया पेंशन बोनस का तोहफा। पूजा पर सुरक्षा का घेरा, जिलों में उतरेंगी केंद्रीय बलों की कंपनियां। प्रभात खबर ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से करेंगे संवाद। कई स्पर्धाओं में भारत ने रचा इतिहास। झारखंड की बेटियों ने भी बढ़ाया देश का मान। झारखंड में पुलों के गिरने के मामलों में हाईकोर्ट सख्त। धनबाद, पलामू और गुमला में दर्ज मामलों की जांच 3 महीने में पूरी करने का निर्देश। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। जनहित के कार्यों में देरी पर जताई नाराजगी। अधिकारियों को लंबित फाइलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश। रिम्स शासी परिषद की 66वीं बैठक आज। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी होंगे शामिल। कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा। और राज्य भर में दुर्गा पूजा का उत्साह। रांची में कई पूजा पंडालों के खुले पट। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मैं चली।
3: कहाँ?
2: बच्चे को पोलियो खुराक पिलवाने।
4: पोलियो खतरनाक बीमारी है जिससे बच्चा जीवन भर के लिए अपाहिज हो सकता है।
5: अचानक हाथ पांव लुंजपुंज हो जाता है या बच्चा चल फिर नहीं सकता।
4: बच्चे को 1 साल की उम्र तक पोलियो की 3 खुराकें
5: एक एक महीने के अंतर पर दिलाएं।
4: जानकारी के लिए सहिया स्वास्थ्य कार्यकर्ता से मिलें।
5: पोलियो की खुराक सभी सरकारी अस्पताल,
4: डिस्पेंसरी या हेल्थ सेंटर में मुफ्त मिलती है।
5: 2 बूंद जिंदगी के।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
7: भूल गए आज कौन सा दिन है?
8: गुरुवार है, क्या हुआ तो?
7: अरे गुरुवार और शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्र और शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर 1 साल तक के बच्चों को मुफ्त टीके लगाए जाते हैं।
8: अच्छा, चलो जल्दी फिर।
7: आप भी याद रखें, टीकाकरण कराएं और बच्चों की जिंदगी को सुरक्षित बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें।
8: हर गुरुवार और शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्र और शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर 1 साल तक के बच्चों को मुफ्त टीके लगवाएं।
9: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: नमस्कार भाइयों बहनों, आकाशवाणी डाल्टनगंज के एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर आप अब सुनेंगे आपका अपना कार्यक्रम गीत गुंजन। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट सैकर चैटर्जी। दोस्तों, सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, सिनेमा एक ऐसी खिड़की है जिसमें हम समाज को देखते हैं, रिश्तों को समझते हैं और इंसान के भीतर छिपी भावनाओं को महसूस करते हैं। आज 15 अक्टूबर है। आज ही के दिन वर्ष 1957 में ओडिशा के राउरकेला में जन्म हुआ था एक ऐसे फिल्मकार का जिन्होंने भारतीय समाज की कहानियों को अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के मंच तक पहुंचाया। उनका नाम है मीरा नायर। मीरा नायर ने अपनी फिल्मों में भारतीय परिवारों, समाज के हाशिए पर खड़े लोगों, प्रेम, पहचान और अपनेपन की तलाश को बड़ी संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम याद करेंगे उनके फिल्मों को, उनके फिल्मों के गूंजते गीत संगीत को। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये खास सफर।

दोस्तों आप लोगों ने सुना मीरा नायर द्वारा निर्देशित फिल्म के गीत। आइए एक बार डालते हैं एक नजर उनके द्वारा निर्देशित फिल्मों पर। 1988 में उनकी फिल्म आई थी सलाम बॉम्बे, 1991 में फिल्म आई थी मिसिसिपी मसाला, 1995 द फ्रिज फैमिली, 1996 काम सूत्रा ए टेल ऑफ लव, 1998 माई ओन कंट्री, 2001 मानसून वेडिंग जिसका गीत आपने अभी अभी सुना, 2002 में हिस्टोरिकल ब्लाइंडनेस, 2004 में वैनिटी फेयर, 2006 में द नेमसेक, 2009 में एमिलिया, 2012 में द रेलुसेंट फंडामेंटलिस्ट, 2016 में क्वीन ऑफ कटवे। तो दोस्तों इस गीत के साथ जो आपने सुना हमने मीरा नायर को याद किया। आइए अब गीत गुंजन के अगले पड़ाव में चलते हैं। भाइयों बहनों, हिंदी सिनेमा में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिन्हें पर्दे पर देखते ही दर्शक समझ जाते हैं कि अब कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। कभी उनके चेहरे पर सख्ती दिखाई देती है तो कभी उनकी आंखों में रहस्य, और कभी उनके संवादों में ऐसा प्रभाव कि दर्शक उन्हें लंबे समय तक याद रखते हैं। आज हम याद कर रहे हैं ऐसे ही एक समर्थवान अभिनेता को जिनका नाम है ओम शिवपुरी। भाइयों बहनों, रंगमंच की गंभीर दुनिया से निकलकर हिंदी फिल्मों में अपनी पहचान बनाने वाले ओम शिवपुरी ने खलनायक, अधिकारी, पिता और अनेकों चरित्र भूमिकाओं के माध्यम से अपनी अलग छाप छोड़ी। 15 अक्टूबर उनकी पुण्यतिथि भी है। तो आइए भाइयों बहनों उनको याद करते हुए सुनते हैं उनकी एक फिल्म छैला बाबू से इस गीत को।

0: एक मिनट साहब, ये तुम्हारा चिक्कू फ्रेंड है ना, बहुत देर से किट किट कर रहा है। ये कबाब में हड्डी है, ज्यादा किट किट करेगा तो हड्डी को हम अलग कर देगा।
1: हाँ, इसको अलग कर दीजिए, काट के अलग कर देगा।
2: रीता हमारा डार्लिंग है।
0: नो रीता, तमाशा।

0: यार मजनू देख के तुझको लला वो छेला मैं बाबू छेला
1: छेला बाबू
0: बाबू छेला मैं बाबू छेला।

आइए दोस्तों, गीत गुंजन के आखिरी पड़ाव पर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। ये मौसम भींगा भींगा है। फिल्म का नाम धरती, आवाज दिया है रफी और लता मंगेशकर।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गुंजन। गीत गुंजन में हमने याद किया मीरा नायर को, याद किया ओम शिवपुरी को और सुने धरती फिल्म के गीत। आइए दोस्तों अब जुड़ते हैं जोहार पलामू कार्यक्रम से। जोहार पलामू कार्यक्रम के प्रस्तुति स्वर है मेरा यानी कि आप सबके रेडियो साथी सैकर चैटर्जी का, जबकि प्रस्तुत करता है प्रशांत गौरव।
1: जोहार पलामू।

0: दोस्तों पूजा आने वाला है, पूजा बोले तो दुर्गा पूजा, नवरात्र चालू है और कुछ ही दिन के बाद षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी पूजा हम लोग मनाएंगे और इस दौरान काफ़ी भीड़ होती है। कई पूजा पंडाल शहर में हैं, कई चौक चौराहे पे काफ़ी भीड़ रहती है, एक्स्ट्रा दुकानें लग जाती है फुटपाथों पर, उस वजह से भी काफ़ी भीड़ होती है। और इस पूजा के समय लोग एक चीज़ का जो आनंद लेते हैं वह है व्यंजन। काफ़ी व्यंजनों की बिक्री होती है और ये खा करके इधर उधर फेंक देते हैं या अक्सर पूजा पंडालों के बाहर, खास करके नवमी के दिन जो खिचड़ी भोग प्रसाद वितरण होता है या कहीं कहीं और भी कुछ भोग प्रसाद वितरण होता है, वहाँ देखिएगा अक्सर लोग खा करके सड़कों पर इधर उधर कहीं भी जहाँ मन किया वो फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। एक तो पूजा का वो प्रसाद है और हम उसके सड़क पर ऐसे ही फेंक देते हैं और जो फेंकते हैं उसमें भी कुछ लगा हुआ रहता है अंश, तो सावधानी बरतनी चाहिए। और ऐसे भी पूजा पंडालों में साफ़ सफाई तो रहनी ही चाहिए, अगर हम ही साफ़ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा बताइए। तो आइए आज का जो हमारा ये जोहार पलामू कार्यक्रम में हम एक वार्ता सुनेंगे, वो वार्ता का जो विषय है वो इसी पर आधारित है। वार्ता का विषय है पूजा पंडालों में साफ सफाई। वार्ताकार हैं कीर्ति शाही, आइए सुनते हैं इस वार्ता को।
1: पूजा पंडाल में साफ सफाई की आवश्यकता

आवश्यकता। हमारा देश भारतवर्ष त्योहारों और उत्सवों का देश है, और यहाँ जब त्योहारों की बात आती है तो हमारे मन में सबसे पहला नाम दुर्गा पूजा, गणेश उत्सव या काली पूजा का आता है। इन उत्सवों के दौरान बड़े बड़े और भव्य पूजा पंडालों का निर्माण किया जाता है। इन त्योहारों की जान होते हैं ये पूजा पंडाल। महीनों पहले से ही पंडालों को बनाने और सजाने की तैयारियां शुरू हो जाती है। तरह तरह के कपड़े, लाइट्स और मूर्तियों से पूरा इलाका जगमगा उठता है। लेकिन इस पूरी चकाचौंध के बीच एक सबसे ज़रूरी चीज़ है जिस पर कभी कभी हमारा ध्यान देर से जाता है, और वह है पंडाल और उसके आसपास की जगहों की साफ सफाई। ये पंडाल आस्था, संस्कृति और सामाजिक मिलन के केंद्र होते हैं। त्योहारों के दौरान इन पंडालों में रोजाना हजारों लाखों श्रद्धालुओं का आगमन होता है। ऐसे सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई का होना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से भी अत्यंत आवश्यक है। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति में स्वच्छता और साफ सफाई को ईश्वर की भक्ति से जोड़कर देखा गया है। पूजा पंडाल एक पवित्र स्थान होता है जहां हम देवी देवताओं की आराधना करते हैं। यदि पंडाल और उसके आसपास गंदगी, अव्यवस्था या बिखरा हुआ कचरा होगा तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। एक स्वच्छ और शुद्ध वातावरण श्रद्धालुओं के मन को शांत करता है, जिससे वे पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर पाते हैं। जब हम पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान अपने घरों को एकदम चमका कर रखते हैं तो फिर भगवान के इस अस्थाई घर पंडाल को गंदा कैसे छोड़ सकते हैं। पंडाल जब सजते हैं तो वहाँ रोज हजारों लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। इतनी अधिक भीड़ होने के कारण गंदगी होना स्वाभाविक है। किसी भी पूजा पंडाल में गंदगी इन वजहों से फैलती है, प्लास्टिक और थर्माकोल का इस्तेमाल, पंडालों के आसपास खाने पीने के स्टॉल्स की भरमार होती है। इन स्टॉल्स पर पानी के पाउच, प्लास्टिक की बोतलें, थर्माकोल की प्लेटें और प्लास्टिक के चम्मच बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी से नष्ट नहीं होती हैं। लोग खाना खाने के बाद इन्हें वहीं सड़क पर या पंडाल के कोने में फेंक देते हैं, जिससे देखते ही देखते कचरे का पहाड़ खड़ा हो जाता है। कूड़ेदान की कमी और सही जगह पर न होना यह भी एक मुख्य कारण है। अक्सर देखा जाता है कि इतने बड़े त्यौहार में जहाँ हजारों लाखों की भीड़ आती है वहाँ पर्याप्त संख्या में डस्टबिन नहीं रखे जाते। अगर डस्टबिन होते भी हैं तो वे ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ लोगों की नज़र नहीं पड़ती या फिर वे पहले से ही कचरे से भर चुके होते हैं। ऐसे में लोग मजबूरन या लापरवाही में कचरा उसके बाहर या आसपास ही फेंकना शुरू कर देते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी मानसिक कमी है। हम अपने घरों को साफ रखते हैं, लेकिन जब बात सार्वजनिक जगहों की आती है तो हम सोचते हैं कि सब फेंक रहे हैं तो हमारे एक प्लास्टिक फेंक देने से क्या ही फर्क पड़ेगा, या सफाई कर्मचारी तो आकर साफ करेगा ही। इसी चलता है वाले सोच की वजह से हर कोई कहीं भी गंदगी फैलाने में संकोच नहीं करता। विज्ञापनों के पर्चे और बैनर त्योहारों के दौरान कंपनियां अपने प्रचार के लिए बड़े पैमाने पर पंपलेट और पर्चे बांटती हैं। लोग इन्हें एक बार पढ़ते हैं और वहीं सड़क पर फेंक देते हैं, जिससे पूरा इलाका कागजों के टुकड़ों से भर जाता है। पूजा पंडाल में गंदगी रोकने के लिए पूजा पंडाल की कार्य व्यवस्था प्रशासन और पंडाल प्रबंधन की देखरेख में होती है। ऐसे में पंडाल प्रबंधन और प्रशासन दोनों को साथ मिलकर पंडाल और उसके आसपास के इलाके की साफ सफाई की व्यवस्था करनी होगी, जिससे उत्सव के दौरान बीमारियों, दुर्घटनाओं और गंदगी से बचा जा सके। पूजा समितियों का उत्तरदायित्व है कि वह एक ठोस कदम उठाए। हर पूजा समिति को अपने बजट का एक हिस्सा केवल स्वच्छता के लिए आवंटित करना चाहिए। उन्हें एक क्लीननेस टास्क फोर्स बनाकर साफ सफाई की व्यवस्था पर निगरानी रखनी होगी। सफाई कर्मियों को 24 घंटे शिफ्टों में काम करना होगा, जिससे वे पूजा में उपयोग हो चुके सामग्री से होने वाली गंदगी और पंडाल के आसपास के इलाके में फैलने वाली गंदगी दोनों को रोक सके। पर्याप्त कूड़ेदान की व्यवस्था पंडाल के भीतर हर 15 से 20 मीटर की दूरी पर और आने जाने वाले रास्तों पर बड़े बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले कूड़ेदान रखना होगा, जिससे लोग

0: कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकें। थर्माकोल और प्लास्टिक से बने दोने पत्तल के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगाकर कागज या पत्ते के बने चीज़ों को उपयोग पर जोर देना होगा। शौचालय की व्यवस्था महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग तथा साफ सुथरे अस्थायी शौचालयों और पानी की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे पंडाल तथा उसके आसपास के इलाके में गंदगी नहीं फैले। खाने पीने की दुकानों को पंडाल के मुख्य द्वार से दूर रखना चाहिए और दुकानदारों को अपनी दुकान के आसपास एक बड़ा डस्टबिन रखना अनिवार्य होना चाहिए। प्रशासनीय प्रशासन और नगर निगम का उत्तरदायित्व है कि वे कचरे को जल्द से जल्द उठाने की व्यवस्था करें। नगर निगम की गाड़ियों को दिन में कम से कम 3 से 4 बार पंडालों के पास से कचरा उठाना चाहिए, ताकि वहाँ डंपिंग या सड़न न हो। कीटनाशकों और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव। पंडाल के आसपास की सड़कों, नालियों और खुले स्थानों पर नियमित रूप से कीटनाशकों और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना होगा, जिससे मच्छरों और दूसरे कीटाणुओं को नष्ट किया जा सके। जो खाद स्टॉल संचालक अपने आसपास सफाई नहीं रखते या सड़क पर सीधे गंदा पानी बहाते हैं, उन पर नगर निगम द्वारा भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे, दुनिया की कोई भी सरकार या कमेटी सफाई नहीं रख सकती। एक जिम्मेदार नागरिक और सच्चे भक्त के रूप में हमें ये आदतें अपनानी होगी। कचरा सिर्फ कूड़ेदान में ही फेंकें। घूमने आने वाले लोगों को अपने खाने पीने के चीज़ों के रैपर या दूसरे कचरों को हमेशा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। यदि कूड़ेदान न दिखे तो कचरे को अपने पास ही रखना चाहिए और जब डस्टबिन दिखे तभी उसमें फेंके। सड़क या पंडाल के कोने में बिल्कुल न गिराएं, जूठन न छोड़ें। भगवान का प्रसाद हो या भंडारे का खाना, अपनी प्लेट में उतना ही लें जितना आप खा सकें। अन्न का अपमान करना और फिर उसे गंदगी के रूप में छोड़ना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। दूसरों को भी टोकें। अगर आप किसी को पंडाल परिसर में कचरा फेंकते या थूकते हुए देखें तो उन्हें प्यार से टोकें। उन्हें समझाएं कि यह माँ का दरबार है, इसे गंदा करना सही नहीं है। घर से कपड़े का थैला लाना चाहिए। जब बच्चों को साथ मेला घूमने जाएं तो अपने साथ एक छोटा कपड़े का थैला जरूर रखें, ताकि छोटी मोटी चीज़ें या पानी की बोतलें उसमें रख सकें। त्यौहार हमारी ज़िंदगी में खुशियां, सकारात्मक ऊर्जा और भाईचारा लेकर आते हैं। ये हमें आपस में जोड़ते हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं। लेकिन कोई भी भक्ति या श्रद्धा तब तक अधूरी है जब तक हमारे भीतर अपने परिवेश को साफ रखने की नागरिक चेतना न हो। सोचिए, जब दूर दूर से लोग हमारे शहर या मोहल्ले का पंडाल देखने आए और वे यहाँ की भव्यता के साथ साथ यहाँ की बेमिसाल साफ सफाई की भी तारीफ करें, तो हमारा सीना गर्व से कितना चौड़ा हो जाएगा। इसलिए पूजा पंडालों में साफ सफाई रखना कोई अतिरिक्त काम नहीं है, बल्कि यह हमारी पूजा और भक्ति का ही एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। आइए इस उत्सवों के सीजन में हम एक नारा बुलंद करें, स्वच्छ पंडाल, स्वस्थ समाज और खुशहाल त्यौहार।
1: दोस्तों, कीर्ति जी ने एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है और अपना संदेश के अंत में उन्होंने एक नारा भी दिया। हमें चाहिए कि इस नारा को अपने जीवन में उतारें, खास करके इन पूजा के जो कुछ दिन हैं उस समय तो अवश्य ही इसका पालन करें, तभी शायद हमारा पूजा, हमारी प्रार्थना सफल होगा, साकार होगा। आइए दोस्तों, जोहार पलामू कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक खूबसूरत फिल्म गीत।

दोस्तों आपने सुना हीरो फिल्म के गीत, जिसे आवाज दिया था अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास। आप अगर भूले नहीं हैं दोस्तों, तो हीरो फिल्म में जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री को फिल्माया गया था बड़े ही खूबसूरत ढंग से। आइए दोस्तों, अब जोहार पलामू कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज के तारीख की यानी कि 15 अक्टूबर की विशेष घटनाओं को, जो इतिहास में अपने जगह दर्ज कराया। तो दोस्तों आपको बताते चले कि 15 अक्टूबर 1686 को मुगल शासक औरंगजेब ने बीजापुर के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1866 के 15 अक्टूबर को कनाडा स्थित फ्रेंच बहुल क्षेत्र क्यूबेक में जबरदस्त आग लगने से 2500 से भी ज्यादा मकान जलकर खाक। 1923 के 15 अक्टूबर को वर्ष का पांचवा उष्णकटिबंधीय तूफान लिबर्ट द्वीप के उत्तर में आया। 1932 के 15 अक्टूबर को टाटा कंपनी ने टाटा सन्स लिमिटेड नामक देश की पहली एयरलाइन की शुरुआत की। 1949 के 15 अक्टूबर को त्रिपुरा राज्य को भारत में सम्मिलित किया गया। 1958 के 15 अक्टूबर को अफ्रीकी देश ट्यूनिशिया ने मिस्र के साथ राजनीतिक संबंध समाप्त किए। 1970 के 15 अक्टूबर को अनवर सदत मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए। 1978 के 15 अक्टूबर को सोवियत संघ ने पूर्वी कजाकिस्तान क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया। 1990 के 15 अक्टूबर को सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बचेव को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। 1996 के 15 अक्टूबर को फिजी व्यापक परीक्षण संबंधी संधि की पुष्टि करने वाला प्रथम देश बना। 1997 के 15 अक्टूबर को अरुंधति राय को उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ब्रिटेन के सर्वप्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। 1998 के 15 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की फातिमा बी को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 के 15 अक्टूबर को चीन ने 12,000 किलोमीटर तक मार करने वाले DF-41 ICBM नामक प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया। जनरल जोसेफ राल्स्टन नाटो के सर्वोच्च वाइस कमांडर नियुक्त हुए। 2006 के 15 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाया। 2007 के 15 अक्टूबर को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी के तीन अर्थशास्त्रियों लियोनिड हरक्विज, इरिक मस्किन और रोजर मायरसन को प्रदान किया गया। 2008 के 15 अक्टूबर को रिजर्व बैंक ने CRR में 1% की कटौती की घोषणा की। इसी दिन अरविंद अदिग को उनकी पुस्तक द हाइट टाइगर के लिए वर्ष 2008 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। 2012 के 15 अक्टूबर को ब्रिटिश लेखिका हिलेरी मेंटल को उनके उपन्यास ब्रिंग अप द बॉडीज के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2013 के 15 अक्टूबर को फिलीपींस में 7.2 की तीव्रता वाले भूकंप से 215 से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत हुई। आइए दोस्तों, इससे जानकारी

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पलामू। आइए अब जुड़ते हैं उमंग कार्यक्रम से, जो प्रायोजित कार्यक्रम है। हम सुनेंगे उमंग का भाग संख्या 1394।

आप सभी श्रोताओं को आपके मित्र अजीत का नमस्कार जोहार। तो आइए सुनते हैं सुविचार हमेशा की तरह। तो हमें सुविचार भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस उम्दा संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला संदेश। लिखते हैं, उद्घोषक विमलेश जी और अजीत जी नमस्कार। हम छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू और सतीबाई साहू हैं। आपको बताना चाहते हैं कि उमंग एनसीईआरटी का कार्यक्रम बहुत हमें पसंद है। हम सादर आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके लिए प्रकट करते हैं। साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल और संतोषी पटेल जी का। लिखते हैं, विमलेश जी, अजीत जी, सादर नमस्कार। 14 सितंबर दिन सोमवार का कार्यक्रम बहुत ही खास और शानदार रहा। टिम टिम तारा बोलो टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा, इस गीत ने मन मोह लिया। पूरा कार्यक्रम बेहद रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक लगा। बच्चों के लिए ऐसी सुंदर और सीख देने वाली प्रस्तुति के लिए आप दोनों को और साथ ही साथ सीआईटी एनसीईआरटी की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। धमधा ग्राम सुखनी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी का। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। और एक संदेश और हमें मिला है, लिखते हैं, रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू जी का। एक संदेश और सुनते हैं जिसे लिखा है हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी ने। और आपने लिखा है करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से। लिखते हैं, विमलेश जी एंड अजीत जी, गुड मॉर्निंग। इट वॉज ए ग्रेट प्लेजर टू लिसन टू द पोएम द क्रो इन म्यूजिकल मैनर टूडे। What a coincidence it is that I read this poem in my childhood in the textbook and got it listened to it in a musical form. I liked this poem and song very much. Thank you very much. आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो आइए श्रोताओं, अब शुरू करते हैं एक और रोचक आविष्कार की कहानी। श्रोताओं, सच्चाई तो ये है कि हम इंसान भी बड़े अजीब हैं, है ना? जब कोई तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम हो जाती है ना, तो हम भूल ही जाते हैं कि उसने दुनिया को कैसे बदल दिया। अब पेन ड्राइव को ही लीजिए ना, छोटी सी उंगली भर का टुकड़ा है, लेकिन इसके अंदर हमारी पूरी पढ़ाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हजारों तस्वीरें और न जाने कितने वर्षों का डेटा बंद है। लेकिन श्रोताओ, जिसे आज हम इतनी आसानी से जेब में डालकर घूमते हैं ना, 25-30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सी चीज अलमारी भर की भारी भरकम फाइलों को चुटकी में निगल लेगी। आपको याद होगा 90 के दशक का वो दौर, जब कंप्यूटर क्लास या दफ्तरों में हम वो चौकोर पतली काली फ्लॉपी डिस्क लेकर घूमते थे, है ना? जरा सी धूल लगी या बैग में मुड़ी तो सारा काम खत्म। और फ्लॉपी की कुल क्षमता कितनी थी आपको पता है? महज 1.44 मेगाबाइट यानी MB। यानी आज के दौर में एक MP3 गाने का आधा हिस्सा भी उसमें ठीक से नहीं आ सकता। आज हमारे पास चलता फिरता डेटा बैंक है यानी पेन ड्राइव। पता है श्रोताओ, इसका आविष्कार हुआ था एक आविष्कारक के भयंकर गुस्से और शर्मिंदगी के कारण। किस्सा है साल 1998 का। इजराइल के एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, नाम था डोब मोरान। उनकी अपनी एक छोटी सी कंपनी थी। वे कंपनी को बड़ा करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कुछ बड़ी धनराशि की जरूरत थी। मोरान अपनी कंपनी के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका पहुंचे। वहां एक नामी निवेशक के सामने उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देना था। तो हुआ ये कि मोरान बड़े आत्मविश्वास के साथ मीटिंग रूम में पहुंचे, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त पर उनका लैपटॉप चालू ही नहीं हुआ। मोरान घबरा गए। घबरा कर उन्होंने वहां मौजूद दूसरे कंप्यूटर में अपनी फ्लॉपी डिस्क लगाई और फिर वही हुआ जिसका डर हर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले को होता है। जानना चाहते हैं क्या हुआ? हुआ ये कि स्क्रीन पर लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर आ गया, डिस्क करप्टेड।
श्रोताओं, वो बड़ा निवेशक घड़ी देखता रहा, मोरान पसीने पसीने होते रहे। पूरी तरह से उन्होंने कोशिश किया कि वो फ्लॉपी डिस्क खुल जाए, लेकिन डेटा नहीं खुला। अंत में निवेशक आई एम सॉरी बोलकर चल दिया। मीटिंग रद्द हो गई और मोरान को उस कमरे से सिर झुकाकर बेहद शर्मिंदा होकर निकलना पड़ा। तो साथियों, उस शाम होटल लौटते हुए डॉन मोरान गुस्से और लाचारी से भरे हुए थे। उन्होंने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से एक सवाल पूछा, क्या इंसान ऐसा कोई छोटा मजबूत और भरोसेमंद साधन नहीं बना सकता जो चाबी के गुच्छे की तरह जेब में आ जाए और जिसका डेटा कभी खराब ना हो। बस उनके इसी विचार ने पेन ड्राइव की नींव रख दी, यानी असफलता ही नए विचार की चिंगारी बनी। लेकिन यह हुआ कैसे? श्रोताओं, इसके लिए आपको थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी तकनीकी जानकारी देते हैं। आपको पता होना चाहिए, उस दौर में कंप्यूटर की दुनिया में दो नई चीजें दस्तक दे रही थीं। पहली थी यूएसबी पोर्ट, जिसका इस्तेमाल उस समय लोग सिर्फ माउस या कीबोर्ड जोड़ने के लिए करते थे, और दूसरी थी फ्लैश मेमोरी, यानी ऐसी चिप जिसके कारण बिजली चले जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता था। तो डॉब मोरान ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए। मोरान और उनकी टीम ने फ्लैश चिप और यूएसबी कनेक्टर को अंगूठे जितने छोटे खोल में फिट कर दिया। ना किसी तार की जरूरत, ना किसी बैटरी की, और उन्होंने उसे कंप्यूटर पर लगाया। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, कंप्यूटर का कुछ डेटा वहां ट्रांसफर हो चुका था। उन्होंने उसका नाम रखा डिस्क ऑन की, यानी चाबी के छल्ले में लगने वाली डिस्क। आपको पता है श्रोताओं, उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी? अंदाजा लगाइए। शायद आप सोचते होंगे 1 GB या 2 GB, आपके अलग अलग अनुमान होंगे, लेकिन श्रोताओं आपको बताना चाहता हूं, उसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी थी मात्र 8 MB, यानी 8 MB। आज तो 8 MB में हमारे फोन से खींची गई एक अच्छी सी फोटो भी नहीं आती। भले ही ये आज कम लगे, लेकिन श्रोताओं उस वक्त ये 8 MB पूरे 5 फ्लॉपी डिस्क के बराबर थी। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये फर्श पर गिर भी जाए तो इसका डेटा सुरक्षित रहता था। लेकिन श्रोताओं, अब प्रश्न है, अमेरिका और पश्चिमी देशों में इसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव कहा जाता है, तो ये भला पेन ड्राइव कैसे बन गई? इसका नाम पेन ड्राइव कैसे पड़ा? ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है। जब ये तकनीक एशियाई बाजारों में आई तो कई कंपनियों ने इसे पतले मार्कर पेन जैसा आकार दिया, जिसमें पीछे एक क्लिप होती थी, और लोग उसे शर्ट की जेब में पेन की तरह रख लेते थे। बस हमारे लोगों ने देखा और झट से नाम रख दिया पेन ड्राइव। और इस नन्ही सी ड्राइव ने ना जाने कितनी चीजों की छुट्टी कर दी। इसने फ्लॉपी डिस्क को सीधे म्यूजियम पहुंचा दिया। जो लोग बैग में CD और DVD के भारी भारी कैसेट लिए घूमते थे, जिन पर जरा सी खरोंच आते ही गाने अटक जाते थे, पेन ड्राइव ने इन सब का नामो निशान मिटा दिया। और आज तो कमाल हो गया है श्रोताओं, 8 MB से शुरू हुआ पेन ड्राइव का ये सफर आज 1 TB और 2 TB तक पहुंच चुका है, यानी पूरी दुनिया का ज्ञान, फिल्में और किताबें एक छोटी सी उंगली के पोर जितनी जगह पर समा सकती है। तो अब जरा सोचिए श्रोताओं, अगर 1998 की उस शाम डॉब मोरान की वो फ्लॉपी डिस्क खराब ना हुई होती, तो शायद हम आज भी फ्लॉपी डिस्क और नाजुक CD के जंजाल में ही उलझे होते। जी हाँ श्रोताओं, यही तो है विज्ञान की खूबसूरती। जब कोई भी इंसान किसी परेशानी से तंग आकर एक बेहतर विकल्प ढूंढने की ठान लेता है, तो शुरू होता है नवाचार और दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएं, तो 1998 की उस शाम को कभी ना भूलें जिस दिन फ्लॉपी डिस्क खराब हो गई थी और डॉब मोरान ने इस बात को ठान लिया था कि वो इसका विकल्प ढूंढ कर ही दम लेंगे। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम उमंग और सीखते रहिए नई नई बातें। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए।

0: यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आम की गुठली। कक्षा 3 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पौधरोपण का संदेश दिया गया है तथा ये बताया गया है कि मात्र पौधा रोपना ही पर्याप्त नहीं है, पौधे की समुचित देखभाल भी की जानी चाहिए।
1: एक दिन अम्मा बाजार से बच्चों के लिए आम लाई। 1 किलो में 7 आम आए। आम छोटे छोटे और खूब रसीले थे। अम्मा ने उन आमों को धोकर फ्रिज में रख दिया और बच्चों से कहा,
2: शाम को अब्बा दफ्तर से आएंगे, तब तक फ्रिज में आम भी ठंडे हो जाएंगे। रात के खाने के बाद हम आम खाएंगे।
1: मुन्ने को आम बहुत पसंद थे। थोड़ी देर में अम्मा, सीमा और समीर दूसरे कमरे में चले गए। अब 4 साल का शरारती मुन्ना कमरे में अकेला रह गया। उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई ना था। मुन्ने ने मौका पाकर चुपके से फ्रिज खोलकर एक आम उठा लिया और खूब मजे लेकर चूस चूस कर खाया।
3: इतना मीठा आम है, ये आम खाके तो मजा आ गया।
1: फिर मुन्ने ने हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ली और दूसरे कमरे में जाकर दादा दादी के साथ बातें करने लगा। शाम को अब्बा आए। दादा दादी के साथ बैठकर सबने रात का खाना खाया। खाना खाकर अम्मा ने जब फ्रिज से आम निकाले तो 7 की जगह सिर्फ 6 आम थे। अम्मा ने बच्चों से पूछा,
2: क्या आप में से किसी ने एक आम खाया है?
1: सीमा और समीर ने इनकार में अपनी गर्दनें हिलाई।
3: नहीं अम्मा, हमने तो फ्रिज खोला ही नहीं।
1: मुन्ने को शर्म आ रही थी, फिर भी जी कड़ा करके उसने कहा,
3: नहीं, मैंने तो आम नहीं खाया।
1: अब्बा बच्चों का इनकार सुनकर मुस्कुराए और कहा,
4: आम तो आप लोगों के लिए ही आए थे, अगर आप में से किसी ने एक आम खा भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इन आमों की गुठलियाँ बहुत छोटी थी। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर किसी बच्चे ने आम की गुठली भी निगल ली होगी तो आज रात उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होगा।
1: इतना सुनना था कि मुन्ना झट से बोल पड़ा,
3: नहीं नहीं अब्बा, गुठली तो बड़ी थी, मैंने तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था।
1: ये सुनकर सारे लोग हंस पड़े। मुन्ना शर्म से लाल हो गया। पास ही बैठी दादी जान ने कहा,
5: अरे वाह, मेरे मुन्ने ने सच को कबूल करके मेरा दिल जीत लिया।
6: तो बच्चों, आपने सुनी ये कहानी, अच्छी लगी ना? अच्छा, अब आपके लिए कुछ सवाल हैं। ऐसे कौन कौन से फल हैं जिनकी गुठली फलों के अंदर होती है, उसकी एक फेहरिस्त बनाइए। ऐसे कौन कौन से फल हैं जो सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं, बीज, पत्ती, फूल और फल, इनके आने की सही तरतीब क्या है? आपने कौन कौन से आम खाए हैं उनके नाम लिखिए। इन सवालों के जवाब आप अपने वालिदैन, दोस्त और अहबाब से भी चर्चा कर सकते हैं।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम आम की गुठली और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। इस कार्यक्रम में भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान बहादुरी से अंग्रेजी साम्राज्य का सामना करने वाले और अपना प्राण न्योछावर करने वाले वीर

0: किशोर जोरावर सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
1: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
2: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
3: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
4: वीर जोरावर की
5: जय!
4: वीर जोरावर की
5: जय!
4: जय जेरापुर, जय भारत!
5: जय जेरापुर, जय भारत!
2: राजा जोरावर सिंह,
6: हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
7: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
6: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
7: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
8: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
3: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
8: जी।
3: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
8: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
3: बिल्कुल,
8: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
3: जी मंत्री जी।
8: जी महाराज।
6: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
4: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
9: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह खास
10: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
3: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
10: जी जरूर, हुक्म करें।

0: आपकी क्या मदद कर सकते हैं?
1: देखिए निजाम साहब।
0: जी फरमाइए।
1: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
0: जी।
1: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
0: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
1: जी।
0: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
2: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
3: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
4: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
2: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
5: बिल्कुल।
2: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
5: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
2: लेकिन जरा होशियारी से।
5: जो हुकुम सरकार।

0: John Armour! What how? Tum charo taraf se gir chuke ho.
1: Ye kya hai?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ, आओ सामने।
0: बाउट हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियों,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
3: छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश, सारा जंग, मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
4: हुजूर।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: फौजियों, ले चलो इसको।
3: छोड़ो मुझे, जल्दी हाथ हटाओ। छोड़ो मुझे।
5: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों न गंवानी पड़े।
6: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर

0: जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
1: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
2: अप्पा ये नहीं हो सकता।
1: देखो देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
2: ये नामुमकिन है।
1: व्हाई?
2: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे।
1: yeah.
2: अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
1: तो नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा
2: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
1: Actually, you are a fool.
3: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
0: काला पानी की सजा?
3: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
0: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
3: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
2: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
0: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अरशद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आपने सुना उमंग का भाग संख्या 1394। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र FM के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए दोस्तों, अब हम जुड़ते हैं अपने दिल्ली केंद्र से, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे अंग्रेजी समाचार और हिंदी समाचार। उसके बाद बुम्बई केंद्र से जुड़कर सुनेंगे विविध भारती से प्रस्तुत कार्यक्रमों को। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई यात्रा टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। लेह के निम्मू को हिमाचल प्रदेश के दारचा से सुदूर जांस्कर घाटी के माध्यम से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क गलियारा प्रदान करती है, जिससे श्रीनगर लेह और मनाली लेह मार्गों पर आवागमन और आसान हो जाएगा। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाह हनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। इसके साथ ही भंडार सीमा 1000 क्विंटल निर्धारित की है। ये इस वर्ष नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने जमाखोरी को रोकने और त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चीनी भंडार मानदंडों में संशोधन किया है। संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत कोलकाता और इसके क्षेत्रों तथा असम के लिए भंडार सीमा 2000 क्विंटल निर्धारित की गई है। मंत्रालय ने कहा कि औसत खुदरा चीनी के मूल्य में अगस्त में अपने उच्चतम स्तर से 15% तक कमी आई है। चीनी की कीमतों में कमी सरकार के चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसके सुचारू संचालन को सुगम बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों के प्रभाव का असर है। थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं से ये भी आग्रह किया गया है कि वे मिल से निकलने वाली चीनी की कीमतों में आई भारी गिरावट का लाभ तुरंत उपभोक्ताओं तक पहुंचाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर दे रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित इस मेले में देश भर के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लगभग 1500 महिला उद्यमी और कारीगर हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की। सोशल मीडिया संदेश में श्री मोदी ने कामना की कि मातृत्व प्रेम और स्नेह की प्रतीक मां स्कंद माता का आशीर्वाद हर परिवार में प्रेम शांति और सद्भाव लेकर आए। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया संदेश में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर कलाम ने अपनी असाधारण वैज्ञानिक प्रतिभा का उपयोग भारत को एक प्रमुख सामरिक शक्ति बनाने के लिए किया और राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखा। श्री शाह ने कहा कि भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम हमेशा एक आदर्श बने रहेंगे और युवा पीढ़ी को राष्ट्र की सेवा में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के 248 रन के लक्ष्य का जवाब में भारत 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर तो 223 रन ही बना सका। इसके साथ ही ये समाचार

0: समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate and dedicate to the nation five major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage and enhance water security in the region. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. Prime Minister Narendra Modi will interact with the Indian contingent that participated in the Asian Games 2026 in New Delhi today. The Prime Minister will also address a gathering on the occasion. India finished fourth in the medals tally at the Asian Games held in Aichi, Nagoya, Japan, winning 85 medals including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. The National Payments Corporation of India (NPCI) has postponed the implementation of the merchant discount rate (MDR) on select person-to-merchant UPI transactions. Earlier, NPCI had announced that the rate would come into effect from today. The National Payments Corporation of India said that keeping in mind the festive season, MDR on select person-to-merchant UPI transactions will be implemented immediately post Diwali. It said the date will be notified separately. All person-to-person UPI transactions will remain free regardless of amount. The MDR charges will apply only to person-to-merchant transactions exceeding 2,000 rupees. Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved a productivity link bonus PLB equivalent to 78 days wages for over 11,40,000 railway employees. Briefing media after the cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said government has allocated over 2009 crore rupees for this payout.
2: The cabinet today approved a productivity link bonus equivalent to 78 days wages for around 11,40,770 railway employees. The bonus is a Diwali gift for all railway employees who work tirelessly day and night to ensure the smooth functioning of the Indian railways. The total financial outlay for the bonus is approximately 2009 crore rupees.
3: 2009 crore rupees ka total bonus hai.
1: The maximum bonus amount payable per eligible employee is 17,951 rupees for the 78 days. Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has approved strategic restructuring of IDBI Bank. The government has constituted a committee to examine issues raised by sugarcane farmers and recommend appropriate measures for addressing the concerns. Former member of Niti Aayog Professor Ramesh Chand will chair the committee. The constitution of the committee follows the decisions taken during a meeting of representatives of sugarcane farmers from Karnataka and Maharashtra with the Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare and the Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. The committee will consult all stakeholders, including farmers' representatives, sugar mill associations, state governments and other experts. The committee will submit its report containing its findings and specific recommendations as early as possible for consideration by the competent authority. The Department of Agriculture and Farmers Welfare will celebrate the national level celebration of Mahila Kisan Divas 2026 in New Delhi today to recognize the women's contribution to Indian agriculture. The Minister of Agriculture and Farmers Welfare said that women, being an integral part of India's agricultural system, play several pivotal roles from sowing, transplanting and harvesting to livestock management, seed conservation and natural resource management. President Draupadi Murmu will inaugurate the National Saras Livelihoods Mela 2026 at Punnami Ghat in Vijayawada today. For the first time, the national level fair has been held outside the Delhi National Capital Region. Organized by the Union Ministry of Rural Development in association with the Andhra Pradesh government, the fair brings together around 1,500 women entrepreneurs and artisans. More than 650 stalls display traditional handloom products, handicrafts, organic goods and household items. India Meteorological Department (IMD) has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over Haryana, Chandigarh, Punjab, Delhi, Kerala, Mahe, Tamil Nadu and Puducherry today. Weather agency has forecast heavy rainfall in coastal Andhra Pradesh and south interior Karnataka today. In men's cricket, West Indies defeated India by 24 runs in the 4th T20 International in Hyderabad last night. Chasing a target of 248 runs set by West Indies, India scored 223 for 9 in 19.3 overs Sanju Samson was the top scorer with 56 runs. And that is the end of this news bulletin.
0: क्योंकि मैं खुद भी एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे हूँ बहुत समय से पिछले 20 साल से मैं उसका श्रेय पूरी तरह मैं अपनी माताजी को देता हूँ मुझे कंसिस्टेंटली जो है ना वो पुश करती रहती हैं और कुछ कुछ बताती रहती हैं कि ये सुन लो ये हो गया वो हो गया ये किताब पढ़ लेना भले ही मैं पढ़ पाऊँ ना पढ़ पाऊँ उनकी बात को मना नहीं करता मैं कहता हाँ मैं कर लेता हूँ और कई बार वो बोरिंग भी होता है जो बोलती हैं कह रही नहीं ये सुन लो वो सुन लो अब मैंने जिस जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में क्लियर हो गए मैं उनको ही फॉलो करता हूँ तो मैं नई नई चीज़ों में जंप नहीं करता उनको बहुत इंटरेस्ट दिन भर यही करती हैं तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी 20 साल से मैं जो फॉलो करते आया बिकॉज ऑफ mother, I could actually talk about the subject matter and the core principles. कि किसी का कुंडलिनी जागरण हुआ होगा अगर सिद्धियां आई तो कुंडली जागरण हुआ होगा कुंडली जागरण के बिना तो सिद्धियां नहीं आएंगी तो सिद्धियां कहां से आई होंगी तो उसके लिए कॉन्सेप्चुअली आपको यू हैव टू डीप डाइव यू हैव टू फिगर आउट कि हुआ क्या होगा तो नाथ संप्रदाय के जो साधु मिलते हैं जहां पर सासा हाले हासा चाले सॉन्ग है जहां पे वो इट ऑल टॉक्स अबाउट कि आपके भीतर जो है ना भीतर बड़ा उजाला भासे एक मणिधर आगे दीज लाइन्स जो है वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स येट वेरी सिंपल कि वो जो मूलाधार में जो मणि चक्र बोलते हैं जिसको मणि बोलते हैं कि कुंडलिनी का जो मणि है तो भीतर बड़ा और जो अंधेरे में जो ताला खोले वो बिना चाबी के अंधेरे में ताला खोले अंधेरा ही है ना आप जब आंख बंद करोगे तो अंधेरा है तो इस तरह की कॉन्सेप्चुअली चीजों को इंक्लूड करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत समझ की आवश्यकता थी वो मुझे मेरी अपनी माताजी की वजह से बहुत मिली प्लस मुझे एक आई फाउंड वन ऑफ द बुक कॉल्ड सारस्वत कुंडलिनी जागरण एक्सीडेंटली बाय समबडी आई मेट ही रेफर्ड दैट बुक समहाउ मैं एक वंदे भारत ट्रेन में बैठा था 6 घंटे का समय था मेरे पे आईपैड पे वो बुक थी मैंने उसको खोल के पढ़ना शुरू किया उसके 58वें पेज पे मुझे सासा हाले आसा चाले मिल गया जो कुंडलिनी जागरण के बारे में गुरु गोरक्षनाथ की 11वीं शताब्दी की लिखी हुई कपलेट से और वो इतनी सिंप्लीफाइड और उतनी गूढ़ और सिंप्लीफाइड येट सिंप्लीफाइड सो आई लव थिंग्स विच आर वेरी सिंप्लीफाइड यू विल लव टू हियर देम इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड गूढ़ इन्फॉर्मेशन सिंपल वर्ड्स में मिले पॉकेटेड इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं बट अंडरस्टैंडेबल इफ यू विश टू गो इन टू आप डीप डाइव करोगे अगर आप मैंने तेरे ही भरोसे अनुमान आप डीप डाइव करोगे तो आपको उसके अंदर वो मिलेगा जो आप शायद जिंदगी में ना खोज पाओ
4: बिल्कुल
0: उतनी क्लैरिटी ना मिले तो मेरा ये जिम्मेदारी है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्पिरिचुअल पर्सन दैट आई प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट कि अगर आप उसमें डीप डाइव करना चाहते हो तो आप कर लो फिर
4: बिल्कुल
0: आपके पास में ये रास्ता है सुगम रास्ता है इसको आप समझ लीजिए मैंने समझाया मैंने आपको समझा दिया हो सकता है कि मैंने 5% ही समझाओ लेकिन एटलीस्ट 5% 4% तो समझेंगे आप फिर आपकी जर्नी आप देखेंगे आप कैसे कहाँ जाना है
4: तो यहाँ पर ये आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए आपकी माँ का बहुत बड़ा रोल है
0: जी।
4: और माँ पिता से हम बहुत कुछ सीखते हैं कभी डांट खाते हैं मार खाते हैं तो ऐसी कोई शरारत वाली घटना भी बताइए अच्छी अच्छी बातें तो बता रहे कि डांट पड़ी हो वो भी बताइए
0: बहुत मैं अपने भाई की वजह से बहुत मार खाता था मेरे भाई मुझे जो है ना ट्रैप करा देता था कुछ कुछ चीजों में कभी बचपन में भाई ने मुझे बहुत जो है ना इस तरह की सिचुएशन में फंसाया है तो मार तो मैं खाता था हाँ। लेकिन भाई की वजह से खाता था और वो तो फिर माता जी के हाथ में जो आ जाए फिर वो हाँ। पाइप होता था जिससे बेलन पाइप चिमचा तो कर ये तो आप सब देखते हो लेकिन जो प्लास्टिक का पाइप होता है ना जिसमें हाँ। पानी भरते हैं
4: हाँ।
0: वो बड़ा खतरनाक होता था वो चिपकता भी बहुत था वो तो वो तो मैंने बड़े काफी उम्र तक खाया है वो मुझे अच्छा। मुझे याद नहीं कौन मुझे लगता है कि मैं 17-18 साल तक की उम्र तक भी खाया है
4: तो लेकिन क्या बात होती थी घटना क्या रहती थी
0: she will just get furious and then she will beat and then now you don't have any option because you ये तो जॉब है
4: तो मतलब कौन सी गलती आप करते थे जिससे मार पड़ती थी
0: मैं एक्चुअली कोई सच वो नहीं थी इन्फॉर्मेशन कैसी कैसी पास होती है इंटरप्रिटेशन होता है ना कैसे आप इंटरप्रेट कर रहे हो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फिल्म और फॉर अ स्टोरी कि आप जो भी इंटरप्रिटेशन की पॉसिबिलिटीज होती हैं उसको आप यू वर्क इट आउट एंड आई टेल यू वन ऑफ द सीन जहां पे फिल्म में जो है ना वो महाराज जी को नीचे उतार देते हैं और गोपाल को और महाराज जी को उतार देते हैं आपको जो हमारी ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी उसमें गोपाल था ही नहीं उस सीन के अंदर किसी ने मुझे बोला कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि महाराज जी एरोगेंट हैं उन्होंने अपने गुस्से में आके उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया मैंने कहा यार बात तो सही बोल रहे हो तुम सोचता हूं मैं इस बारे में तो मैंने शूट पे वहीं पे जाके वो उस पूरे के पूरे उसमें इवेंट में उसको इंक्लूड किया तो अगर आप देखें गोपाल के पास बहुत डायलॉग्स नहीं है
4: जी।
0: पूरे सीक्वेंस में गोपाल डायलॉग्स नहीं बोलता क्योंकि डायलॉग लिखे ही नहीं गए थे वो चूंकि गोपाल को धक्का मार के गिरा दिया इसलिए महाराज जी को गुस्सा आती है और वो फिर गोपाल से ही हर बात पे अगर आप याद हो आपको वो जब रोने लगता है, जब वो कहते हैं यहाँ पे स्टेशन बनेगा और यहाँ पे कभी सेल्स को नहीं उतारेंगे, तो ही लुक

0: एट हिम एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग बिकॉज ही नोज दैट ही इज ये मेरे लिए कर रहे हैं. तो मैं उनका साथी, मुझे भाई भी बोलते हैं, मतलब मुझसे भाई भी बोलते हैं, और मेरे लिए कर रहे हैं और समाज के लिए कर रहे हैं. दैट्स हाउ दैट सीन वर्क्स. तो इंटरप्रिटेशन है. अगर आपने इंटरप्रिटेशन में ध्यान नहीं दिया होता मैंने, तो शायद वो सीन इतना अच्छा वर्क नहीं करता. हो सकता कोई भी ना मुझसे क्वेश्चन करता,
1: बिल्कुल.
0: लेकिन फिर भी मैं उस बात पे गौर किया और उसके हिसाब से थोड़ा सा जो भी आमूलचूल परिवर्तन करते हुए वो फिल्म का इंटरप्रिटेशन चेंज किया. दैट वर्क फॉर पीपल. किसी ने मुझे कल ही बोला कि द वे ही लुक्स एट महाराज जी एंड स्टार्ट्स क्राइंग, वो मेरे लिए सीन में सबसे ज्यादा वर्क किया.
1: तो यहाँ माँ का ही जिक्र चल रहा है, तो मुझे लगता है कि माँ के नाम एक गाना होना चाहिए. माँ पिता के नाम कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे?
0: माँ के नाम पे, माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे.

0: बहुत सारी बातें माँ पिता के बारे में संस्कार होते हैं, लेकिन ये जो मेडिकल की पढ़ाई आप कर रहे थे, मैं MBBS कर रहे थे, बाकायदा एक डॉक्टर बन चुके थे, फिर अचानक फिल्मों की ओर झुकाव कैसे हुआ? मतलब वो बीज कैसे आया? आप इतनी बड़ी, मतलब एक आपको नौकरी मिल चुकी है और फिल्मों की ओर जाना कितना बड़ा रिस्क था, तो कैसे आपने चयन किया ये?
1: आई थिंक बहुत टफ था. मुझे लगता है कि मैं आ तो गया मुंबई, और आया क्यों मैंने बता दिया कि मैंने लखनऊ में ऐसा माहौल में चला गया मैं कि मुझे आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, म्यूज़िक में इंटरेस्ट आ गया, डिफरेंट आर्ट फॉर्म में पोइट्रीज लिखने शुरू कर दी मैंने. तो वो कॉलेज में भी करता रहा, परस्यू करता रहा करता रहा, फिर एक समय ऐसा आया कि मुझे मेडिसिन पसंद आ गई. अब वो दोनों पसंद है, अब दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, तो वो बैलेंस बना नहीं. कुछ सालों मैंने जो है ना यहाँ पे नौकरियाँ भी की मुंबई में, और उसके बाद में कुछ समय मैंने अपनी क्लिनिक भी चलाई, और बाय द एंड ऑफ इट मुझे समझ में ये आया कि एक समय ऐसा हो गया कि मुझे लग रहा था कि इट इज टू एग्जॉस्टिंग टू, ये दोनों अलग अलग दुनिया है. मैं इस दुनिया में

0: आता हूँ, फिर इस दुनिया में आता हूँ। और मेडिसिन जो है ना, चूंकि आई एम लिटिल इमोशनल पर्सन, मैं अपना मोबाइल फोन कभी स्विच ऑफ नहीं करता था, यानी साइलेंट भी नहीं करता था। पता नहीं किस पेशेंट का किस हालत में कॉल आ जाए, किस व्यक्ति का जान जो है ना जोखिम में हो और वो बोल रहे हो। लेकिन लोग कॉल ऐसे भी करते थे, सर 2 बजे के, सर जो है थोड़ा पेट में गैस बन गया, हॉस्पिटलाइज्ड है, बोल रहे हैं पेट में गैस बन गया। तो फिर मुझे एकदम समझ में आया कि ये दोनों मेरे लिए पॉसिबल है नहीं। और मैंने अपनी पीक जो प्रैक्टिस थी उस पर चलते हुए मैंने अचानक से एक दिन क्लिनिक बंद कर दिया, और तब से मैं वो सारे जो पेशेंट्स हैं उन सबके मैं फोन पे इलाज कर रहा हूँ कई सालों से। तो ऐसा नहीं होने उनको छोड़ दिया
1: जी जी।
0: सागर में नैया डालते, मैं उनको मजार में नहीं छोड़ा मैंने
1: जी जी।
0: तो खैर, विद देन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स 2011 में मैंने अपनी क्लिनिक बंद की, और उसके बाद से मैंने उसी समय मैंने कैमरा खरीदा, और सेम समय मैंने म्यूजिक भी छोड़ा था, म्यूजिक और मेडिसिन दोनों छोड़ दी मैंने। मैंने एक फिल्म साइन की थी और काफी बड़े प्रोड्यूसर थे उनके, मैं आज भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया बाद में आगे जाके। तो उनकी एक फिल्म थी जिसके सारे गाने मैं कर रहा था, सारे गाने सेलेक्ट हो जाते हैं, 2 साल तक उस पर काम चलता रहता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो गाने शायद वो डायरेक्टर के लिए वर्क नहीं कर रहे थे, या वो डिसाइडेड कि मुझे लगता है कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा हूँ नहीं, मैं म्यूजिक कंपोजर शायद सिंगर सॉन्ग राइटर ज्यादा अच्छा हूँ, मैं अपने लिए अच्छा गाने म्यूजिक बनाता हूँ, गाने बनाता हूँ, लेकिन किसी सिचुएशन के लिए मैं शायद बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, मैं इस बात को क्वेश्चन करने लगा। और अल्टीमेटली मुझे डायरेक्ट करना था, लिखना था और डायरेक्ट करना था, मेरा वो अल्टीमेट उद्देश्य था। तो मैंने कहा कि जब वो ही अल्टीमेट है तो मैं क्यों ना उस पर ही लगूं। 2011 से 26 तक, 15 साल तक, 14 साल तक, वो 25 तक मैं कहूंगा, वो यात्रा पूरी मेरी चर्निंग चली है, टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन, टू राइटिंग, ये वो सब कुछ जो भी है। तो पहली स्क्रिप्ट मैंने 6 साल में लिखी, 6 साल तक एक ही स्क्रिप्ट थी मेरे पास में, दूसरी स्क्रिप्ट मेरे 1.5 साल में, अनदर स्क्रिप्ट फिर साल में, फिर हर 2 महीने पे एक स्क्रिप्ट लिखने लगा मैं। तो ऐसा मेरे पास कुछ 53 कॉन्सेप्ट 54 स्क्रिप्ट प्लस कॉन्सेप्ट हैं जिन पे मैं अलग अलग समय पे काम करता रहा हूँ या करना चाहता हूँ भविष्य में।
1: और ये स्क्रिप्ट 15 दिन में लिखी, तो अगली स्क्रिप्ट 10 दिन
0: में। नहीं ऐसा नहीं,
1: डिजिटल माध्यम से,
0: अगर डिजिटल माध्यम से निकल गए तो कुछ भी हो सकता है, वो तो डाउनलोड है।
1: यहाँ पर गाना सुनवाते हैं।

0: गाने के बाद विशाल जी हमारे श्रोताओं को बताइए कि एमबीबीएस आपने बचपन के उस संसार के बारे में बताया जहां माँ की मार थी, डांट थी। जब एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे आप, तो उस समय टीचर्स की, प्रोफेसर्स की डांट भी तो रही होगी, उनके बारे में भी बताइए, कोई दिलचस्प घटना बताइए।
1: तो मेडिकल कॉलेज में जो है ना, कुछ होता नहीं, इज्जत नहीं होती है जूनियर की, है ना। मतलब ऐसा होता है कि वो कॉलेज के अंदर एकदम बहुत ही दयनीय स्थिति होती है पहले साल में। और मुझे क्या था कि मुझे, अब वो नया नया कॉलेज में हूँ लेकिन जाना तो बम्बई है
0: जी।
1: तो मैं दोस्तों के साथ में, दो तीन दोस्त मिलके बम्बई चले गए।

0: पिच करेंगे, ये करेंगे, वो
1: अच्छा
0: करेंगे करके 15-17 दिन मैंने वहाँ पे करके वापस गया अपने कॉलेज। तो वहाँ पे बंक मारना, अच्छा तो वहाँ पे मेरे बहुत, अभी तो बहुत बहुत अजीज टीचर हैं, वो रामजी पवार उनका नाम है,
1: जी
0: डॉक्टर रामजी पवार, एनाटॉमी पढ़ाते थे। वो ऐसा टॉल डार्क हैंडसम 6 फीट, और मतलब क्या पर्सनालिटी थी, मतलब हमारे कॉलेज के अमिताभ बच्चन थे वो, सब फैसिनेटेड रहते थे उनसे। लेकिन वो बहुत फ्यूर, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे,
1: अच्छा
0: और वो पकड़ लिया तो वो कुछ भी करेंगे। तो मेरे थोड़े से बाल लंबे हो गए, थोड़े लंबे बालों, मुझे लंबे बाल करने का शौक भी था, बम्बई से आया लंबे बाल के साथ में, और गलती से मैं जो है ना आगे वाली सीट पे बैठ गया।
1: अच्छा
0: अब उन्होंने पहले से नोटिस कर रखा था कि ये लड़का गायब है या बहुत दिन से दिखाई नहीं दिया है। तो उन्होंने बोला, किसी को सवाल किया कल क्या एनाटॉमी का कुछ तो सवाल था, जिसका जवाब मैंने दे नहीं पाया, और वो पता नहीं वो आगे बैठने की वजह से उन्होंने पकड़ लिया, और उन्होंने मेरा सर पकड़ा, ऐसा बाल पकड़ और बाल पकड़ के पूरा ऐसा, और कई बार उन्होंने 7-10 मिनट का लेक्चर बाल पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाते हिलाते किया। तो जो जो इंसल्ट थी, जो जिसके बोलते हैं हाँ, जो अनबीड़ा की, और क्या ये क्या कर दिया मैंने, और ये आगे क्यों बैठना था। तो ये सारी चीजें जब हुई तो कहीं ना कहीं उसके बाद से मेरा एक इंटरेस्ट वापस पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई की तरफ ध्यान देने, क्योंकि इंसल्ट हो गई है। अभी तक तो आप म्यूजिशियन हो, पोइट हो, एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट यू बिकॉज यू समाउ। मैं ऐसा था कि मैं जब पहुंचा था अपने कॉलेज, तो पहुंचने से पहले लोगों को पता था कि देयर इज दिस गाय जो कि इसका बैंड है लखनऊ में और बहुत अच्छा गाता है, ऑल ऑफ दैट। तो मैं ऐसा छोटे से स्टार की तरह एंट्री हुई थी कॉलेज में, और वो जो धुलाई हुई मेरी, उसकी वजह से मैंने थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, नहीं तो पहले साल में फेल हो जाता मैं।
1: जी, यहाँ पर पढ़ाई और धुलाई दोनों की बात हो गई, बैंड का जिक्र किया आपने लखनऊ में, कौन सा बैंड था, म्यूजिक बैंड?
0: म्यूजिक बैंड था, अपने मेरे अपने कंपोज सॉन्ग्स थे। मेरे एक मित्र हैं शिखर श्रीवास्तव, अभी वो गल्फ में चले गए, वो म्यूजिक टीचर हैं, और भी दो दोस्त थे ऐसे, तो हम मिलके जो है ना वी हैड अ बैंड, तो वहां पे जाके लाइव परफॉर्मेंसेस करते थे ओरिजिनल सॉन्ग्स के। सो वी वर इन अ वे लिटिल पॉपुलर आल्सो, बट देन मूव टू गोरखपुर। तो गोरखपुर में तो क्या ही होता है, मतलब कॉलेज कल्चरल साल में एक बार होते हैं, उन 3 दिन में अपन स्टार होते हैं, उसके बाद फिर वापस वही जो है जैसे बोलते ना कि रेगुलर डेज ऑफ लाइफ। तो वो 5-6 साल मैंने बहुत म्यूजिक को मिस किया कि मैं सीख नहीं पा रहा था और ये सब कुछ था। लेकिन फिर आके मुंबई आके भी मैंने एक बार इन बिटवीन 2017 एंड 2020 आई डिड इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स, शॉट देम वेल, ऑल ऑफ दैट। तो वो एक इंटरेस्ट जो था उसको मैंने पूरा कर लिया।
1: अगर याद है वो म्यूजिक बैंड का कुछ,
0: आई कैन सिंग अ सॉन्ग, या आई कैन सिंग कपल ऑफ लाइंस। एक हवा का हूं झोंका उड़ता ही फिर रहा हूं, इस गली उस डगर को घूमता फिर रहा हूं, रास्ते ही जिंदगी, क्या है गम क्या है खुशी, कौन जाने यहाँ
1: क्या बात है।
0: दिस वॉज वन सॉन्ग,
1: बहुत
0: उसकी उसकी एक एक दो लाइनें बहुत सुंदर लाइनें हैं, वो मैंने लद्दाख में पूरा फिल्म आया था उसको।
1: यहाँ जिक्र कविता का भी चला ना, और यादों के गलियारों में इस समय सैर कर रहे हैं
0: जी।
1: तो कोई कविता याद है वो जो उन दिनों में लिखी है, कोई खास कविता?
0: एक एक खास कविता है जो मैं अभी मैंने रिसेंटली एक जयपुरिया स्कूल है लखनऊ में, वहाँ पे बच्चों के सामने भी पढ़ी मैंने, क्योंकि लगभग मेरी उस समय की कविता है। अभी मैं कविताएं लिखता हूँ पर मैं वो थोड़ी मुझे लगता है कि सिंप्लीफाइड जीवन क्वेश्चन अपने आप से हरदम होता है ना कि ये जीवन है किस लिए,
1: जी जी
0: क्यों जी रहे हैं जीवन, अल्टीमेटली क्यों जी रहे हैं, उसको क्वेश्चन करते हुए मैंने कुछ लाइनें लिखी थी कि मैं कुछ नहीं बस मैं एक पात हूं, मैं कुछ नहीं बस मैं एक पात हूं, हवा जो तेज चल गई तो बीती हुई बात हूं।
1: क्या बात है,
0: इतना ट्रिवियल है ह्यूमन लाइफ। मैं कुछ नहीं बस मैं एक पात हूं, हवा जो तेज चल गई तो बीती हुई बात हूं, जमी से हूं उत्पन्न में, जमी में जाके घुल गया।
1: क्या बात है, वाह।
0: जमी से हूं उत्पन्न में, जमी में जाके घुल गया, देख तेरा लाल माँ तुझे सांझ ढले मिल गया।
1: वाह वाह वाह,
0: ईश्वर माँ है। और डाल से बिछड़ने का शिकवा मुझको कुछ नहीं, डाल से बिछड़ने का शिकवा मुझको कुछ नहीं, हूं धन्य मेरी खाद से जो एक फूल खिल गया।
1: क्या बात है, वाह। तो आपके व्यक्तित्व के इतने सारे पहलू उजागर हो रहे हैं और तो अब यहाँ पर एक गाना सुनवाते हैं, बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
0: गाना आप सुनाइए रहमान साहब का वंदे मातरम, दैट्स माय वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक्स।

0: अब गाने के बाद विशाल जी, चाय वाली एक कविता
1: जी
0: बड़ी मशहूर हुई है आपकी, तो याद कीजिए और सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी तो मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं क्या जो सिनेमा में मैंने सीखा है, स्टोरी टेलिंग में जो सीखा है, क्या मैं किसी उसको किसी कविता पे अप्लाई कर सकता हूँ।
0: जी
1: तो चाय को एक सेंट्रल कैरेक्टर बना के, यानी चाय को एक हीरो बना के मैंने एक कविता लिखी।
0: जी
1: इसके अंदर वो सब कुछ है, इसके अंदर विलन भी है, इसके अंदर महिमा मंडन भी है, इलेवेशन सीन भी है, जो होते हैं ना फिल्मों के जो
0: जी
1: तीन
0: जी
1: थ्री
0: बिल्कुल
1: स्ट्रक्चर होते हैं,
0: बिल्कुल।
1: तीन स्ट्रक्चर भी
0: हाँ
1: हैं,
0: हाँ
1: फिर रेजोल्यूशन भी है।
0: तो क्या तरन्नुम में भी गाते हैं?
1: नहीं ऐसे नहीं, ऐसे आप इस
0: हाँ
1: में
0: ठीक है सुनाइए।
1: चाय को मना कौन करता है भाई,
0: चाय को मना कौन
1: चाय को
0: करता है भाई?
1: मना कौन करता है भाई, कत्थई सी रसीली सी नशीली सी, अदरक सी तीखी गुड़ सी मीठी, इलायची सी मोहक, रोचक विमोचक, करंट मारती, जगाती हंसाती मूड बनाती, मिलने के बहाने सुझाती,
0: क्या बात है, वाह
1: मुस्कुराहटें लाती, कड़क रसीली नशीली चाय,
0: क्या बात है,
1: होश खोल देती है, इसे मना कौन करता है भाई।
0: वाह वाह, बहुत बढ़िया।
1: कत्थई सी रसीली सी नशीली सी, अदरक सी तीखी गुड़ सी मीठी, इलायची सी मोहक, रोचक विमोचक, करंट मारती, जगाती हंसाती मूड बनाती, बातें कराती, मिलने के बहाने सुझाती, मुस्कुराहटें लाती,
0: क्या बात
1: कड़क रसीली नशीली चाय, होश खोल देती है, इसे मना कौन करता है भाई। लेखक रसपान कर उपन्यास लिख दें,
0: है।
1: कवि मीठी जुबान लिख दें, फिल्मकार कहानी कर दें, पात्र सब मुंह जबानी कह दें,
0: क्या बात है,
1: पात्र सब मुंह
0: मुंह
1: जबानी
0: जुबानी कहते हैं।
1: जुबानी कह दें, टपरी पे की कटिंग देती है गुहार, सुगंध छोड़ती है ले आती है बाहर, और कड़वी है कॉफी, यहां से विलिन की एंट्री,
0: कड़वी है कॉफी क्या
1: और कड़वी है कॉफी और चाय की है अपनी ही मिठास,
0: बात है,
1: और कॉफी बोले अंग्रेजी पर अपनी चाय करती है हिंदी में बात,
0: वाह वाह वाह,
1: थकान मिटा देती है, इसे मना कौन करता है भाई। अब ये हो गया, विलिन खड़ा कर दिया, अब रेजोल्यूशन है भाई, कॉफी से कोई तकलीफ नहीं है
0: क्या बात है,
1: भाई,
0: वाह
1: कॉफी से कोई तकलीफ नहीं है, उसकी अपनी शान होगी, कोई ऊंची दुकान होगी, होंगे एयर कंडीशन में मोका अमेरिकाने की चुस्की के अपने स्वाद, तुम्हारी कॉफी रहे आबाद,
0: क्या बात है, वाह
1: पर अपनी चाय जिंदाबाद जिंदाबाद।
0: वाह वाह,
1: और फिर कांच के कप में मचलती चली आए, और कैसी चमक छोड़ती है, इसे मना कौन करता है भाई,
0: वाह
1: इसे मना कौन करता है भाई, कड़क रसीली नशीली चाय, कड़क रसीली नशीली चाय, कड़क
0: क्या बात
1: रसीली।
0: है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इतने सारे हुनर आपके सामने आ रहे हैं आज की इस बातचीत में।
1: जी
0: विशाल जी, एक बार फिर आपकी फिल्म की ओर चलते हैं, हनुमान
1: जी
0: अंश
1: जी
0: की ओर।
1: जी
0: इसमें जो कलाकार हैं लक्ष्मी नारायण शर्मा,
1: जी
0: तो ये पात्र कैसे मिले, मतलब कैसे आपने चयन किया कलाकारों का? एक बच्चा है फिर बड़ा, बड़े कलाकार का, सत्य
1: स्वप्न
0: शोभिना
1: सत्य।
0: शोभिना सत्य, कहाँ से मिले ये?
1: तो मैं एक ही करके बताता हूं। तो सबसे पहले जिनको आप कलाकार को देख रहे हैं, जिनका नाम है चंदन के आनंद, जिन्होंने डॉक्टर भोसले का रोल प्ले किया है,
0: जी,
1: वो मेरे मित्र थे, एक ही बिल्डिंग में हम रहते थे, पर बहुत समय के बाद में मुझे एक कैरेक्टर चाहिए था, नॉट भोसलेस, मुझे चाहिए था नासिर अली के रोल के लिए, तो मैंने उनको नासिर अली के रोल के लिए चयनित किया था। एक राजीव मिश्रा जी हैं, उनको मैंने सुखी राम के लिए चूज किया था, और हुआ सेट पे ऐसा कि चूंकि मुझे डॉक्टर भोसले, जिनको मैं कास्ट करना चाह रहा था, कोई बड़े एक्टर थे
0: जी
1: वो, जब उनका नहीं ही हो पाया आखिरी तक, तो मैंने फिर इनको नासिर अली की जगह डॉक्टर भोसले प्रपोज किया, और जिन जो सुखी राम प्ले कर रहे थे उनको नासिर अली प्रपोज किया, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हो जाएगा, और वो ऐसे फिट हुए दोनों के दोनों, आई हैड एन आइडिया कि ये
0: जी जी
1: होगा, और मेरे दिमाग में था कि अगर ये नहीं होगा तो मैं ये करूंगा। तो चयन तो किसी और कैरेक्टर के लिए, पांच कैरेक्टर्स उस दो सीन के अंदर थे जिनको अपग्रेड किया मैंने, तो जो नीचे वाले रोल पे था ऊपर गया, उसके ऊपर वाले ऊपर पे गया, ऐसे ऐसे करके
0: जी
1: सब
0: जी
1: सबका ऐसा हो
0: जी
1: गया।
0: जी
1: देन जो बच्चा है विहान शेठ के, जिसने लक्ष्मी नारायण जी का रोल प्ले किया है, बचपन का लक्ष्मी नारायण का रोल प्ले किया है, उसके साथ मैंने एक ऐड किया था पिछले साल, उसके पहले साल, और वो और जो पार्वती जिन्होंने प्ले किया है नेहा परांजपे, उन दोनों दोनों मराठी हैं, और वो मैंने
0: यहाँ
1: मरा, हाँ
0: नेहा परांजपे विविध भारती में कैजुअल अनाउंसर थी,
1: रही हैं, अच्छा
0: रही
1: क्या बात है,
0: हैं,
1: क्या बात है,
0: तो अभी भी
1: तो
0: कैजुअल आकाशवाणी में
1: आकाश
0: होती हैं।
1: करती हैं,
0: जी जी
1: तो
0: अभी
1: नेहा और इन दोनों ने, मैंने एक मराठी ऐड किया था, और वो इतना पॉपुलर हुआ ऐड, वो मैं मराठी मैं बोल नहीं सकता, समझता हूँ, मैंने वो महाराष्ट्र मराठी ऐड था, और वो इतना पॉपुलर हुआ, ये दोनों ने इतना अच्छा उसमें एक्टिंग की थी, और इतने सिंगल टेक एक्टर्स थे लोग, दोनों के दोनों, एक पुणे से आया था और एक यहाँ से आया था, बट इट्स अच्छा ग्रेट कॉम्बिनेशन दैट आई ऑलवेज थॉट कि मैं इनको किसी दिन कास्ट करूंगा, तो ये दो कैरेक्टर वहां से आए। फिर जिन्होंने राम बेटी श्रीमती राम बेटी शर्मा जी का, मतलब महाराज जी की पत्नी का रोल प्ले किया है, वो उनको मैंने चयनित किया, उनके ऑडिशंस में वो चयनित हुई। जो चोर का जिसने रोल किया है अभिषेक जो है ना, वो चित्रकूट से ही कास्ट किया उसको मैंने, उसने पहली बार कैमरा फेस किया है। ज्यादातर जो कोतवाली वाले सीन के सारे एक्टर्स जो है ना वो वहीं से लोकली चयनित किए गए हैं। जो ट्रेन सिक्वेंस में जो इंग्लिश एक्टर्स हैं वो सारे रशियंस हैं, और उसमें तीन जो अंग्रेज बैठे हैं वो तीनों के तीनों एक एल्बिनो हैं और वहीं के लोकल हलवाई वलवाई पकड़ के लेके आके हमने उनको उनसे एक्टिंग कराई है, जो पता नहीं चलता है आपको। तो बहुत कास्टिंग के लेवल में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। शोभना सत्य जो है ना, वो मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और मेरे लीड कास्ट की तबीयत खराब हो जाती है, और वो नीम करोली बाबा जैसे महाराज जैसे दिखता था वो। मैं जब वो पहले दिन मेरे ऑफिस आया था तो मैं एग्जैक्टली सीधे इमीडिएटली मैंने बोला, अरे तो महाराज जी हैं, और मैं उस पर गुस्सा था कि वो तीन दिन बाद लेट आया था वो। सो आई वॉज एंग्री एट हिम, कह रहे यार तुम असिस्टेंट डायरेक्टर हो, तुम तीन दिन लेट आ रहे हो। तो मैं गया लेकिन भूल गया, मैं तो बोला अरे महाराज जी हैं, बट मेरे लीड एक्टर की तबीयत खराब हो जाती है उन सेट। तो रिप्लेसमेंट के तौर पर मैं इसको टेस्ट करता हूँ मंदाकिनी रिवर पे, तुलसी घाट पे, चित्रकूट के तुलसी घाट पे, जहाँ पे तुलसी जी ने बहुत बहुत सारी चीजें लिखी भी हैं, उसी घाट पे मैं उसका 5 घंटे तक टेस्ट करता हूँ, और फिर वो सुर पकड़ लेता है। जब वो सुर पकड़ लेता है तो मेरी एक आदत है, आदत नहीं है मेरी, अंडरस्टैंडिंग है कि मैं एक्टर्स को बहुत ओवर गाइड नहीं करता हूँ, मैं उनको ओवर इन्फॉर्म भी नहीं करता, मैं सिर्फ उनके उनके कैरेक्टर के बारे में बात करता हूँ।
0: अच्छा,
1: मेरी मेरी टेक्निक ही है कि मैं सारे एक्टर्स को, चाहे नया हो पुराना हो, उसको उसके कैरेक्टर के बारे में कंसिस्टेंटली बताता रहता हूँ। ह्यूमन माइंड इतना रिसेप्टिव होता है और इतना समझदार है कि जैसे ही वो अपने कैरेक्टर को समझ पाएगा वो बिहेव करने लगेगा वैसा।
0: बिल्कुल,
1: हम अपने बच्चे के सामने पिता की तरह बिहेव करते हैं, वही हम पत्नी आती है तो मैं दूसरी तरह बिहेव करता हूँ, और मैं माता आती है तो मैं दूसरी तरह बिहेव करता हूँ, दोस्त आता है तो अरे यार करके बात शुरू कर देता हूँ। हम अपने जीवन में जैसे ही हम अपने रोल को समझ पाते हैं हम इमीडिएटली वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इतने सिंपल प्रोसेस है, मैं किसी भी, जितने भी आपने एक्टर्स देख रहे हैं उसमें कुछ लोग बहुत तगड़े एक्टर्स हैं, कुछ लोग बहुत वीक एक्टर्स भी हैं, पर उनका एक ही मेरा तरीका है, मैं सब किसी को कैमरे के सामने डांटता नहीं हूँ। अगर मुझे किसी एक्टर से बात करनी है मैं उसको साइड में ले जाऊंगा और फिर से वही बात समझाऊंगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था पहले से। तो इंटरेक्शन विद एक्टर्स, तो यही शोभना के साथ में भी हुआ कि मैंने उसको ओवर इन्फॉर्म नहीं किया। वंस ही कॉट द कैरेक्टर, जब उसने कैरेक्टर पकड़ लिया, डायलॉग्स उसको याद है, हिंदी उसकी अच्छी है, तो मैं क्यों उसको ओवर इंस्ट्रक्ट करूं। और वो फिर बहुत स्मूथ प्रोसेस हो गई कि हमने 22 दिन में रिकॉर्ड टाइम के अंदर हमने 2.5 घंटे की फिल्म शूट करी है।
0: हिट हुई। तो अब यहाँ एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाया।
1: तो मैं चाहूंगा कि आप फिर से हनुमान अंश फिल्म का ही एक गाना प्ले करें जिसका टाइटल है सासा हाले हासा चाले।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: विशाल जी, संघर्ष के दिनों में आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको कैसे मिलती है? जब आपका संघर्ष चल रहा था, उस समय कौन सी प्रेरणा आपको आगे बढ़ा रही थी?
1: आई थिंक वो एक आपकी जो क्या होता है कि कभी भी अपने जीवन को यदि आप किसी बहुत बड़े उद्देश्य के साथ जोड़ लें तो फिर वो सब चलता रहता है। फिल्म मेकिंग मेरे लिए पैसे कमाने का या नाम कमाने का जरिया नहीं है, मेरे लिए इम्पैक्ट सिनेमा, समाज पे इम्पैक्ट होना, समाज पे क्या असर डालेगा, आप कैसे, चूंकि इंफॉर्मेशन की दुनिया है, इंफॉर्मेशन का एज है, इस एज में इंफॉर्मेशन ही सबको ड्राइव कर रही है। हम ये पानी के बॉटल से पानी पीना चाहिए हमको, ये बेसिस इंफॉर्मेशन है और यही ड्राइव कर रहा है, तो गलत है सही है वो एक वो बात की बात है, लेकिन इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन के दुनिया में आप इंफॉर्मेशन को कैसे पॉकेट करो और समाज में एक एक एक नई राह पे उनको एक नया नया इंटरेस्टिंग कोई पर्सपेक्टिव दो, ये ड्राइव करता है मुझे, तो वो इसलिए मुझे कभी कभी हुआ नहीं। और मैं बहुत ही, रघु जी जानते हैं बात, कि मैं बहुत मॉडेस्ट लाइफ जीता हूँ, कोई किसी तरह का व्यसन नहीं है और पार्टियां वार्टियां नहीं करता हूँ किसी तरह, कोई खर्चा अदरवाइज है नहीं, जो गाड़ी में पेट्रोल पड़ता है वो, खाने पीना और जो किराए हैं यही मेरे खर्चे हैं, इसके ऊपर किताबें खरीदना और फिल्में देखना ये दूसरे खर्चे हैं जो एक्चुअली जिसे बोलते हैं कि जो लग्जरी है, या कभी टेंटिंग वेंटिंग करने के लिए उस तरह, उसमें बहुत मुझे
0: जी
1: मेरा
0: जी
1: मन करता है कि मैं बाहर जाके मतलब टेंटिंग करूं और एकांत में जाके, तो ये मेरे शौक है, जिस वजह से मैंने काफी अपने जीवन को बहुत ही मॉडरेट लाइफ में, मिनिमल और मॉडरेट लाइफ की तरह से जीता हूं, तो बहुत आवश्यकताएं जब नहीं होती हैं तो आप किसी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और आपका जीवन चलता रहता है। जीवन जब चलता नहीं है, जब उसमें कांस्टेंट स्ट्रगल होती रहती है और आप किल्लत में हैं, इसमें हैं, उसमें, फिर आप उल्टी सीधी संगत में जाते हैं, फिर आप नए नए रास्ते निकालते हैं जो कि जो सही रास्ते नहीं है, तो इनकी वजह से मुझे खास कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, और मैं बहुत वो जो मेरे अंदर है वो बहुत वोकल हूँ उसको लेके मैं, और मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ, तो मुझे इस परिवेश में रहते हुए भी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अनसक्सेसफुल हूँ या मुझे सक्सेस पानी है। फिल्म बनानी है, ये एक डेफिनेटली एक बात थी जो कि हरदम कचोटती थी कि यार सब कुछ कर लिया है, फिल्म नहीं बन रही अपनी।
0: जी विशाल जी, रघु का जिक्र आपने किया, रघुविंदर सिंह,
1: जी
0: और फिल्म में इनका नाम भी बाकायदा हम देखते हैं,
1: जी
0: तो इनके बारे में बताइए, इनकी फिल्म में क्या भूमिका है और क्या योगदान रहा है आपकी इस फिल्म मेकिंग में?
1: मुझे लगता है कि जीवन में मतलब काफी मेरे मित्रों के नाम फिल्में हैं, और जिसमें से एक फिल्म इंडस्ट्री के एक जो मेरे सबसे क्लोजेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट फ्रेंड्स में से, मतलब मैं कहूंगा रघु ही एक अकेले फ्रेंड है जो मेरे घर में मतलब घर की तरह से ही रहे हैं, और मतलब ऐसा नहीं कि इनके पास घर नहीं था, ये मेरे घर पे आके टिका करते थे ना, अपना
0: बिल्कुल
1: जॉब करके आ गए तो अपना जागरण में काम करते थे, फिर ये फिल्म फेयर चले गए, तो इनके साथ में एक जर्नी कंसिस्टेंटली जो ना हमारे दोनों के बीच में एक एक वो भी है कि हम एक दूसरे से सलाह भी बहुत लेते हैं, तो मेरे सलाहकार भी हैं बहुत समय से और मैं भी इनका सलाहकार हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ये सिर्फ सलाह लेते हैं, फिर मैं
0: बिल्कुल
1: डॉक्टर हूँ इनका, तो
0: जी
1: जिनकी तबीयत जब जब खराब होती थी तो जो होता था तो मैं इसका इलाज भी करता, तो मेरे घर पे आके ही फिर मैं मेरा वो इसको हॉस्पिटल बना के उसमें इलाज भी कराते थे,
0: जी
1: लेकिन हमने साथ में काम, शायद मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ काम एज सच किया, अब हम साथ में काम करेंगे भविष्य
0: जी
1: में, लेकिन रघु की जर्नी, रघु का जो जो उसकी बेस्ट उसकी क्वालिटीज हैं वो ये हैं, वो बहुत सारा बहुत सीखता हूँ उससे कि कैसे, हाउ टू मेंटेन रिलेशंस, हाउ टू द पूरी फिल्म जो इंडस्ट्री है वो पीपल मैनेजमेंट की इंडस्ट्री है, इफ यू नो हाउ टू मैनेज, एंड ही नोज इट सो सो वेल, एंड बहुत बैलेंस्ड हैं, बहुत शार्प हैं, बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है कि ये ऐसा क्यों होगा और ऐसा क्यों नहीं होगा, उसकी क्लैरिटी थॉट है, और हिंदी के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी रहे हैं, तो हमें हिंदी भी बहुत जोड़ती है आपस में,
0: जी
1: मतलब मैं भी अपने आप को हिंदी नाजी मान, नाजी तो नहीं बोलूंगा मैं, मुझे लगता है फ्लैग बेयर हूं मैं, मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही कहना चाहिए इसको, मैं
0: जी
1: बॉलीवुड नहीं कहना पसंद करता हूं, मेरे ट्विटर वगैरह जहां भी जाएंगे आपको लिखे दिखा मिलेगा फ्रॉम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नॉट बॉलीवुड, तो वो हमारा
0: वो इलाहाबाद के, आप लखनऊ के, ये
1: जी
0: भी एक रिश्ता है, तो
1: मिले तो
0: अरुण
1: ही
0: जी,
1: मुंबई में थे, मेरे पेशेंट
0: हाँ
1: थे, जब मैं क्लिनिक चलाता
0: अच्छा
1: था तो ये एक दिन एक मित्र
0: जी,
1: मनीष
0: अभी तो आपके
1: वो
0: बहुत सारे पेशेंट हो गए फिल्म के माध्यम से, जो मुरीद हो गए हैं कि आपसे मिलने के लिए इच्छुक हैं, एक लंबी तादाद, अमूमन लोग एक्टर एक्ट्रेसेस के फैन होते हैं, ये हम पहली बार देख रहे हैं कि एक डायरेक्टर और राइटर के इतने बड़े फैन फॉलोअर्स हो रहे हैं, तो ये आपके लिए शुभकामनाएं और बधाई
1: धन्यवाद
0: के पात्र हैं, आप बहुत
1: धन्यवाद,
0: सारी
1: बहुत बहुत
0: बधाइयां।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद,
0: यहाँ हमें, हमारे श्रोताओं को बताइए कि मुंबई में रहते हुए आप लखनऊ रहे और बुंदेलखंड का जीवन जिया है, तो यहाँ उन शहरों को क्या चीज़ मिस करते हैं, कौन सी बात आप मिस करते हैं?
1: एक तो वो शांति और जो बेफिक्री होती है ना, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा वहां जाते से ही आपको एक एक शांत वो महसूस होता है, जैसे कि जीवन चल रहा है उसी पेस पे चल रहा है, प्रॉब्ली जैसे मेरा अंतरंग, मेरा मन चल रहा है, मेरा शरीर चल रहा है, यहाँ पे शरीर और वो सब पीछे रहता है और आप हरदम कॉन्स्टेंटली उसको कोप अप करने के लिए कॉफियां चाय दुनिया भर के का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ताकि आप जो है ना उसके साथ कोप अप कर पाओ। लेकिन मुंबई जो है मुझे बहुत सुंदर शहर इसलिए लगता है क्योंकि एक तो यहाँ लोगों के बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं और आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता प्रॉब्लम, तो एक बहुत सिक्योर्ड शहर लगता है।
0: जी बिल्कुल, बहुत ऐसा अनुशासित
1: है, लोगों से आपको भय नहीं होता, लोगों ऐसा लगता नहीं कि आपको ये व्यक्ति कुछ बात मांगने पूछने जाएंगे तो वो आदमी मना कर देगा, बहुत सौहार्द रहता है, लोग बहुत हेल्पिंग है। और जिस तरह से महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित शहर है, जिस तरह की भाषा का लोग प्रयोग करते हैं, ऑटो वाला कभी आपको मीटर उल्टा नहीं मारता है, ऐसी हजारों खूबियां हैं शहर के अंदर
0: जी।
1: जो वहां पे आपको टेंशन होती है वहां पे उलझन होती है
0: जी।
1: जिस तरह से लोग जो है ना हर चीज को मतलब ग्रैब करने के लिए दे कॉम्पीट एंड बहुत ज्यादा, तो मुंबई में उतना वो मुझे लगता है इस मामले में बहुत रिलैक्स है। लेकिन अदरवाइज अगर आप कहोगे कि सुबह सुबह कहाँ की अच्छी होती है और शाम कहाँ की अच्छी होती है, तो भाई लखनऊ से ज्यादा अच्छी कहीं नहीं होती है।
0: बिल्कुल, बनारस की सुबह और
1: लखनऊ की शाम, अवध की शाम,
0: अवध की शाम। जी विशाल जी, एक आखिरी बात जो पहले हमें जाननी चाहिए थी, मेरे जहन में भी है और वो मैं भी बहुत पसंद करती हूँ, उत्तराखंड की पहाड़ियाँ, कैंची धाम जहाँ पर आप रहे हैं, कैची धाम की पहाड़ियाँ तो किस तरह से आपको मोहित करती रही, और फिल्मांकन भी उन्हीं इलाकों में किया है, तो कुछ शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए हमारे श्रोताओं को बहुत संक्षेप में।
1: तो आप चूंकि आप देख के आपको लग रहा है कि वो उत्तराखंड की पहाड़ियाँ हैं, वो सब चित्रकूट है।
0: ओहो,
1: और
0: चित्रकूट
1: चित्रकूट है।
0: ओहो,
1: तो जो भी आप उसमें बर्फ की पहाड़ियां देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो सब हमने VFX पे क्रिएट किया है।
0: चित्रकूट यानी उत्तर प्रदेश चित्रकूट,
1: उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जो है ना।
0: वाह क्या बात है, और सब लोग ये समझ रहे हैं कि वो उत्तराखंड है और कैची धाम,
1: कैची धाम
0: है, क्योंकि आपने कई बार
1: धाम भी दिखाया, जो भी आपने दिखाया वो अगमर्षण कुंड है जहाँ पे यक्ष का और युधिष्ठिर का संवाद हुआ था।
0: हाँ।
1: वो धारकुंडी नाम का एक आश्रम है जो चित्रकूट के डीप इन जंगल्स है, जहाँ पे तेंदुए और दुनिया भर के वो सब हमारे यूनिट ने भी देख लिए, तो मतलब वो ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं वहाँ पे, और अजगर वजगर सब कुछ था वहाँ पे,
0: घने जंगल हैं।
1: तो हमने वहां जाके शूट किया उसको, अगमर्षण कुंड में धारकुंडी आश्रम था वहां पे शूट करा। इसके अलावा चित्रकूट में जितनी भी आप लोकेशन देख रहे हैं, नदियां देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं, सब वो हमने मैच कर दिए। तो फिल्म मेकिंग जो है ना, वो बोलते हैं कि इट्स ऑल अबाउट मैचिंग, इट्स ऑल अबाउट मेक बिलीव, इट्स ऑल अबाउट चीटिंग टू, जिसे बोलते हैं चीट सीन करना। रियल लोकेशन हैं वो, लेकिन किसी और जगह के हैं, पर आपको वो ऐसा महसूस कराती हैं भावनात्मक लेवल पे, आपको ऐसे वहां पहुंच ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। तो जो भी आप एलिमेंटली जो चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो वहां का, वो आप कर लेते हो। इस तरह से हमने किसी तरह से चित्रकूट में ही, और चित्रकूट नहीं होता तो शायद ही फिल्म उस बजट में जिसमें बनाई बन नहीं पाती।
0: बिल्कुल, अब चलते चलते हमारे जो नए श्रोता हैं, युवा श्रोता, उन्हें कुछ दो लाइन में संदेश दे सकते हैं तो दीजिए।
1: तो मुझे लगता है कि हम भारतीय जो संस्कृति है, जो संत परंपरा है, जिसने धागे की तरह से पूरे पिछले 5-7 हज़ार साल में सारा टेक्स्ट, सारा लिटरेचर और समाज को बांध के रखा है। संत समाज से बाहर निकल जाता है, ना उसका जाति होती है, ना उसका कोई संप्रदाय होता है। संप्रदाय होते हैं, पर वो संप्रदाय फिल्म के अंदर आपने उसमें देखा भी, उसी ने विरक्ति उसको हो जाती है, वो ना नाम से अटैचमेंट रखता है, ना किसी जेंडर से अटैचमेंट रखता है, वो पूरी तरह से ईश्वर का हो जाता है। जब आदमी अपने आप को बिल्कुल बाहर रख के थर्ड पर्सपेक्टिव से, दृष्टा भाव से देखता है, एक संत दृष्टा भाव से ही दुनिया को देखता है, तो सारे जो मैल होते हैं ना, वो सारे मैल आपको दिखने बंद हो जाते हैं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम तीन चीजें जो नीम करोली बाबा भी बोलते थे, लव ऑल, सभी को प्रेम करो, फीड ऑल, भूखे व्यक्ति को भोजन जरूर खिलाओ, सबसे पहले खाना पूछो आदमी को, और तीसरा राम राम लिखो, ईश्वर को हरदम याद करते रहो, ये तीन चीजें वो सिखा के गए। मुझे लगता है कि जो जेंजी है या जो नई जनरेशन है, वो भी ऐसा ही कुछ सोचती है, जस्ट दैट उनको अलाइन करने की आवश्यकता है। वो भी यही बातें कर रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं कर रहे, यही बातें कर रहे हैं, पर उनको पता नहीं कि ये एक्चुअली कोर है। और यही तो, इसलिए नीम करोली बाबा की जो स्टोरी है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जेंजी और जैन अल्फा को सबसे ज्यादा प्रभावित, जो मैं करना चाहता भी था, करेगी।
0: बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, क्या एक दो लाइन गुनगुनाएंगे?
1: जी, अब ना देर लगाओ देर, अब कृपा करो महादेव, अब ना देर लगाओ देर, बस कृपा करो महादेव, ये दुनिया एक छलावा, तू साचा ठौर है बाबा के आहवा के जावा,
0: क्या बात,
1: के आहवा गमन मिटा दो भोले शंकर, के आहवा गमन मिटा दो भोले शंकर, हर हर महादेव। इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द रेयरेस्ट सॉन्ग्स जो मुक्ति चाह रहा है पर वो हंस के मांग रहा है, इतने ज्यादा फन भाव में, इतने अच्छे सुंदर भाव में हंसते हंसते बोल रहे कि आवागमन मिटा दो बोले शंकर।
0: जी जी विशाल जी, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी सारी बातें यादें साझा की, बड़ी दिलचस्प लगी हमें, हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छी लगेंगी हमें उम्मीद है। आपका तहे दिल से शुक्रिया पूरे विविध भारती परिवार की ओर से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा भी तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। मुझे लग रहा है कि मैं ट्रांसपोर्ट हो गया हूँ, 1960s में कहीं बैठा हूँ, ऐसा फीलिंग आ रही है।
0: नमस्कार
1: नमस्कार, धन्यवाद।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हनुमान अंश फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, तकनीकी सहयोग रीमा जोशी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
4: हाँ जी।
3: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
4: हाँ जी हाँ।
3: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं नहीं अभी नहीं।
3: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: कुछ लिखा
3: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
6: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
3: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
4: मेरा सारा साथ होगा।
7: आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
3: रंग तरंग
7: सभी विविध भारती सुनने वाले श्रोताओं को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार। रंग तरंग की पहली प्रस्तुति। जुबीन नौटियाल की आवाज में मनोज मुंतशिर के शब्द हैं, पायल देव का संगीत। मेरी मां के बराबर कोई नहीं इस एल्बम से।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम रंग तरंग। शाहिद माल्या और तृप्ति की आवाजों में अगला सुनिए रचना और संगीत के आरवाही का है।

0: कुछ इंतजार है इस एल्बम से ये गजल आपने सुनी भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में। गुलशन मैदान का लिखी ये गजल थी और भूपिंदर सिंह ने संगीत दिया था।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जब आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

कुमार विष्णु और स्वरांशी की आवाजों में एल्बम सजा मेरे घर दरबार माँ से आपने सुना ये गीत। रवि चोपड़ा की रचना थी, मीट ब्रदर्स का संगीत। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं भूपिंदर सिंह की आवाज में। ऐश कमल की रचना है, भूपिंदर सिंह का ही संगीत।

ऐश कमल की रचना थी, गायकी और धुन इंद्र सिंह की। फाल्गुनी पाठक की आवाज में सुनिए अगला गीत। महबूब की रचना, ललित की बनाई तर्ज।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गट लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम रंग तरंग। सुनिए अगली गजल भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में। इब्राहिम अश्क का कलाम है और तर्ज बनाई है भूपिंदर सिंह ने। एल्बम का नाम मोहब्बत।

ये गजल अभी आपने सुनी विनोद सहगल और सीमा शर्मा की आवाजों में, सईद राही की का लिखा ये गीत था और जगजीत सिंह की तर्ज।

गरबा सॉन्ग एल्बम से ये गीत हमने अभी आपको सुनवाया। शिवांग माथुर और श्रद्धा श्री की आवाजें थी। रुतिका ब्रह्म भट्ट का लिखा ये गीत था, शिवांग माथुर का संगीत। तेरी दीवानी इस एल्बम से फाल्गुनी पाठक की आवाज में, ललित का संगीत है, नवाब आरजू का लिखा गीत।

0: दोपहर के 12 बजने वाले हैं और कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ. जयशंकर ने ये बात कही। इसमें संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान भी उपस्थित थे। डॉ. जयशंकर ने बहुपक्षवाद के तत्काल सुधार के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बदली वैश्विक व्यवस्था की गति को समझना जरूरी है। डॉ. जयशंकर ने श्री नहयान के साथ बैठक में भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने जॉर्जिया के विदेश मंत्री माका बोतचोरी शिवली से भी मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बैंकॉक में ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉन हीली से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने चौथे भारत ब्रिटेन वित्तीय बाजार संवाद, फिनटेक बैठकों और संबंधित IUKFP बैठकों के सफल समापन पर चर्चा की। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने साझा प्राथमिकताओं, रचनात्मक और समावेशी G20 प्रक्रिया की दिशा में ब्रिटेन के साथ मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा है कि भारत और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस साल पूरी होने की उम्मीद है। कल मुंबई में श्री सिद्धू ने कहा कि समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में हुई प्रगति द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इस बीच केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और कनाडा के रिश्तों में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चर्चा के दौरान CEPA के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार पर बातचीत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के पास मौजूद गोला बारूद की 175 किस्मों में से 159 स्वदेशी हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 12.5 वर्ष में रक्षा क्षेत्र ने न केवल अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है

0: बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के अपने दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव भी किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
1: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड हैव सीन एंड ऑफ वार। यह विचार एक ओर हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है, तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में यह माना जाता है कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसी तर्क पर मैं कहता हूँ, होप फॉर द पीस बट प्रिपेयर फॉर वॉर।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से पूछा है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की स्थिति से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट कब जारी करेगा। इनमें हत्याओं की जांच और इंटरनेट सुविधा पर लगाई गई पाबंदियां शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति के 81वें सत्र में कल मानवाधिकार उच्चायुक्त के साथ संवाद के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुज स्वरूप ने ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

स्वागत है आप सभी विविध भारती सुनने वाले श्रोताओं का कार्यक्रम यादों की महफिल में। मैं हूं पूजा नारायणिया, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के शंकर का जन्मदिन। आज का कार्यक्रम हमने उन्हीं के संगीतबद्ध किए गीतों से सजाया है। साथ ही आपको बता दें कि आज है ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में पहला गीत प्रोफेसर फिल्म से, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली। वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्हें बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के

0: किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी इंद्र मुनार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

इस संदेश से पहले आपने गीत सुना आरजू फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल थे, तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म प्रिंस से, लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में। हसरत जयपुरी के ही बोल हैं, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: अनाड़ी फिल्म से मुकेश की आवाज में ये गीत आपने सुना, शैलेंद्र के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
3: दिल तो पागल है,
1: दुश्मन
4: चिट्ठी न कोई संदेह,
1: गदर एक प्रेम कथा,
5: मैं निकला ओ गट लेके,
1: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
6: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
1: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और हम आपको सुनवा रहे हैं शंकर जयकिशन के संगीत पर ये गीत, क्योंकि आज है इस संगीतकार जोड़ी के शंकर का जन्मदिन। शारदा की आवाज में सूरज फिल्म का गीत, हसरत जयपुरी के बोल, तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे
0: बस

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में हम लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूँ मैं पूजा नारानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम की इबारत हमने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दी है और आप सभी ने वो पढ़ भी ली है और आपके संदेश भी हमें मिलने लगे हैं। हम आपको इबारत पढ़ के सबसे पहले सुनाएंगे और उसके बाद गीतों का सिलसिला शुरू करेंगे। तो इबारत है कुछ इस तरह, सुन रही सखी तीनों लोक की रानी के कदमों में सिर झुकाने को जी चाहता है। हाँ तो चल, काजल सजा, मेहंदी लगा के दुल्हनिया बन, डोली में सवार हो चल, और देख जरा ख्याल रखना वहां कोई भवरा बेईमान न मिल जाए जो कली कली चूमता फिरता है। उसकी उड़ती जुल्फों को देखकर कहीं पागल मन व्याकुल ना हो उठे। अच्छा, कहीं कोई मंत्र फेरा तो उस पिया संग नैना लागे तो नाना दैया रे पराई है ऐसी जुस्तुजू ना कर। अरे सुन ना, हम तो उस गांव पे सदके जहां वो मिल जाए जिसके इश्क की तोहमत उठाने को जी चाहता है। उसके इश्क में दुनिया लुटा के हम भी देखेंगे। क्या बात है, अब देखिए आपको ही बूझना है कि आज के गाने कौन से हैं और बताइए कि इश्क जिसे तोहमत कहती है दुनिया उसे उठाने के लिए क्यों हर किसी का मन व्याकुल होता है। इबारत के साथ हमने ये प्रश्न भी इस इबारत में डाल दिया है। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के बारे में ही आज सबसे पहला गीत हमने लिया है, तो शुरू करते हैं कार्यक्रम का सफर और सुनवाते हैं आपको ये पहला गीत।

0: Police have made arrangements for maintaining peace. Several farmers' unions, political parties and traders' organizations have extended support to the Bans, called on the appeal of the father of the slain activist, ex-serviceman Bhim Singh. Indian wrestler Vishwajit Ramachandra More has created history by clinching a historic silver medal in the Greco-Roman finals at the Under-23 World Championships in Las Vegas today. Competing in the men's 55-kilogram final, More narrowly lost 12-13 to Georgia's Koba Karumidze in the final seconds of the bout. This marks India's first ever silver medal and first ever appearance in a Greco-Roman final at the Under-23 World Championships. Benchmark domestic equity indices were trading over 1.6% up in the afternoon session today. The Sensex surged 1,337 points to 74,119 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एसआईआर संबंधित कार्यों की समीक्षा की। जिनके पास दस्तावेज नहीं उनकी बूथवार सूची बनाकर सहायता करेंगे चुनाव कर्मी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, किसानों को महंगे कृषि यंत्र खरीदने से मिलेगी राहत, प्रखंड स्तर पर बनेंगे कस्टम हायरिंग सेंटर। बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापितों ने तेज किया आंदोलन। गेट संख्या 9 और 10 किया जाम, वाहनों का परिचालन ठप। राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड में रामगढ़ के पूरब जैन को मिला रजत पदक। चतरा के दीपक कुमार भी टॉप 60 राष्ट्रीय पुरस्कार में शामिल। और मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन बारिश की संभावना नहीं। दुर्गा पूजा में श्रद्धालु पंडालों में दर्शन और मेला का ले सकेंगे आनंद, सुबह कुहासे के आसार। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने नोटिस सुनवाई तथा पारित आदेशों के डिजिटाइजेशन की जिलावार समीक्षा की। उन्होंने फॉर्म 6 भरते समय घोषणा पत्र के सहायक दस्तावेज तथा नोटिस की सुनवाई में दस्तावेजों के अभाव वाले व्यक्तियों की बूथवार सूची तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि

0: आउटरीच कार्यक्रम चलाकर ऐसे पात्र भारतीय नागरिकों की सहायता करें। के रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से नहीं छूटना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया संदेश में श्री शाह ने कहा कि डॉ कलाम ने अपनी असाधारण वैज्ञानिक प्रतिभा का उपयोग भारत को एक प्रमुख सामरिक शक्ति बनाने के लिए किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में मिसाइल मैन को नमन किया। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि किसानों को आधुनिक कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रखंड स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही गांवों में सामूहिक पक्के थ्रेसिंग फ्लोर बनाने की पहल की जाएगी। मंत्री ने नेपाल हाउस स्थित सचिवालय में भूमि संरक्षण निदेशालय के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक में निर्देश देते हुए ये बातें कहीं। दुमका जिले के काठीकुंड थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद स्कूली छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने विशेष बैठक कर विद्यालयों से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उपायुक्त ने पुलिस गश्ती बढ़ाने, छात्राओं की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने, आत्मरक्षा प्रशिक्षण सुनिश्चित करने तथा संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्देश दिए। बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापितों का आंदोलन उग्र हो गया है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के छठे दिन विस्थापित अप्रेंटिस संघ के आंदोलनकारियों ने प्लांट के गेट संख्या 9 और 10 को जाम कर दिया, जिससे वाहनों का परिचालन ठप हो गया है। आंदोलनकारियों ने कल से प्लांट के अन्य गेटों को भी जाम करने की चेतावनी दी।
1: विस्थापित अप्रेंटिस संघ के द्वारा शांतिपूर्ण तरीका से भूख हड़ताल किया जा रहा है, तो गेट को हम लोग अविलंब बंद करने का काम करेंगे और इसके बाद भी अगर प्रबंधन कुंभकर्णी निंद्रा में सोए रहता है और प्रशासन भी, तो हम लोग एक आध गेट छोड़ करके पूरे गेट को हम लोग जाम करने का काम करेंगे।
0: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने चुनिंदा व्यक्ति से व्यापारी यूपीआई लेन देन पर व्यापारी छूट दर को स्थगित कर दिया है। इससे पहले यह दर आज से लागू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब नई दर दीपावली के बाद लागू की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज की विशेष श्रृंखला का विषय है कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में कहा कि यह मिशन भारत के आत्मविश्वास का ऐलान है।
2: इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास का ऐलान है। इस मिशन के तहत देश के 6 राज्यों में 1,60,000 करोड़ रुपए के 10 प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है।
0: इसके बारे में गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट में कार्यरत जमशेदपुर की छात्राओं ने बताया कि सेमीकंडक्टर विकसित भारत 2047 के रीढ़ की हड्डी है।
3: मैं तनुषा गौतम। विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर उसकी रीढ़ की हड्डी है। डिजिटल युग में सेमीकंडक्टर को 21वीं सदी का तेल कहा जाता है। चाहे हम स्मार्टफोन हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो या देश की सुरक्षा प्रणाली, हर जगह इन छोटी चिप्स का ही कमाल है।
4: मैं पल्लवी शर्मा। डिजिटल क्रांति का जो दौर चल रहा है उसकी असली ताकत ही सेमीकंडक्टर चिप है। भारत सरकार के सेमीकॉन इंडिया मिशन के तहत देश में ही बड़े पैमाने पर चिप मेकिंग इकोसिस्टम तैयार की जा रही है।
0: राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड मानक की 12वीं राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता में आर्मी स्कूल रामगढ़ के पूरब जैन ने रजत पदक हासिल किया। साथ ही गंगा स्मारक उच्च विद्यालय गिद्धौर चतरा के दीपक कुमार को भी टॉप 60 राष्ट्रीय पुरस्कार में स्थान मिला है। भारत मंडपम में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,22,000 रुपए प्रति किलो है। साहिबगंज जिले में दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व के मद्देनजर आमजनों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को लेकर मंडरो प्रखंड के विभिन्न होटलों और मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी आशीष कुमार वर्मा और नौरंग देव कुमार के नेतृत्व में चलाए गए जांच अभियान के दौरान औद्योगिक रंगों के उपयोग से तैयार लगभग 15 किलोग्राम दूषित मिठाइयां मौके पर नष्ट कराई गईं। पदाधिकारियों ने कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सिद्धगोड़ा काली पूजा दुर्गा पूजा कमेटी के 74वें दुर्गा पूजा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस बार पंडाल को बनारस के गंगा घाट की तर्ज पर बनाया गया है। रघुवर दास ने राज्यवासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और राष्ट्र की समृद्धि की कामना की।
5: शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा के अवसर पर समस्त जमशेदपुर वासी सहित झारखंड वासियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो शक्ति का संचय हम कर रहे हैं तो हमारा देश को नई ऊंचाई पे ले जाने के हम सब शांति भाव से सद्भावना से दुर्गा पूजा पर्व मनाएं।
0: और अब मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में श्रद्धालु दशमी तक बिना मौसम की चिंता किए पंडालों में दर्शन और मेला घूमने का आनंद ले सकेंगे। हालांकि सुबह के समय कोहरा और कुहासा छाए रहने के आसार हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एसआईआर संबंधित कार्यों की समीक्षा की। जिनके पास दस्तावेज नहीं उनकी बूथवार सूची बनाकर सहायता करेंगे चुनाव कर्मी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा किसानों को महंगे कृषि यंत्र खरीदने से मिलेगी राहत। प्रखंड स्तर पर बनेंगे कस्टम हायरिंग सेंटर। बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापितों ने तेज किया आंदोलन। गेट संख्या 9 और 10 किया जाम। वाहनों का परिचालन ठप। राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड में रामगढ़ के पूरब जैन को मिला रजत पदक। चतरा के दीपक कुमार भी टॉप 60 राष्ट्रीय पुरस्कार में शामिल। और मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन बारिश की संभावना नहीं। दुर्गा पूजा में श्रद्धालु पंडालों में दर्शन और मेला का ले सकेंगे आनंद। सुबह कुहासे के आसार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: इस गीत में जो अदाकाराएं हैं उनके नाम आपको बताने हैं तो श्रोताओं के जवाब हमें मिल गए हैं। मधुबाला और निगार सुल्ताना। बिल्कुल सही जवाब आपने दिए हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और हमने इस गीत से पहले जो गीत सुनाया था माँ शेरोवाली का और उससे संबंधित जो भी प्रश्न हमने पूछा उसके जवाब भी आ गए और हम उसी जवाब को अब लेने वाले हैं, आपके उन्हीं संदेशों को पढ़ने वाले हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि गरबा की ऊर्जा और दुर्गा पूजा की भव्यता मिलकर भारत की अनूठी विविधता को दर्शाती है। एक तरफ जहां डांडिया की खनक से पूरा माहौल झूम उठता है, वहीं दूसरी तरफ शंख की गूंज और भोग के खिचड़ी लबड़ा का स्वाद मन को तृप्त कर देता है। सच कहें तो गरबा अपनों के साथ हंसने, सजने संवरने और बिना किसी फिक्र के झूमकर जीवन का जश्न मनाने का एक खूबसूरत बहाना है। क्या बात आपने कही है, जो हमें अपनों के संग खुशियों के अनमोल पल बिताने का मौका देता है। जी बिल्कुल सही। एक श्रोता ने कहा है कि हम हर साल नवरात्रि में खंडेला के पास पहाड़ी पर चामुंडा माता के मंदिर जाते हैं, वो हमारी कुल देवी है। साथ ही एक श्रोता कह रही हैं कि नवरात्रि से तो बचपन से नाता रहा है, अभी भी हम जुड़े हुए हैं और डांडिया का तो क्या ही कहना, फिर सजना सवरना भी तो कितना प्यारा सा है। क्या बात है। एक श्रोता तो हमें बुला रहे हैं कि आइए गुजरात और बहुत मजा आएगा नवरात्रि में झूमने का। जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे आने की, बहुत धन्यवाद। और एक श्रोता कह रही है कि पूजा जी आप और सभी श्रोताओं को वो नमस्कार कर रही हैं। नमस्कार करते हुए उन्होंने कहा है कि इश्क छुपाए नहीं छुपता, इश्क पर किसी का जोर नहीं, लाख तोहमत लगा लें, मन करता है पिया संग नैना लड़े, जी चाहता है इश्क में दुनिया लुटा के देख लेंगे, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। उन्होंने इबारत से ही कुछ पंक्तियां उठाकर अपने संदेश में सजा दी है। और एक श्रोता ने कहा है कि माता रानी का प्यारा गीत, जो हमने इस कार्यक्रम के पहले आपको पहला गीत आपको सुनवाया, उसी के बारे में ये कह रही हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सुहाग का सदाबहार गरबा सॉन्ग मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले की आवाजों में। और एक और श्रोता कहते हैं कि नवरात्रि के आते ही चारों ओर डांडिया और रास गरबा की धूम मच जाती है। गुजरात में माता जी की आराधना करने का ये बहुत ही खूबसूरत माध्यम है, जिसमें गरबा को माता जी का स्वरूप मानकर सभी भक्तजन चनिया चोली और घेड़िया और रंग बिरंगे वस्त्रों में सज धज कर गोल घेरा बनाते हुए गरबा खेलते हैं। बड़ा मस्त समा होता है। साथ ही हमारे एक श्रोता हैं जो हमें धुनों की जानकारी हमें हमेशा कार्यक्रम के दौरान देते रहते हैं। यादों की महफिल की समाप्ति के बाद कौन है जो सपनों में आया झुक गया आसमान, इस तरह से उन्होंने हमें जानकारी दी है। और इस कार्यक्रम के पहले कोई प्यार से देखे जादू भरे कोहिनूर, क्या बात है, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो श्रोताओं अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। और साथ ही हम आपको बताते हैं कि अब जरा माहौल को बदलने की ओर हम बढ़ रहे हैं और इस नोकझोंक से निकलकर चलते हैं शादी के सपने देखने वाली दुल्हनिया के इस गीत की ओर, जहां सपने हैं साज श्रृंगार की बातें हैं सखी से बातें हो रही हैं। इस गीत की फिल्म का नाम हमें आप बताएंगे, ठीक है, लेकिन आप बताइए कि ऐसा कौन सा गीत है, ये भी साथ में बताइए, जो शादी तय होते ही हमारे मन में उभर आता है, सपने दिखाता है। और ये भी बताइए कि जब किसी भी शादी का माहौल हो तो वो कौन सा गीत होता है जो अचानक बजाए जाने पर आप झूमने से खुद को रोक नहीं पाते।

जी हाँ श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था कि ये किस फिल्म का गीत है। वैसे इस गीत को गाया है आशा भोसले ने, गुलजार ने लिखा है, राहुल देव बर्मन ने संगीतबद्ध किया है। अब फिल्म का नाम हमारे श्रोताओं ने हमें जवाब भेजे हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने भेजे हैं, खुशबू है इस फिल्म का नाम। अब शादी के माहौल में धूम ना मचे ऐसा होता है कभी? अब ये कल्पना कीजिए कि शादी या किसी त्योहार का वक्त हो और गली मोहल्ले के गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो एक मेला सा लग जाता है ना? और ऐसे में उनसे जो दिल का नाता होता है वो हो सामने तो क्या होता है बताइए। बिल्कुल सही, शुरू होती है हंसी मजाक ठिठोली और जवाब देने की होड़, है ना, जो कि सुर और गीत के ताने बाने में बुन जाती है और बातों ही बातों में होता है दिलचस्प मुकाबला। अगले गीत की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले ले लेते हैं ये संदेश कि हमारे एक श्रोता कह रहे हैं, सुनरी सखी मोहे विविध भारती बुलाए, जाना है गीतों की नगरिया, करना है सुरीला सफर, चुन चुन के लाई है पूजा पुष्प गीत, विविध भारती के संग्रहालय से मत देर करो, कहीं एक ना बच जाए, हमें जाना है विविध भारती की नगरिया। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। और एक श्रोता कह रहे हैं कि तेरी गलियों में जो बदनाम हुए तो क्या हुआ, कम से कम इस बहाने हमारा नाम तो हुआ। बिल्कुल, एक श्रोता कह रही है कि कार्यक्रम की बढ़िया शुरुआत सुहाग फिल्म के भक्तिपूर्ण गरबा नृत्य से। धन्यवाद। सुंदर आगाज सुहाग माँ के इस गाने पर हम सब ने गरबा डांस किया था। बिल्कुल सही, ये गीत तो है ही सदाबहार गरबा गीत। एक श्रोता ने कहा है कि नवरात्रि शुरू होते ही मैंने अपनी सखी यानी कि अपनी पत्नी से कहा कि तीनों लोगों की रानी, ये संदेश तो हम ले चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने यात्रा की योजना बना ली माता वैष्णो देवी के कदमों में सिर झुकाने के लिए। क्या बात है, जरूर जाइएगा। और हमारे एक श्रोता ने तो हमें लिखकर भेजी है हमारे ही इबारत की कुछ पंक्तियां गीतों से सजी हुई, ठीक है। और कुछ एक और श्रोता कह रहे हैं कि इश्क वह खूबसूरत गुनाह है जिसे हर इंसान बार बार दोहराना चाहता है क्योंकि इसमें जो सुकून मिलता है वह अनमोल है। बिल्कुल, हमने इबारत में ये सवाल भी तो आपसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि हर दिल इस इश्क के लिए, इस तोहमत को उठाने के लिए इतना मजबूर सा रहता है ना? तो बिल्कुल, ये सुकून ही तो ढूंढ रहा होता है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो चलिए श्रोताओं, अब हम इस शादी की धूम वाले गीत से आगे के गीत की ओर बढ़ने जा रहे हैं। और देखिए इस गीत में होता क्या है, एक दिलचस्प मुकाबला। एक पक्ष कोई बात कहता है तो दूसरा पक्ष भी उसका जवाब उसी अंदाज में देता है। क्या आपने भी ऐसा मुकाबला अपने मोहल्ले, गांव या शहर में होते देखा है तो हमें जरूर बताइए।

0: नया दौर फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी ने इस गीत की रचना की थी और तर्ज बनाई थी ओपी नैयर ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम सुरीला सफर, और अब लेते हैं एक संदेश। वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और हम आगे बात करने जा रहे हैं। श्रोताओं के संदेश पहले लेते हैं कि श्रोता कह रहे हैं कि जब भी नया दौर का गाना ये वाला जो है बजता है तो हमारे टीचर जब हमें पढ़ाते थे तो बोला करते थे कि पानी लेने के बहाने आ जा, बातें छोड़ दो और पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। क्या बात है। देखिए, शरारतीपन हम लोग बचपन में बहुत दिखाया करते थे, लेकिन टीचर की डांट से ही हमने सीखा कि ये शरारतें हमें कैसे और कब नहीं करनी चाहिए, है ना। एक श्रोता ने कहा है कि गरबा खेलने का शौक बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी खूब होता है। मेरी 4 साल की नातिन रोज गरबा खेलने के बहाने डांस करती है और इस नवरात्रि के त्योहार का आनंद लेती है। क्या बात है। एक श्रोता ने कहा है कि नया दौर दिलीप कुमार, वैजंती माला, ओपी नैयर जी, उन्होंने इस गीत की डिटेल हमें भेजी है। एक श्रोता कह रहे हैं कि हाँ, उन्होंने हमें गीत लिखकर भेजे हैं जो हमारी इबारत से आज उन्होंने बूझ लिए हैं। जी हाँ, ऐसे ही हमारे और भी कई श्रोता हैं जिन्होंने गीतों को बूझ लिया है और हमें लिखकर भेज रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारी एक श्रोता कह रही है कि गरबा मेरे शहर वडोदरा की शान है, वडोदरा की सांस्कृतिक पहचान और उसकी आत्मा को दर्शाता है, जिसे गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। नवरात्र के 9 दिनों के दौरान यह उत्सव परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम पेश करता है, जहां भव्य कमर्शियल ग्राउंड्स और पुरानी गलियों के पारंपरिक गरबे दोनों ही देखने को मिलते हैं। संक्षेप में, यह त्योहार वडोदरा के नागरिकों को एकता और आस्था के सूत्र में पिरोता हुआ वाकई शहर की आन बान और शान साबित होता है। बिल्कुल नवरात्रि का त्योहार ही ऐसा है जो हम सबको एक सूत्र में बांध देता है। ऐसे ही हमारे और भी श्रोता हैं जिन्होंने गीत की डिटेल्स हमें भेजी है, नया दौर। जी हाँ, और इसी तरह अगली जो हमारे

श्रोता हैं वो कह रही हैं कि नया दौर दिलीप कुमार वैजंती माला, इस गाने में वैजंती माला जी ने जो लहंगा चोली पहने हैं वह लहंगा का चोली के डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया। क्या बात है जी, हमें भी जब भी हम देखते हैं वैजंती माला जी को हमें तो उनका अंदाज बहुत पसंद आता है। इसे कच्छी या सिंधी कढ़ाई बोलते हैं ऐसा भी उन्होंने बताया। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं अब देखिए ऐसे माहौल में क्या होता है कि कभी कभी ऐसे अलबेले भी मिल जाते हैं जो शरारत करते हैं, छेड़खानी के अपने अंदाज से सबका मन बहलाते हैं। ऐसे चंचल अलहड़ और शरारती मिजाज वालों से थोड़ा सावधान तो रहना ही चाहिए, है ना, क्योंकि वो बेईमानी भी इसी रंगीन अंदाज में कर जाते हैं। ऐसे भंवरों से तो जरा बच के ही रहना चाहिए। अच्छा आप बताइए, भंवरा जो कलियों के पास जाता है ये तो उसका व्यवहारिक काम है, क्या इंसानों को ऐसी बेईमानी शोभा देती है? अच्छा जो गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसमें बात तो भंवरे की ही हुई है। ये जो एक सखी है दूसरी सखी को ये बता रही है कि इस भंवरे से थोड़ा बच के, पर तुझे कैसे बताऊं। अच्छा जो ये गीत हम बजाएंगे, बताइए इस फिल्म का नाम क्या है और कौन है वो भंवरा इस गीत में जिनका जिनका अब जिक्र आप हमसे करने वाले हैं।

हमारे श्रोताओं ने उन सवालों के जवाब भी हमें भेजे हैं जो हमने नहीं पूछे, लेकिन हमें तो आपका ये अंदाज भी बड़ा पसंद आता है। आपने फिल्म का नाम और संगीतकार गीतकार के नाम भी हमें लिखकर भेजे हैं। जी हाँ, ये था मंचली फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। एक श्रोता कहते हैं कि इश्क उम्र और शक्ल

सूरत देखकर नहीं होता, पता नहीं चलता कि कब हो गया है। और इसी तरह से कई श्रोताओं ने हमें फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम भी लिखकर भेजे हैं जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया। इसी तरह एक श्रोता कह रहे हैं कि बहुत अच्छा गीत है, लता जी की आवाज़ में बहुत दिनों के बाद सुनने को मिला यह गाना, तो अच्छा लग रहा है। हमें यह फिल्म का नाम तो नहीं पता, लेकिन हमारे श्रोताओं को अवश्य पता होगा, तो हमने अभी अभी तो नाम लिया है, अब तो आपको पता चल गया है ना। इसी तरह हमारे एक श्रोता कहते हैं कि उन्होंने भी ये जानकारी हमें दी है कि मंचली कली है लीना चंदावरकर और भवरा है इसमें संजीव कुमार। क्या बात है, हमने तो यही पूछा था कि भवरा कौन है, और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब हमें लिखकर भेजा है कि कली कौन है और भवरा कौन है। जी हाँ, संजीव कुमार इस गीत में भवरा है जिसकी बात कर रही है लीना चंदावरकर जी। ऐसे ही कुछ श्रोता कह रहे हैं कि गरबा के गीत शुरू होते ही बच्चे तो नाचते ही हैं, बुजुर्गों के पैर भी बैठे बैठे ही मस्ती में थिरकने लगते हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि इश्क के लिए दुनिया से ये तोहमत लगाती है कि जो इश्क करे वो पछतावे और जो इश्क ना करे वो भी पछतावे। दुनिया वालों के लिए मेरा तो यह विचार है कि सच्चा इश्क जरूर करें, वो भी सिर्फ एक से, जो हम सफर भी हो और मरते दम तक उसी से इश्क करते रहें। क्या बात है, बहुत ही शानदार आपने ये संदेश सबके साथ साझा किया है। इस तरह एक श्रोता ने कहा है कि फिल्म नया दौर के इस गाने तथा अन्य गानों में नृत्य निर्देशन यानी कोरियोग्राफी के गीतकार और बाद में संगीतकार बने श्री प्रेम धवन जी ने, जिन्होंने संगीतकार ओपी नैयर को अपने मुंबई के शुरुआती दिनों में अपने घर में रखा था। बहुत धन्यवाद इस जानकारी को साझा करने के लिए। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत जो है शरारत और बेचैनी से आगे बढ़ते हुए इश्क के उस सुकून की ओर हमें लेकर जाता है जहां हम सच में कह ही बैठते हैं कि हाँ नैना तो लड़ ही गए हैं। अब ये गाना तो है उमंग से भरा प्रेम और इश्क को समर्पित। आप बताइए इस गीत में कई सारे त्योहार और नृत्य के रूप दिखाए गए हैं, तो आप बताइए कि आपको कौन सा त्योहार सबसे ज्यादा पसंद है।

जी हाँ, ये गीत था गाइड फिल्म से, लता मंगेशकर के स्वर में, शैलेंद्र के बोल थे, एस डी बर्मन का संगीत। श्रोता कह रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज में। एक श्रोता कह रहे हैं कि गाइड फिल्म का ये गीत भारतीय फिल्मों में सबसे बढ़िया फिल्माए गीतों में शुमार है। लता जी की वहीदा रहमान जी का अभिनय देखने लायक है। मेरी लिस्ट का चौथा गीत शामिल हो गया है, क्या बात है। एक श्रोता ने कहा है कि वाह, ये तो मेरा पसंदीदा गीत है, अभिनेता देवानंद और अभिनेत्री वहीदा रहमान का फिल्म गाइड का गीत। जी बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कह रहे हैं कि मुझे बिना शोर शराबे वाले त्योहार पसंद है। जी तो श्रोताओं, अगले गीत की ओर हम बढ़ें, उससे पहले आपके कुछ कमेंट्स और ले लेते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि साहिबा को कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए हार्दिक बधाई, हार्दिक आभार, धन्यवाद। नवरात्र में हम बिहार के कस्बे में बाला त्रिपुर सुंदरी के मंदिर जाते हैं, भारी संख्या में। हमारे बिहार में भी कुछ नगरों में अब गरबा नृत्य का आयोजन होने लगा है। तो इसी प्रकार कई श्रोताओं ने हमसे साझा किया है इस गीत की डिटेल्स को, और साथ ही अपना नवरात्रि का त्योहार वो किस तरह मनाते हैं, किस उमंग के साथ में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं।

गम हो तो अरे रे रे रे रुकना है, अरे अरे मन मेरा, अरे रे रे रे रुकना है, हाँ रुकोगे।

हमारे श्रोता कह रहे हैं कि अभिनेत्री फिल्म का ये गीत है और हेमा मालिनी और शशि कपूर इसमें अभिनेत्री और अभिनेता हैं। बिल्कुल सही जवाब। हालांकि हमने तो कोई प्रश्न ऐसा पूछा नहीं, लेकिन आप उसके बावजूद भी जब अपने जवाब इस तरह से गीत की डिटेल हमें भेजते हैं तो हमें सच में बहुत अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद। हमारी एक श्रोता ने कहा भी है कि मेरा भी कमेंट शामिल कीजिए। तो देखिए, आपका कमेंट भी शामिल हो गया है। आपने इस गीत की जानकारी हमें भेजी है कि ये फिल्म अभिनेत्री से गीत है। एक श्रोता कह रहे हैं कि ये सभी गीत मेरी युवावस्था के हैं। उस समय मन कोमल होता है और गीत को अपने मन में समा कर अपने आप को ही नायिका समझ लेती थी और आंख बंद कर डूब जाती थी। क्या बात है। एक श्रोता गाने का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि वाह क्या बात है, लता दीदी के गाए इस बेहतरीन गीत के लिए उन्होंने हमें धन्यवाद भी कहा है और हम भी आपको धन्यवाद कह रहे हैं हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए पेश करने जा रहे हैं, सुनिएगा।

जी हाँ, यही था हमारी इबारत का आखिरी गीत। और इस फिल्म का नाम हमने पूछा तो हमारे श्रोताओं ने भी हमें सही जवाब लिख भेजे हैं। दिल ही तो है, यही है फिल्म का नाम। आशा भोसले और साथियों के सुरों में ये गीत, साहिल लुधियानवी की रचना, रोशन का संगीत। देखिए, कार्यक्रम का वक्त भी तो हो चला है। अब आज्ञा दीजिए पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: extended support to the bond call, which was materialized on the appeal of Bhim Singh, father of the slain anti-drug crusader. He urged people yesterday to come out and ensure the bond's success. The protesters are, however, allowing ambulances and other emergency vehicles to pass. The action committee formed to seek justice in the case has appealed to people to maintain peace and remain calm during the bond. There is no information of any untoward incidents from anywhere in the state as of now. The bond has been called from 6 a.m. to 5 p.m. Meanwhile, family of Parvinder Singh has not allowed the authorities to conduct his post-mortem as they are demanding to form a panel of doctors from PGI Chandigarh to do the process. Rajesh Bali, Akashwani News, Jalandhar.
1: President Draupadi Murmu has called for greater economic empowerment of rural women, asserting that their active participation in nation-building will be crucial to achieving the vision of Viksit Bharat before 2047. The President inaugurated the National Saras Mela 2026 in Vijayawada today in the presence of Andhra Pradesh Governor S. Abdul Nazir, Chief Minister N. Chandrababu Naidu and several union and state ministers. Speaking on the occasion, Ms. Murmu said that women associated with self-help groups were becoming self-reliant and contributing significantly to their families, the rural economy and national development.
2: जब एक दिन महिलाएं पीछे रह जाते थे आर्थिक रूप से केवल परिवार का देखभाल परिवार का सहयोग ही करते थे छोटे छोटे चीजों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते थे लेकिन आज वो आत्मनिर्भर बन गए दूसरों का भी और सहारा देने वाले बन गए ये केवल उनके इनकम नहीं है परिवार के इनकम नहीं है ये देश का आर्थिक समृद्धि देश का महिलाओं का विकास भी ये समाहित है.
1: Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Today in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through Beti Bachao, Beti Padhao, a flagship campaign of the Government of India.
3: Beti Bachao, Beti Padhao, a flagship campaign was launched by Prime Minister Narendra Modi on January 22, 2015 from Panipat in Haryana. The campaign has played a pivotal role in empowering the daughters and improving the sex ratio in Haryana. Neil Jaglan, the former Sarpanch of Bibipur village in Jind district and the initiator of the Selfie with Daughter campaign, stated that the Beti Bachao, Beti Padhao initiative has led to increased participation of daughters across all sectors in Haryana.
4: Beti Bachao, Beti Padhao, से पहले हरियाणा का लिंगानुपात कम था हरियाणा में लड़कियों की साक्षरता दर कम थी हरियाणा की लड़कियां विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत कम पढ़ती थी लेकिन अगर आज हम देखें तो हरियाणा की लड़कियां करीबन 75% साक्षरता है जो कि करीबन 64% 2014 से पहले होती थी उसके साथ ही अगर हम बात करें लड़कियों के कुपोषण को लेकर वो दर भी लगातार घट रही है इसके साथ ही हम खेलों में लड़कियों की भागीदारी देखें तो 6200 सभी गांवों में आज के दिन खेल नर्सरियों में लड़कियां पहुंच रही हैं.
3: इट इज नोटवर्दी मोटिवेटेड बाय द पीएम स्पिरिट ऑफ जन सेवा से देश सेवा सुनील जागलान सेल्फी विद डॉटर कैंपेन कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन फीलिंग द पीपल प्राउड आफ्टर पोस्टिंग सेल्फी विद देयर डॉटर्स. Prime Minister Narendra Modi frequently mentioned Sunil Jaglan's Selfie with Daughter campaign in his Mann Ki Baat program and helped transform it into a nationwide movement. Originating from a remote area, this initiative has now evolved into a global campaign. Ashwini Kumar Sharma, Akashwani News, Chandigarh.
1: This is Akashwani giving you the news.
5: Want more news? Follow us on X at AIR News Alerts and subscribe to News on Air Official on YouTube.
1: Welcome back to the Midday News. Defence Minister Rajnath Singh has said that India is exporting indigenous defence products to nearly 100 countries worldwide, He said that India's defense exports have surged from just 686 crore rupees in 2013-14 to more than 38,000 crore rupees in 2025-26. Speaking at the Defense Conclave 2026 of a private channel in New Delhi today, Mr. Singh said India has achieved more than 90% self-reliance in ammunition variants.
6: Hope for the peace, but prepare for war. War that may be necessary to protect our country's sovereignty, territorial integrity, and national security. Yani shant ki aasa rakhiye, lekin yuddh ke liye sadaiv tayar rahi.
1: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman met the UK Chancellor of the Exchequer John Healey on the sidelines of the annual meetings in Bangkok today. During the meeting, the Finance Minister reaffirmed India's commitment to working closely with UK towards shared priorities and a constructive, inclusive G20 process. Nirmala Sitharaman arrived in Bangkok today to attend the annual meetings of the International Monetary Fund and the World Bank. She will also participate in the G20 and G7 Finance Ministers and Central Bank Governors meetings. Prime Minister Narendra Modi will interact with the Indian contingent that participated in the Asian Games 2026 in New Delhi this evening. The Prime Minister will also address the gathering on the occasion. Indian wrestler Vishwajit Ramchandra More has created history by clinching a historic silver medal in the Greco-Roman finals at the Under-23 World Championships in Las Vegas today. Competing in the men's 55-kilogram category, More narrowly lost 12-13 to Georgia's Koba Karumidze in the final seconds of the bout. The Intermeteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall expected over Haryana, Chandigarh, Punjab and Delhi today. The Met Department also said heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till the 21st of this month. The higher reaches of Doda district in Jammu and Kashmir experienced the season's first snowfall. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh. Hindus converting to Islam and other religions cannot claim backward class reservations, says Supreme Court, upholds Madras High Court order. Home Minister Amit Shah says government is committed for betterment of tribals affected by Naxalism, distributes assistive devices to persons with disabilities. India's defence exports surge to 38,000 crore from 686 crore rupees in the last 13 years, says Defence Minister Rajnath Singh. Upper reaches of Himalayan region receive season's first snowfall. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Haryana, Chandigarh, Punjab and Delhi today. And Indian wrestler Vishwajit Ramchandra More creates history by clinching silver medal in Greco-Roman finals at Under-23 World Championships in Las Vegas. With that, we end the midday news.
7: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। श्री शाह ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। हिमालय क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने लास वेगास में आयोजित अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको-रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करने के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
8: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ। हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
7: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालतसी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिमसरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसके विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
8: यहाँ के युवाओं ने आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुझे खुशी है कि लद्दाख में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
7: श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में ग्रीन हाउस खेती को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अब 11,000 ग्रीन हाउस हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए जनजातीय समुदाय को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के जीवन को फिर से संवारने, उन्हें सहायता देने और सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
9: नरेंद्र मोदी सरकार

0: समाप्त हो चुकी, मगर नक्सलवाद समाप्त होने से ये 5 दशकों की पीड़ा को हम समाप्त नहीं कर सकते। वो पीड़ा ने जहाँ जहाँ गांव दिया है वहाँ हमें मरहम लगाना पड़ेगा, उनको खड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा और वो सम्मान के साथ जीवन जी पाए इसकी व्यवस्था कर।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय भाषाओं से संबंधित कार्य समूह की बैठक आयोजित की। ये बैठक हाइब्रिड कार्यशाला के रूप में हुई जिसकी अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने की। श्रीमती चोपड़ा ने बैठक को संबोधित करते हुए जनजातीय समुदायों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में भाषा के महत्व पर जोर दिया। बैठक में देशभर के प्रमुख भाषाविदों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और जनजातीय समुदायों के भाषा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि हिंदू धर्म से इस्लाम या अन्य गैर हिंदू धर्मों में धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि पूर्व के सामाजिक पिछड़ेपन को धर्मांतरण के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक रिपोर्ट।
3: न्यायालय ने कहा कि गैर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्मांतरण स्वतः किसी अधिसूचित पिछड़े वर्ग समुदाय की सदस्यता प्रदान नहीं करता। न्यायालय ने कहा कि संविधान की अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत वैधानिक लाभ केवल किसी व्यक्ति की धर्मांतरण पूर्व स्थिति के आधार पर नहीं दिए जा सकते। न्यायालय ने दोहराया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। ये फैसला मार्च 2024 के तमिलनाडु सरकार के एक आदेश से संबंधित याचिका के जवाब में आया है जिसमें दूसरा धर्म अपना चुके लोगों को आरक्षण लाभ देने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी धार्मिक निकाय वैधानिक अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं और हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र तथ्य आधारित विशिष्ट सत्यापन की आवश्यकता होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
4: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड हैव सीन एंड ऑफ वार। यह विचार एक ओर हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी बल्कि इन्होंने कूटनीतिक निंदा के बजाय सक्रिय कार्रवाई करने के राष्ट्र के दृष्टिकोण में निर्णायक बदलाव को दर्शाया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवाद के हर स्रोत तक पहुंचकर उसका खात्मा करना है। श्री सिंह ने सीमा पार आतंकवाद पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान से होने वाली किसी भी आतंकवादी गतिविधि का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक के कारवार स्थित कदम नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी पोत समर्थक को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला पहला स्वदेशी बहुद्देशीय पोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
5: भारत सरकार के एक प्रमुख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में पानीपत से की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेल्फी विद डॉटर के जनक जींद जिले के बीबीपुर गाँव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वजह से बेटियों की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है।
6: अगर हम देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से पहले हरियाणा का लिंगानुपात कम था, हरियाणा में लड़कियों की साक्षरता दर कम थी, हरियाणा की लड़कियां विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत कम पढ़ती थी। लेकिन अगर आज हम देखें तो हरियाणा की लड़कियां करीबन 75% साक्षरता है, जो कि करीबन 64% 2014 से पहले होती थी। उसके साथ ही अगर हम बात करें लड़कियों के स्वास्थ्य को लेकर, कुपोषण को लेकर, वो दर भी लगातार घट रही है। इसके साथ ही हम खेलों में लड़कियों की भागीदारी देखें तो 6200 सभी गांवों में आज के दिन खेल नर्सरियों में लड़कियां पहुंच रही हैं, तो खेलों में लड़कियों की भागीदारी करीबन 60% ज्यादा बढ़ चुकी है। लिंगानुपात जो 879 हरियाणा का होता था वो 920 925 930 तक आज के समय चला जाता है। और खास बात ये रही कि कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगी है।
5: उल्लेखनीय है कि सुनील जागलान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा से देश सेवा की भावना के साथ शुरू किए गए सेल्फी विद डॉटर अभियान का बेटियों के प्रति नजरिया बदलने में बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को राष्ट्रव्यापी अभियान में बदल दिया। दूरदराज क्षेत्र से निकला यह अभियान अब एक वैश्विक अभियान बन चुका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 से पहले विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
7: महिलाएं पीछे रह जाते थे आर्थिक रूप से, केवल परिवार का देखभाल, परिवार का सहयोग ही करते थे, छोटे छोटे चीजों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते थे। लेकिन आज वो आत्मनिर्भर बन गए, केवल आत्मनिर्भर नहीं दूसरों का भी और सहारा देने वाले बन गए। ये केवल उनके इनकम नहीं है, ये देश का आर्थिक समृद्धि, देश का महिलाओं का विकास भी ये समाहित है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी

है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदार

0: तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 21 तारीख तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में सोमवार तक तेज वर्षा का अनुमान है। इस बीच जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका के लास वेगास में आज पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में विश्वजीत को मामूली अंतर 12-13 से जॉर्जिया के कोबा कारुमित्ज़े से हार का सामना करना पड़ा। श्री रामचंद्र मोर अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन के फाइनल में पहुंचने और पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सदाबहार नगमे में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: ये तभी आपने सुना फंटुश फिल्म से आशा भोसले की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल थे, तर्ज बनाई थी एसडी बर्मन ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया, जंगली है इस फिल्म का नाम, शैलेंद्र के बोल हैं और तर्ज शंकर जयकिशन की।

0: की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जब आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
3: दिल तो पागल है,
2: दुश्मन
4: चिट्ठी न कोई संदेह,
2: गदर एक प्रेम कथा,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
2: पिंजर दास्तान, बेमिसाल संगीत की।

0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर का संगीत, फिल्म का नाम कश्मीर की कली।

बड़ा आदमी इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत की रचना की है प्रेम धवन ने, संगीत पर किया है चित्रगुप्त ने और आवाजें हैं उषा मंगेशकर और कमल बारोट की।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि अक्टूबर तक लिए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने अधिकारियों को 22 अक्टूबर तक दो बार नोटिस मिलने के बाद भी दस्तावेज जमा न करने वाले मतदाताओं की बूथवार सूची बनाने का निर्देश दिया है। यह सूची नवंबर के पहले सप्ताह में बीएलओ और राजनीतिक दलों के बीएलए 2 की बैठक में साझा की जाएगी। पाकुड़ में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अक्षय मित्र जागरूकता रथ को उपायुक्त मेघा भारद्वाज और सिविल सर्जन डॉक्टर प्रवण कुमार संथालिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ शहरी और ग्रामीण इलाकों में टीबी रोग के लक्षणों और इसके मुफ्त इलाज के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। उपायुक्त ने बताया कि जिले के अधिकारी टीबी मरीजों को गोद लेकर अगले 6 महीने तक उन्हें न्यूट्रिशन किट उपलब्ध कराएंगे ताकि वे जल्द स्वस्थ हो सकें।
1: और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से एक जागरूकता रथ जो है निकाला गया है सभी प्रखंड में टीबी के प्रति जांच अवेयरनेस और दवा जो डॉट्स का पूरा कोर्स है उसको करने के लिए जानकारी जो है दी जाएगी। तो सभी पदाधिकारियों के द्वारा 6 माह के लिए पेशेंट्स को गोद दिया जा रहा है, यानी कि उनके जो खाने पीने की व्यवस्था है वो किट के माध्यम से उनको उपलब्ध कराई जाएगी।
0: हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में अपनी मांगों को लेकर 108 आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा 16 सितंबर को दिए गए आश्वासन के बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। वे एम्बुलेंस सेवा के सरकारी संचालन, न्यूनतम वेतन और ईपीएफ सुविधा की मांग कर रहे हैं। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने आज अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर महाप्रबंधक विष्णु दत्ता दास ने ध्वज फहराया। ऑनलाइन जुड़े सीईओ एके सहगल और अध्यक्ष के एस सुंदरम ने बानर डी कोयला खनन परियोजना की प्रगति व सामाजिक विकास के लिए टीम की सराहना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम कुमार रजत और सिटी एसपी पारस राणा की

0: वाई में शहर भर में फ्लैग मार्च निकाला गया। सिटी एसपी ने संवेदनशील इलाकों का जायजा लेते हुए असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
1: सबसे पहले तो जिला प्रशासन की तरफ से पूरे रांची वासियों को राम दुर्गा पूजा और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करना चाहता हूँ। फ्लैग मार्च के जरिए हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग ये बताएं कि हर तरीके से इस पर्व को सुरक्षित अर्थपूर्ण सक्षम।
0: देवघर एयरपोर्ट की समीक्षा बैठक में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने सुरक्षा व्यवस्था और यात्री सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने कहा कि उड़ानों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए एयरपोर्ट के आसपास अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रबंधन को मॉकड्रिल आयोजित करने के निर्देश भी दिए। चतरा की विशेष एनडीपीएस अदालत ने अफीम तस्करी के आरोपी भेखलाल साव को 15 साल के जुर्माना भी लगाया है। साल 2022 में राजपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी को 374 ग्राम अफीम पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था। रांची के निर्मला कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय युवा महोत्सव ऊर्जोत्सव 2026 का कल समापन हो गया। इस महोत्सव में छात्राओं ने कला, संगीत, नृत्य और साहित्य के विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आदिवासी नृत्य जैसी स्पर्धाएं आकर्षण का केंद्र रहीं। रांची विश्वविद्यालय ने पीजी सेमेस्टर 4 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। बिना विलंब शुल्क के फॉर्म आज से 24 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 25 और 26 अक्टूबर को 400 रुपये विलंब शुल्क के साथ मौका मिलेगा। रेगुलर कोर्स का शुल्क 900 रुपये तय किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे।

0: की सहेली सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। मेरे सामने बैठी हैं हंसती मुस्कुराती सी आरती।
1: मंदाकिनी जी, आपको और साथ में सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसी हो आरती?
1: बहुत बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि ये समय नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, पूजा पाठ और साथ में इतना बढ़िया जो गरबा सब तरफ हो रहा है, चकाचौंध रोशनी ही रोशनी है, झालरें लगा रखी है, लोगों ने सजावट इतनी अच्छी कर रखी है हर सोसाइटी में, हर घर में, कि मतलब बहुत अच्छा लगता है। और जो हवन की जो सुगंध आती है ना, सच में एकदम बहुत अच्छा लगता है।
0: सबसे बड़ी बात तुमने कहा कि जो हम जब पूजा या अर्चना करते हैं, जैसे कहते हैं, हम एक विश्वास किसी शक्ति को मान के जब चलते हैं और पूजा अर्चना में लीन होते हैं, तो एक अदम्य शक्ति हमें प्राप्त होती है और हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं, ऊर्जावान हो गए हैं। नहीं तो जिंदगी कई बार बड़ी सुस्त सी चलने लगती है, लेकिन इन दिनों हर इंसान जो है अपने आप में एक अलग ही एनर्जी महसूस कर रहा है,
1: क्योंकि त्योहार की जो एक खासियत है ना, वो यही है कि आपको एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी ऊर्जा से भर देता है वो। आप बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं, नौ व्रत रखते हैं कुछ लोग तो, लेकिन ऐसा लगता है ना कि उनके अंदर एनर्जी की, ऊर्जा की कोई कमी नहीं, बल्कि और आ गई ऊर्जा
0: बढ़ गई है। बिल्कुल सही बात कहा आपने कि 9 दिनों तक जब हम किसी तरह का उपवास करते हैं और माता को याद करते हैं, और हमें लगता है कि जो रोजमर्रा का भोजन है उसे थोड़ा सा हम त्याग देते हैं और फलाहार की ओर बढ़ जाते हैं, तो एक अलग किस्म की शांति का।
1: और हम तो यही कहेंगे आप फलाहार ही ले, बहुत ज्यादा तला भुना, क्योंकि रहता है ना कि जब व्रत है तो बहुत तली तली ऐसी चीजें बनती हैं, आलू भी बनाएंगे तो तल तल के एकदम से बनाएंगे, तो वो बहुत ज्यादा तला चीजें मत खाइए, इससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है।
0: कई बार क्या होता है, फलाहारी आटे की हम पूड़ियां तल लेते हैं, मछलियां बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, बाजार में भी, कई शहरों में बाजार में भी फलाहारी मिर्ची बड़े, फलाहारी समोसे मिलते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई व्रत है तो इन दिनों इन्हें ही खाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने व्रत किया, उपवास किया है, तो थोड़ा सा इन चीजों से दूरी बनाए रखिए और फलाहार करिए,
1: इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे पूरे और एक ऊर्जा भी आपको बहुत अच्छी से महसूस होती रहेगी। तो क्योंकि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है, तभी हम इस त्योहार का मजा भी ले सकते हैं और डांडिया खेल सकते हैं, खूब मजे से गरबा खेल सकते हैं।
0: सही बात है, जो है सब तरफ जो है डांडिया की धूम मची हुई है
1: जी हाँ,
0: और बड़ा अच्छा लग रहा है इन दिनों। और अब अच्छा लगेगा हमें ये जानकर कि आज हमारे श्रोताओं के साथ हम क्या बातें करने वाले हैं।
1: तो आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है, पहले तो हम लेके आए हैं माता पिता से दूरी बनाते हुए बच्चे, जो आजकल ट्रेंड सा चल गया ना कि बच्चे भी जहां थोड़े से टीनेज में भी यहां तक आ जाते हैं, 17-18-19 साल के हुए नहीं, कि उनको लगता है अब हम अकेले रहे, अब हम क्यों किसी बंदिश में रहे, उनको लगता है माता पिता के साथ रहना यानी बंदिश में रहना, तो अलग रहने की उनको इच्छा होने लगती है कि हम अलग रहें, अपने तरीके से रहें और बाहर हम अपना जॉब करें या कुछ भी करें। तो ये जो आज देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा देखने को मिल रहा है। और साथ ही हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री की, उसके अंदर हम लेकर आएंगे आज बीरू बाला रभा जी के बारे में बात करेंगे, हम उनकी चर्चा करेंगे
0: जो समाज सेविका है,
1: बिल्कुल समाज सेवा में जिनका नाम है। और साथ ही हम बात करेंगे मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना में हम बात करेंगे अपने ग्रामीण अंचल, लोक उक्तियां तो हम बहुत सारी जानते हैं, लेकिन जो ग्रामीण ठेठ ग्रामीण वाली जो होती है वो लोक उक्तियां कौन सी है।
0: अरे तो हमारे ग्रामीण श्रोता जो हमें सुन रही है वो तो बता देंगे,
1: बिल्कुल बताइए
0: किस तरह की लोक उक्तियां बोली जाती है,
1: कौन से गांव में, या बहुत सारे लोगों को मालूम होता है ना कि कौन की गांव की जो लोक उक्ति है ये बहुत प्रसिद्ध है, तो उनको ऐसी कौन सी पता है जो बहुत प्रसिद्ध है, उसके बारे में आप बताइए। और साथ ही हम बात करेंगे उपयोगी टिप्स की, क्योंकि देखिए त्योहार चल रहे हैं और जब गरबा होता है ना, तो जब सब महिलाएं ऐसी सुंदर सुंदर लड़कियां सब इतनी सुंदर सुंदर सच के आती हैं, तैयार होकर आती हैं ना, लगता है कि सब अप्सराएं जमीन पर उतर आई हैं, तो वो उसके लिए हम लेकर आए घरेलू नुस्खे जो रखेंगे सुंदर त्वचा आपकी।
0: अरे आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता है ना, तो कैसे रखें इस त्वचा को खूबसूरत, इस पर कुछ उपयोगी टिप्स हमारे श्रोता हमें देंगे।
1: बिल्कुल बताइए आप हमें अपने, क्योंकि उनको पता है भाई गरबा में ऐसे ही थोड़ी ना अपनी शांति
0: चमकती त्वचा के साथ जब हम जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही होता है ना। तो चलिए अब एक गाना हम सुन,
1: बिल्कुल एक भक्ति भावना से भरा हुआ गीत सुनते हैं,
0: आइए।

0: बहुत अच्छा गीत था आरती, और माता का ध्यान तो हम इन दिनों कर ही रहे हैं। वैसे तो हर दिन माँ हमारे ख्यालों और ख्वाबों में रहती ही है ना, लेकिन इन 9 दिनों में खास अर्चना हम करते हैं। और देखिए, तुमने कहा कि आजकल जो बच्चे हैं वो माता पिता से दूरी बना रहे हैं, या उनके मन में एक समय बाद आता है कि वे अलग रहना चाहते हैं, दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, तो ये चीजें थोड़ा सा माता पिता के मन को तोड़ देती हैं।
1: बिल्कुल, उनको लगता है ना कि अब हम अपने जो अपने हमारे बच्चे हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे हर वक्त, क्योंकि बचपन से उनको पाला, उनको उनके साथ में,
0: और उनका अधिकार होता है उन पर, उनके लिए एक फर्ज बनता है, बच्चों के मन में होना चाहिए कि माता पिता के साथ हमें रहना है। और भले ही उनका विवाह हो गया है, पत्नी हो गई है, पत्नी आ गई है, बच्चे हो गए हैं, लेकिन अगर वो माता पिता से अलग रहने का सोचते हैं तो माता पिता की जो सारी ख्वाहिशें हैं, जो बच्चों के लिए बुने हुए ख्वाब होते हैं, वो टूट जाते हैं, है ना। तो कहते हैं कि दुनिया में सबसे निस्वार्थ रिश्ता जो है माता पिता का होता है, और ये ऐसा रिश्ता है जिसमें बच्चे की एक मुस्कान के लिए माँ अपनी थकान भूल जाती है, और जो पिता है वो अपनी परेशानियों को अनदेखा करके परिवार की खुशियों के लिए भी निकल पड़ते हैं सुबह से शाम तक। और जिस बच्चे की पहली आवाज पर माँ दौड़ी आती है, आज उसी बच्चे की आवाज सुनने के लिए माँ को कई बार फोन करना पड़ता है।
1: बिल्कुल, और जिस पिता की उंगली पकड़कर बच्चा चलना सीखता है, उम्र के एक पड़ाव पर उसी पिता को बच्चे के साथ 2 कदम चलने के लिए उससे समय मांगना पड़ता है। और कभी कभी तो घर में सब साथ में रहते हैं लेकिन बातचीत केवल इतनी होती है, खाना खा लिया, हाँ पैसे चाहिए, भेज दीजिए, बस बातचीत खत्म। रिश्ता ऑनलाइन और भावना है ऑफलाइन।
0: बिल्कुल सही कहा आरती, आज की दुनिया पहले से बहुत बदल गई है। पढ़ाई की बात करें, नौकरी, प्रतियोगिता, महानगरों की जो भागदौड़ है, और फॉरेन में बसने की जो ये चाहत है, इन सब ने परिवारों की जो जीवन शैली है उसको बिल्कुल ही बदल दिया है। पहले कई पीढ़ियां एक ही घर में रहती थी, दादा दादी की कहानियां होती थी, माँ की रसोई के किस्से, पिता की सीख और भाई बहनों की नोक झोंक और रोजमर्रा की जिंदगी का ये हमारा हिस्सा होता था। लड़ाई झगड़ा, मैं बच्चे भाई बहन, इतनी चिल्लपों,
1: लड़ते झगड़ते हम लोग बड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल,
1: और वो चीज एक अलग ही होती थी। और आज जो छोटे परिवार हैं, बच्चे पढ़ाई और नौकरी के लिए दूसरे शहरों में जा रहे हैं, ऐसे में माता पिता से जो दूरी हो जाती है ना, वो हमेशा भावनात्मक दूरी का संकेत नहीं होना चाहिए। लेकिन आप, हो सकता है कि आपको पढ़ाई करने के लिए या किसी चीज के लिए जाना पड़े, लेकिन वो दूरी सिर्फ ऐसी होनी चाहिए कि हाँ आप गए लेकिन मन से दूर नहीं हुए। लेकिन आजकल क्या है ना कि बच्चे मन से भी दूर होते जा रहे हैं। कई बच्चे दूर रहकर भी अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखते हैं। आज मोबाइल पर हमारे सैकड़ों संपर्क हैं, सोशल मीडिया पर हजारों मित्र हैं, लेकिन कभी कभी अपने माता पिता के पास बैठकर 10 मिनट बात करने का भी हमारे पास समय नहीं होता।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, और हम दुनिया भर की तस्वीरों पर अपनी राय देते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, खुश होते हैं, लेकिन माँ की बात पर सिर्फ इतना कहते हैं, मम्मी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ, बाद में बात करता हूँ। से बेटे उनके लिए ज्यादा हम कहेंगे कि वो बात कब आता है उनका, इसका तो जवाब न तो माँ के पास होता है, न उस बच्चे के पास होता है। और एक बड़ा घरों में एक आरती और बड़ा दिलचस्प दृश्य भी देखने को मिलता है कि माँ कहती है, बेटा जरा मेरे पास बैठ जा, तुझसे कुछ बात करनी है, तो बेटा कहता है, मम्मी 5 मिनट बस।
1: और मजे की बात यह है कि माँ के 5 मिनट में जो माँ मांगती है, 5 मिनट में चाय भी बन जाती है, 2 बार गैस बंद हो जाती है, पड़ोस की खबर आ जाती है, लेकिन बेटे के 5 मिनट में मोबाइल की बैटरी 10% और कम हो जाती है। और जब माँ पूछती है किससे इतनी बातें कर रहे हो, तो जवाब मिलता है, बस दोस्तों से। माँ मनी मन सोचती है, काश मैं भी अपने बेटी की दोस्ती होती।
0: हाँ, दोस्त बनते हैं माता पिता, लेकिन बच्चे जो है कहाँ बात करना पसंद करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है।
1: बिल्कुल,
0: और ये बातें सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकती। अक्सर माता पिता कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम हमारी बात भी नहीं मानते। तो इन बातों के पीछे जो है उनकी चिंता है, उनके अनुभव है, सुरक्षा की भावना है, ये छुपी होती है। मगर जब बातचीत बार बार शिकायत या तानों में बदल जाती है, तो बच्चे भी अपनी बात कहना बंद कर देते हैं। ये दूसरा सिक्के का दूसरा रूप है।
1: बिल्कुल,
0: कि कई बार ऐसा भी होता है।
1: जी बिल्कुल, और याद रखिए, प्यार में अधिकार हो सकता है लेकिन संवाद में सम्मान भी बहुत जरूरी है। बच्चों को स्वतंत्रता चाहिए और माता पिता को भरोसा। दोनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हर नई पीढ़ी का अपना अपना समय होता है, अपनी चुनौतियां होती हैं और अपने सपने होते हैं। उसी तरह माता पिता के पास जीवन का अनुभव होता है, जिसे अनसुना करना भी अच्छा नहीं है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है। और समस्या पीढ़ियों के अलग होने में नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने की जो कोशिशें हम बंद कर देते हैं ना,
1: हाँ।
0: वो बहुत दिक्कत है। रिश्ते में दूरी झगड़े से नहीं है, जो दूरी है हमेशा झगड़े से नहीं आती है। कई बार क्या होता है, सब कुछ सामान्य दिखाई देता है लेकिन बातचीत धीरे धीरे कम हो जाती है। बच्चे अपनी खुशियों में परेशानियों में माता पिता से साझा करना उस बात को बंद कर देते हैं और घर में एक सन्नाटा सा पसर जाता है।
1: बिल्कुल, और माता पिता अपनी भावनाएं बताने के बजाय चुप रहना शुरू कर देते हैं और फोन पर बातचीत केवल जरूरी कामों और पैसों तक सीमित हो जाती है। परिवार के जो सदस्य हैं एक साथ होते हुए भी एक दूसरे के लिए समय नहीं निकालते, छोटी छोटी बातों पर संवाद करने के बजाय क्या करते हैं, वो नाराजगी होने लगती है, गलत फहमियां बढ़ने लगती हैं। और हालांकि इन संकेतों का अर्थ ये नहीं कि हर परिवार में रिश्ता बिगड़ ही रहा है।
0: हाँ नहीं, ऐसा नहीं, रिश्ता नहीं बिगड़ रहा, लेकिन खुशियां भी नहीं आ रही, मन खुश नहीं रहता है, मन भारी रहता है। तो कभी पढ़ाई का तनाव हो सकता है, कभी नौकरी का दबाव हो सकता है, व्यक्तिगत परेशानियां हो सकती है, पुराने मतभेद भी जो है हमारे संवादों को बातचीत को प्रभावित करते हैं आरती। इसलिए तुरंत आरोप लगाने के बजाय प्यार से हमें पूछना चाहिए कि क्या बात हो गई, सब ठीक तो है ना, क्या तुम किसी परेशानी से निकल रहे हो, गुजर रहे हो, या मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। कभी कभी किसी को समाधान नहीं, सिर्फ एक सुनने वाला चाहिए होता है, जो हमें नहीं मिलता।
1: बिल्कुल, और इन छोटे सवालों में अपनापन छिपा होता है। दूरी को केवल किलोमीटर से मत मापिए कि वो उतनी दूर है, उतने किलोमीटर दूर है। और बच्चे दूसरे शहरों या देशों में रहते हैं, वो नियमित फोन कॉल, वीडियो कॉल, त्योहारों पर मुलाकात और स्वास्थ्य या रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखकर अपने माता पिता से जुड़े रह सकते हैं। जरूरी है माता पिता भी अपनी व्यस्तता को बनाए रखें, कि ऐसा नहीं कि बस आप खाली बैठे रहें तो फिर आपको और चिंता होने लगेगी और लगेगा कि कोई आए साथ में। तो अपने मित्रों से मिलना, रुचियों को अपनी, जो आपके शौक हैं उसको समय देना, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना और अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल,
1: अपने आप को बिजी रखना।
0: लेकिन वही है आरती कि बिजी रखने के चक्कर में भी कई बार हम रिश्तों से दूर हो जाते हैं। हमें लगता है हम बिजी हैं, हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है। तो इतना भी बिजी नहीं होना चाहिए कि हम अपना जीने का अंदाज खो दें, या जो सुख शांति है, ठहराव भी जिंदगी में बहुत जरूरी है ना, ठहराव होना बहुत जरूरी। तो बच्चों में क्या हो गया, ठहराव नहीं रहा तो जुड़ाव भी नहीं रहा ना, अपनी पूरी खुशी केवल उनकी अपने बात पर निर्भर रहती है कि वो किससे खुश रहते हैं। तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी रिश्ते में डर नहीं होना चाहिए, अपमान या लगातार नियंत्रण करना, किसी को हम नियंत्रण में कर लेते हैं,
1: हाँ।
0: कंट्रोल में करना जिसे कहते हैं, या हम दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये साथ रहने से रिश्तों की सफलता नहीं मानी जा सकती। बल्कि एक दूसरे की रिश्तों में क्या होता है कि उनकी सीमाओं का ध्यान रखना, उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना, ये सभी ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर ये सोचते हैं कि माता पिता तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे,
0: हाँ।
1: उनकी शिकायतें, उनकी सलाह, उनकी आवाज, सब कुछ हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहेगा। लेकिन सच ये है कि समय किसी के लिए भी ठहरता नहीं है, और बचपन में जो हाथ हमें गिरने से बचाते थे, उन्हें उम्र के साथ हमारे धैर्य और सहारे की जरूरत भी हो सकती है। और जो माता पिता कभी हर सवाल का जवाब देते थे

0: वो भी आज के बदलते समय में अकेलापन, असुरक्षा या अपनी उपयोगिता को लेकर चिंता महसूस कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी तरह बच्चों को भी समझे जाने का, सम्मान पाने का और अपने फैसले लेने की जगह होनी चाहिए। इसलिए रिश्तों को बचाने का केवल क्या तरीका है कि त्याग या उनकी बातों को मानना नहीं है, बल्कि संवाद करना, संवेदना जताना, प्यार मोहब्बत है ना जिसे कहते हैं ना, सहानुभूति, ये सभी होना चाहिए। और बच्चों, माता पिता को भी बच्चों की दुनिया को समझना होगा और बच्चों को भी समझना होगा कि माता पिता का प्यार केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि उनके जीवन का एक जरूरी हिस्सा भी है। तो दोनों तरफा ये समझना पड़ेगा। महंगे उपहार देने से कभी रिश्ते नहीं बनते हैं, आपसी प्यार सम्मान देने से वो रिश्ते कायम रहते हैं। लेकिन प्यार से पूछा गया एक सवाल कि आप कैसे हैं, सब अच्छा है, मैं आपकी क्या काम आ सकती हूँ या मुझे क्या करना चाहिए, ये हमारे दिलों में जो दूरियां हो गई हैं उसे हम कम कर सकते हैं। तो हम तो हर बच्चे से, हर माता पिता से यही कहेंगे कि एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, अपने रिश्तों में करीबी लाएं, है ना, दूरी नहीं लाएं।
0: बिल्कुल। और अभी हम अपने श्रोताओं को और करीब लाते हैं एक प्यारा सा गीत सुनवा।

0: हाँ, तो बहुत ही पुराना गीत और बहुत ही प्यारा गीत था ये।
1: बुझ मेरा क्या नाम रे।
0: हाँ, नदी किनारे नाम रे, क्या मतलब पुराने गीतों की बात करें तो सुनते ही रह जाते हैं।
1: पुतला मतलब अपना पूरा पता भी तुमने बता दिया कि नदी किनारे गांव इनका। जी
0: बिल्कुल। और हमारे भी जो श्रोता है, हमने उनसे भी कहा था कि उनके गांव में कौन कौन सी लोकोक्ति प्रचलित है,
1: हाँ,
0: है ना, उसका जिक्र उन्हें हमारे साथ करना भी है।
1: जी हाँ।
0: तो अभी हमारे एक श्रोता लिखते हैं आरती कि माता पिता और बच्चे, व्यस्त संतान जो है, उनके बीच बढ़ती दूरी का मुख्य कारण भावनात्मक अलगाव, विचारों का अंतर और संवाद की कमी है। जीवन शैली और उम्मीदें पुराने समय से काफी अलग हैं। बच्चे अब केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं बल्कि मानसिक शांति और बराबरी का सम्मान चाहते हैं। कई बार माता पिता बच्चों की भावनाओं को समझे बिना उन्हें नियंत्रित करने या बार बार सलाह देने लगते हैं, जिससे बच्चे हस्तक्षेप या अविश्वास मानते हैं। बच्चे चाहते हैं कि उनके उनकी बात माने बिना किसी बिना रोक टोक के सुनी जाए, लेकिन कई बार माता पिता अपनी पुरानी बातों या अपने संघर्षों का हवाला देकर बच्चों की बात को अनसुनी कर देते हैं। तो माता पिता अक्सर बच्चों को यह याद दिलाते हैं कि उन्होंने उनके लिए कितना त्याग किया है, जिससे नई पीढ़ी ऐसा नहीं मानकर माता पिता का प्राथमिक कर्तव्य मानती है। डिजिटल और अत्यधिक व्यस्त जिंदगी, गैजेट्स और भागदौड़ वाली जिंदगी ने भी परिवार के सदस्यों के बीच के वास्तविक संवाद को बहुत कम कर दिया है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि माता पिता से दूरी होने के बाद बच्चे जो अक्सर हैं वो डिप्रेशन, अकेलेपन और एंजाइटी यानी घबराहट के शिकार हो जाते हैं। जब बच्चों को घर में भावनात्मक सहारा नहीं मिलता तो वो बाहर सहारा ढूंढते हैं और कई बार गलत दोस्तों या व्यसनों की गिरफ्त में आ जाते हैं। ये दूरी भविष्य में बुढ़ापे में माता पिता की उपेक्षा का कारण बनती है, जिससे पारिवारिक रिश्तों का ताना बाना बिखर जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल बच्चों और माता पिता के बीच बढ़ती जो दूरी है वो एक आम समस्या बनती जा रही है। इसके मुख्य कारण, इसे कम करने के उपाय बहुत सारे इन्होंने लिखे हैं कि पीढ़ी का अंतर है, संवाद की कमी है, डिजिटल लत है, व्यस्तताएं हैं, स्क्रीन टाइम शेयर करते हैं, मोबाइल की लत के कारण बच्चे भावनात्मक रूप से माँ बाप से कटते जा रहे हैं। और इस दूरी को कम करने के उपाय भी कहते हैं कि आप जो है बच्चों की बात को बिना बीच में काटे तुरंत बचाव की मुद्रा में आए, सुने, उनकी भावनाओं को समझें, उनकी सीमाओं का सम्मान करें, दोषारोपण छोड़ें और समय और बदलाव को अपनाएं। ये जरूरी है, तभी जाकर ये दूरियां थोड़ी सी पाटी जा सकती हैं।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि जिन परिवारों में माता पिता के बीच लगातार झगड़े या तनाव का माहौल रहता है, वहां बच्चे मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे माहौल से बचने के लिए वो बाहरी दोस्तों या डिजिटल दुनिया की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अक्सर माता पिता बच्चों पर डॉक्टर, इंजीनियर या टॉपर बनने का भारी दबाव डालते हैं। उनकी अपनी क्षमता या पसंद, जैसे किसी को आर्ट पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, तो उसको नजरअंदाज करने और हर समय दूसरों से तुलना करने के कारण बच्चे मानसिक तनाव में आ जाते हैं और अपने माता पिता से कतराने लगते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जरूरत से ज्यादा बच्चों को कंट्रोल में करने की जो माता पिता की आदत है ना, वो भी जो है बच्चों को एक समय बाद दूर कर देती है। बच्चे अभी तो क्या होते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, बाद में जब उन्हें मौका मिलता है तो वो दूरी बना लेते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता से बच्चों का दूरी बनाना आज के समय में एक गंभीर और संवेदनशील विषय है। अक्सर टीनेज में बच्चे पेरेंट्स से दूरी बना लेते हैं, उनसे कुछ कहना या अपने दिल की बात शेयर करना तो दूर, फिर कई बार ठीक से बात भी नहीं करते। ऐसे में पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्या है। कई बार तो पेरेंट्स इतने चिंतित हो जाते हैं कि प्रोफेशनल हेल्प तक लेने लगते हैं। बेशक हर पीढ़ी की सोच अलग होती है, लेकिन बच्चों को समझना जरूरी है कि उनके सबसे बड़े शुभचिंतक माता पिता ही हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना बहुत जरूरी है बच्चों के अंदर एक विश्वास को लेकर आना। और एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में माता पिता और बच्चे दोनों ही अपनी व्यस्तताओं यानी कि कोई काम में, कोई पढ़ाई में, कोई कोचिंग में उलझे हुए हैं और घर पर भी लोग बातचीत करने के बजाय स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और गेमिंग में व्यस्त रहते हैं, जिससे आपसी संवाद जो है वो खत्म होता जा रहा है। नई पीढ़ी के विचार, उनका पहनावा, करियर के चुनाव और जीवन जीने का तरीका पुरानी पीढ़ी से काफी अलग है। जब माता पिता पुरानी सोच या पुराने नियमों को थोपने की कोशिश करते हैं तो बच्चे खुद को असहज महसूस करने लगते हैं और उनसे दूर होने लगते हैं।
0: वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम माता पिता को दूर करके बाहर कहीं भगवान को ढूंढने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, परंतु देखा जाए तो माता पिता ही भगवान रूप में हमारे घर में विराजमान है।
1: बिल्कुल।
0: उनकी सेवा अगर हम करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा और आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, कभी करके तो देखिए, ये लिखते हैं, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि

0: आधुनिक जीवन शैली में माता पिता और बच्चे दोनों ही अपनी व्यस्तताओं के कारण उलझे हुए हैं। घर पर भी लोग बातचीत करने के बजाय, जैसा कि अभी आपने कहा, इन्हीं विषयों पर बातचीत भी करते रहते हैं।
1: बिल्कुल, श्रोता जो लिखते हैं कि माता पिता से दूरी बनाते बच्चे बड़ा ही बड़ा मुद्दा है। बच्चे के पास बैठकर बातें भी नहीं करते।

0: जो इतना मतलब वो फोन बता रहे अपना उनका गिरा तो उसका डिस्प्ले चला गया था। तो माता पिता अगर किसी के हैं साथ में तो बच्चों को उनके साथ बातें करनी चाहिए और मतलब उनको अकेले उस पर नहीं छोड़ना
1: छोड़ना
0: चाहिए।
1: चाहिए, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता से दूरी बनाते बच्चे दिल से दूर नहीं होते, दूरी होती है वे काम के कारण, क्योंकि उन्हें अपना काम धंधा संभालना होता है, जिंदगी चलानी होती है। और एक बात है कि माता पिता बच्चों पर जरूरत से ज्यादा पाबंदी लगा देते हैं या उनके जीवन के हर फैसले को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो इसका बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उन्हें घुटन महसूस हो सकती है। इसलिए उन्हें उच्च विचारों से भरे पंख लगाकर उड़ने के लिए एक विशाल गगन में आजादी देने की जरूरत है।
0: बिल्कुल। और माता पिता, ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता से बच्चों का दूरी बनाना आज के समय में एक गंभीर संवेदनशील विषय है और अक्सर टीनेज में बच्चे पेरेंट्स से दूरी बनाने लगते हैं। उनसे कुछ कहना या अपने दिल की बात शेयर करना तो दूर, वो कई बार ठीक से बात तक नहीं करते। ऐसे में पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार तो पेरेंट्स इतने चिंतित हो जाते हैं कि प्रोफेशनल हेल्प तक लेने लगते हैं। बेशक हर पीढ़ी की अपनी सोच होती है, अलग होती है, लेकिन बच्चों को समझना आवश्यक है कि उनके सबसे बड़े शुभ चिंतक जो है उनके माता पिता ही हैं। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि माँ बाप ने अपनी हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, अब जब उनके कदम धीमे पड़ने लगे तो उन्हें अकेला ना छोड़ें, उनका हाथ थामकर कुछ दूर चल लेना भी प्यार जताने का बहुत सुंदर तरीका है।
1: बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद और शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस विषय को उठाया और ये साबित कर दिया कि माता पिता और बच्चों को आपसी तालमेल और समन्वय रखना कितना जरूरी है ना।
0: जी बिल्कुल।
1: तो आरती, अब वक्त है एक अंतराल का।
0: बिल्कुल, अंतराल लेते हैं।

0: हाँ तो आरती,
1: हाँ हम बात करते हैं पद्मश्री की जो सेगमेंट हमारा है उसमें हम बात कर रहे हैं बीरू बाला राभा जी की। देखिए मंदाकिनी जी, समाज जो जो समाज सेवा होता है ना उससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती है,
0: बिल्कुल
1: है ना। और मानवाधिकार जो यानी उसके लिए कोई काम करता है ना तो समझिए बहुत ही बड़ा वो अच्छा काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही
1: तो
0: कहा आपने।
1: ऐसी ही थी बीरू बाला जी।
0: बीरू बाला जी की आज हम बात कर रहे हैं। तो बीरू बाला रावा जो है असम की एक महान समाज सेविका और मानवाधिकार कार्यकर्ता थी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं के खिलाफ प्रचलित बहुत सी कुप्रथाओं, अंधविश्वास और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सामाजिक अत्याचारों को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया था आरती।
1: बिल्कुल। और जिस समाज में किसी महिला को दुर्भाग्य या बीमारी का कारण बताकर प्रताड़ित किया जाता था वहां बीरूबाला ने साहसपूर्वक लोगों को जागरूक किया और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने का प्रयास किया।
0: हाँ बिल्कुल, उनका जन्म 1954 में असम के गोलपाड़ा जिले के ठाकुरविला गांव में हुआ था और उनका संबंध जो है राभा जनजाति समुदाय से था। तो उनका बचपन जो है आर्थिक कठिनाइयों के बीच में बीता। जब वो लगभग 6 वर्ष की थी तभी उनके पिता का निधन भी हो गया था।
1: बिल्कुल। और परिवार की जिम्मेदारियों और आर्थिक तंगी के कारण उन्हें छोटी उम्र में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। औपचारिक शिक्षा अधिक आगे तक नहीं बढ़ सकी थी, लेकिन जीवन के अनुभवों ने उन्हें समाज की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी।
0: हाँ बचपन में ही उन्होंने गरीबी, सामाजिक रूढ़ियों और महिलाओं की सीमित स्वतंत्रता को बहुत करीब से देखा था। तो बीरूबाला का जो विवाह है 15 वर्ष की उम्र में हो गया था। उस वक्त 15 वर्ष की उम्र बहुत हुआ करती थी।
1: बिल्कुल।
0: और उनके पति किसान थे और उनके 3 बच्चे थे। विवाह के बाद उनका जीवन सामान्य ग्रामीण परिवार के घरेलू जिम्मेदारियों के बीच में बीता था।
1: और लेकिन एक घटना ने उनके विचारों को एकदम बदल दिया था और उन्हें समाज सुधार की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी। और वर्ष 1985 के आसपास उनके जो बड़े बेटे थे धर्मेश्वर, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो इस दौरान एक स्थानीय झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति ने बीमारी को अलौकिक शक्तियों से जोड़कर भय पैदा कर दिया और उनकी और उस बच्चे के जीवित रहने को लेकर भी निराधार भविष्यवाणी की थी उसने।
0: ओहो, फिर
1: और फिर उसके बाद बेटे की, लेकिन उन्होंने इस बात को माना नहीं और उसका इलाज करवाती रही वो। तो इस भविष्यवाणी के जब के बेटे के ठीक होने के बाद जब वो ठीक हो गया अपने दवाइयों को लेकर के, तो बीरूबाला ने महसूस किया कि अंधविश्वास और झूठे दावों के कारण लोगों को कितना नुकसान पहुंच सकता है कि लोग इलाज कराने के बजाय झाड़ फूको इन सब चीजों में लगे रहते हैं। तो यही घटना उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुई और उन्होंने तय किया कि वो लोगों को अंधविश्वास से मुक्त करने और ऐसी मान्यताओं के कारण प्रताड़ित होने वाले लोगों की रक्षा करने के लिए वो काम करेंगी।
0: बहुत बड़ी बात। अक्सर लोग जो है इसी में लगे रहते हैं कि किसी तरह की जो है अंधविश्वास और कुरीतियों की बातों में आ जाते हैं और जान भी गंवा देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो असम में कुछ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कुप्रथा के नाम पर महिलाओं को बीमारी, मृत्यु या फसल खराब होने या उनके अन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए दोषी ठहराया जाता था। तो ऐसी महिलाओं को सामाजिक बहिष्कार और धमकियां और हिंसा का सामना भी करना पड़ता था आरती।
1: बिल्कुल। बहुत वो उस समय का जो समाज था बहुत रूढ़ियों में जकड़ा हुआ
0: था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और बीरूबाला ने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने लोगों को समझाया कि किसी बीमारी या दुर्भाग्य के लिए किसी महिला को जादू टोने का दोषी ठहराना गलत है और बीमारियों के लिए वैज्ञानिक सोच और उचित चिकित्सा की जरूरत है, न कि अंधविश्वास की।
1: बिल्कुल। और उनका संघर्ष आसान नहीं था क्योंकि लोगों की सोच बदलना बहुत मुश्किल होता है। कोई चीज को आप चीजों को बदल सकते हैं लेकिन लोगों की सोच नहीं बदल सकते,
0: बदली जा सकती।
1: तो बहुत ही मुश्किल था उनका संघर्ष। उन्हें सामाजिक विरोध, अपमान और धमकियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें भी कुप्रथा का नाम देने की कोशिश करी, उस कुप्रथा का नाम देने की कोशिश करी उनको, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य से समझौता नहीं किया। वो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करती रही और संकट में फंसी महिलाओं की मदद करती रही।
0: बीरूबाला ने अपने गाँव में महिलाओं को संगठित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और मिशन बीरूबाला नाम के संगठन की एक शुरुआत भी कर दी। और इस संगठन में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, वकील और पीड़ित महिलाओं की भागीदारी रही। और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? महिलाओं के प्रति कुप्रथा और अंधविश्वास के विरुद्ध जन जागरण जगाना।
1: बिल्कुल। और झूठे आरोपों से पीड़ित महिलाओं की सहायता करना, जरूरतमंद महिलाओं को सुरक्षा और न्याय दिलाने का प्रयास करना, गांवों में वैज्ञानिक सोच और मानवाधिकार के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का साहस देना, उनके प्रयासों से अनेक महिलाओं को सहायता मिली और समाज के अन्य लोग भी इस अभियान से जुड़े जिनकी वो सोच बदलने में कामयाब हो गई थी, तो उन्होंने भी इससे जुड़ना स्वीकार किया।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और बीरूबाला राभा ने संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक, जो डायन कुप्रथा के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को मजबूत करने में योगदान दिया। कैसी कैसी कुप्रथाएं थी।
1: बिल्कुल।
0: और स्त्रियों को कितने अत्याचार सहने पड़ते थे आरती
1: जी।
0: और 2015 में असम सरकार ने असम विद हंटिंग जो है एक्ट जो है पारित कर दिया था।
1: बिल्कुल, जो ये विच हंटिंग का प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन जो एक्ट जो था ना, बहुत मील का एक पत्थर माना जाता है। बिल्कुल, उसके वजह से बहुत सारी चीजों में महिलाओं को बचाव मिला कि जो उस समय उनको जान से कभी कभी हिंसा का भी सामना करना पड़ता था। और इस कानून का उद्देश्य किसी को भी डायन बताकर या कुछ कुप्रथा का नाम देकर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने, बदनाम करने और उसके विरुद्ध हिंसा करने जैसी गतिविधियों को रोकना था इस कानून का काम। और ये कानून वर्ष 2018 में लागू हो गया और बाला और उनके सहयोगियों के लंबे अभियान ने इस सामाजिक समस्या को सार्वजनिक चर्चा और कानूनी सुधार के केंद्र में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
0: बिल्कुल सही कहा, जब कोई कानून आ जाता है तो उससे बहुत ज्यादा जो है फायदे जो हमें दिखते हैं वो दिखने लगे उस दौरान। और उनकी प्रमुख सम्मान और उपलब्धियों की अगर हम बात करते हैं तो 2015 में उनके सामाजिक योगदान के लिए गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया, साथ ही उनके कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी मिली।
1: और वर्ष 2018 में उन्हें विमेन वर्ल्ड समिट फाउंडेशन का सम्मान मिला। 2005 में महिलाओं के अधिकार और अंधविश्वास के विरुद्ध उनके संघर्ष को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क नामक महिला संगठन ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित भी किया था, नामांकित किया। और इन सब के साथ भारत सरकार ने उन्हें सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया।
0: क्या बात।
1: और फिर लेकिन 13 मई 2024 को गुवाहाटी असम में लंबे समय तक वो बीमार पड़ गई थी और बीमार रहने के बाद उनका निधन हो गया। और उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए केवल उच्च शिक्षा या आर्थिक शक्ति आवश्यक नहीं होती है, संवेदना, साहस और दृढ़ संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है।
0: सबसे बड़ी बात कि उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं की थी और आर्थिक रूप से भी वो मजबूत नहीं थी। ग्रामीण किसान के परिवार में वो उनका विवाह हुआ था, लेकिन उनमें संवेदनाएं थी, साहस था और दृढ़ संकल्प की जो शक्ति थी उसने उन्हें पद्मश्री तक पहुंचाया और वो महान करने वाली महिलाओं में शामिल हो गई।
1: बिल्कुल।
0: और अब एक गीत सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं।

0: हाँ मंदाकिनी जी, अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ लोकोक्तियों की जो ग्रामीण अंचल में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं।
1: अच्छा, हमारे श्रोताओं ने लिखी,
0: बहुत सारी भेजी हैं, बहुत सारी उन्होंने एकदम भर भर के भेजी हैं।
1: अच्छा।
0: तो हम लेते हैं श्रोताएं उनका, लेते हैं कमेंट। तो लिखते हैं कि ग्रामीण अंचल में रची बसी लोकोक्तियां बड़ी ही बेमिसाल हैं, और यहाँ हमारे यहाँ तो डांडिया नृत्य का पंडाल लगा हुआ है। जैसे कि एक है, उन्होंने लिखा, एक है बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज, मतलब इस तरीके की कहावत जो रहती है लोकोक्तियां वो है। और एक मारवाड़ी कहावत है, एक हमारे जो श्रोता है लिखते हैं कि जीना रा मर जा बादशाह रुलाता फिरे बजीर, अर्थात जब घर का मुखिया का ध्यान हो जाए तो परिवार बिखर जाता है, मतलब इसका ये कहना है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि मालवी भाषा में कहावतों को केवाड़ा या ओखाड़ा कहते हैं। मालवा क्षेत्र के लोक साहित्य और आम बोलचाल में इन केवाड़ों का बहुत बड़ा और समृद्ध भंडार है। मालवी केवाड़ा के कुछ उन्होंने उदाहरण दिए, जैसे कि आंदा के आगे रोणो ने अपना दीदा खोना, यानी किसी संवेदनहीन व्यक्ति के सामने अपना दुखड़ा रोकर समय बर्बाद करना, है ना। एक लिखते हैं, आंदो उठे ने घर का ने कूटे, अपनी परेशानी में अपने करीबियों या स्वजनों को जो तंग करता है, और आंदो कुकड़ो घट्टी दोरो, किसी एक ही जिद या काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना, और एक लकड़ी के दो बटका, यानी आपस में फूट पड़ना या परिवार का विभाजन हो जाना।
0: अच्छा, तो काफी मतलब अनसुनी, ये सुनी
1: हाँ,
0: भी नहीं है,
1: ये हमने नहीं हाँ। सुनी है। वाकई आपने बहुत अच्छी लोकोक्तियों को हमारे सामने रखा है, क्योंकि हम ये तो कुछ चीजें तो हमारे यहाँ बोली जाती है, लेकिन आपने जो अभी कहावतें लिखी है वो शायद हमने नहीं सुनी है, है ना
0: जी। तो हमारे एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी लोकोक्तियां बोली जाती है, लेकिन ये लोकोक्ति बहुत प्रचलित है। चैत मीठी चीमरी, बैसाख मीठो मट्ठा, जेठ मीठी डोबरी, आषाढ़ मीठो लटा। इसका अर्थ है कि चैत में ककड़ी यानी चिमरी, बैसाख में मठा यानी कि छाछ, और छाछ जेठ में महुए की डोबरी, और आषाढ़ में महुए का लाटा सबसे मीठा और उत्तम लगता है। बिल्कुल, ये अनसुनी, ये भी थी है ना।
1: वही श्रोता लिखते हैं कि ग्रामीण लोकोक्तियां केवल कहने सुनने की बातें नहीं है, बल्कि पीढ़ियों के अनुभवों का सार है। इनके माध्यम से बुजुर्ग बिना लंबा उपदेश दिए बच्चों को जीवन की बड़ी सीख दे देते हैं, और इनमें हास्य भी है, व्यंग्य भी है, सीख भी है, और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की सीख भी होती है। बहुत सी मशहूर लोकोक्ति इन्होंने लिखा है, गई भैंस पानी में, यानी किसी काम का बिगड़ जाना या मेहनत पर पानी फिर जाना, और ऊंट के मुंह में जीरा अपन कहते हैं ना, और घर का भेदी लंका ढाए, और दूर के ढोल सुहावणे, अदजल गगरी छलकत जाए। ये सारी कविताएं जो लोकोक्तियां हैं वो इन्होंने बताई हैं।
0: बिल्कुल, एक हमारे और श्रोता है जो लिखते हैं कि अगर गुजरात की बात करें तो उतावले आंबा न पाके, आंबा मतलब आम के पेड़ पर समय आने पर ही आम पकते हैं, ना बोलवा मना गुड़, मतलब चुप रहने में ही नौ गुड़ समाये हैं, और जाजा हाथ रलिया मणा, मतलब मिलजुल कर काम करने से काम जो है वो आसान और झड़पी होते नहीं, तुरंत होता है, और टीपे टीपे सरोवर भराए, मतलब बूंद बूंद से हौज भरा जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ग्रामीण अंचल में बसी लोकोक्तियां अलग अलग प्रदेश की जीवन शैली से जुड़ी होती हैं। अगर गुजरात की बात करें तो उतावले आंबा न पाके, जैसा अभी आपने पढ़ के बताया था, तो ये बड़ी अच्छी इन्होंने लिखी है लोकोक्ति। और देखिए हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं,
0: और साथ ही हमें एक श्रोता है जो लिखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोकोक्तियां होती हैं ये उनके यहाँ तो मतलब जो होती हैं, लेकिन जहाँ शहरी लोग हैं वो भी उनका बहुत बहुत उपयोग करते हैं, वो तो करते ही गाँव, और वो इतनी अच्छी और चीजों को सिखाने वाली होती है कि उसका उपयोग

0: करने के बाद हम बहुत कुछ सीखते भी हैं और बहुत सी चीजों को हम कम शब्दों में कहना सीख जाते हैं, और शब्दकोश भी होती है ये, जिससे शब्दों का भंडार हमें मिलता है। तुमने बताया कि कैसे कैसे उसका उपयोग होता है।
1: बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आगे नाथ जानवरों के मुंह में लगाए जाने वाली जो
0: हाँ
1: रस्सी है, न पीछे पगा से गाय बैल को बांधा जाने वाली रस्सी, ये आज भी गांव के घरों में उपयोग होता है। यहाँ
0: हाँ
1: कहने का मतलब ये है कि घर परिवार की जिम्मेदारियों से स्वतंत्र हैं या परिवार में इनका कोई नहीं है, यानी आगे नाथ और न पीछे पगा,
0: हाँ
1: इनके परिवार में कोई है, कोई नहीं है, ये अकेले हैं, इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: इसका अर्थ ये होता है, बिल्कुल नई लोकोक्ति है ये हमारे लिए।
0: और एक एक हमारे साथी साथी हैं जो लिखते हैं कि गांव की चौपालों और रोजमर्रा की बातचीत में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है इन लोकोक्तियों का, और खेती किसानी और मौसम से जुड़ी हुई ये कहावतें हैं, ये लोकोक्ति हैं कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान, कृषि को सबसे उत्तम कार्य, व्यापार को मध्यम और नौकरी को अधम या सबसे पीछे माना गया है, और इस लोकोक्ति के अनुसार। और अब पछताए होश का जब चिड़िया चुग गई खेत, घाघ ग्रामीण जीवन में मौसम और कृषि को लेकर काफी कवि घाघ की कहावतें बहुत रची बसी हैं। जब जब बरसेगा उत्तरा नाज न पावे कुत्रा, यदि उत्तर में उत्तर नक्षत्र में बारिश हो तो अनाज इतना होता है कि मतलब कुत्ते मेले की जानवर भी नहीं खा पाते हैं, और भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुरा, ये तो सभी जानते हैं।
1: तो बहुत अच्छी कहावतें हमारे लोकोक्तियां जो हैं, हमारे श्रोताओं ने हमें उन नई लोकोक्तियों से परिचित करवाया है जिनका प्रयोग हम कम से कम शहरों में नहीं करते
0: नहीं
1: हैं,
0: करते
1: है
0: हैं
1: ना।
0: जी हाँ,
1: तो अब एक गीत सुन लिया
0: बिल्कुल
1: जाए।
0: सुनते हैं।

0: भाई कोई माने या ना माने, आरती तुम्हारी त्वचा तो बहुत ही चमकदार लगती है मुझे।
1: तो हम बहुत सारे, हमारे जो साथी हैं बहुत सारे हमारे लिए नुस्खे लेकर आए हैं घरेलू, तो हम ले लेते हैं उनको। हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि कच्चे दूध में शहद मिलाकर लगाना, इससे भी त्वचा में निखार आता है। और मसूर की दाल को दूध में भिगाकर और इसको पीसकर पेस्ट कर चेहरे पर मास्क की तरह लगाएं तो उससे बहुत फायदा मिलता है। और बहुत सही लिखा है इन्होंने, ऐसा मैंने आजमाया भी, बहुत अच्छा नुस्खा है उनका।
0: अच्छा,
1: तो गरबा में बिल्कुल आप ही आप दिखाई देंगे, मजाक लीजिए।
0: तो मैं भी आज इस नुस्खे को
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: गरबा में जाकर नृत्य करती हूँ, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एलोवेरा जेल जो है, ताजे एलोवेरा के पत्ते से जेल निकालकर सीधे चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें, त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है और नई कोशिकाओं के विकास को भी बढ़ा देता है। और बेसन और हल्दी का पैक भी लगा सकते हैं, बेसन चुटकी भर, हल्दी, थोड़ा सा गुलाब जल या दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगाकर सामान्य पानी से धो लें, और ये नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है। लेकिन हल्दी को लगाने के बाद क्या है, हमें थोड़ा धूप में कम जाना चाहिए।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमारे जो साथियों लिखते हैं कि एक चम्मच फिल्टर कॉफी, एक चम्मच दही में 2-3 बूंदे नींबू के रस की डालकर अच्छी तरीके से मिला लीजिए। इस पेस्ट को चेहरे पर, गर्दन पर लगाइए, थोड़ा सा सूखने पर हाथों से मसाज करें और पानी से धो लें, त्वचा साफ सुथरी हो जाएगी। और साथ में एक और दूसरे श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मुल्तानी मिट्टी जो बहुत ही ज्यादा बहुत ही अच्छी होती है, मुल्तानी मिट्टी हल्दी, दूध, दही, बेसन, नींबू, पपीता, संतरे के छिलके त्वचा के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इनसे कई तरह के उपकरण बनाए जाते हैं, फेस पैक बनाए जाते हैं। तो इन्होंने बालों के लिए भी बता दिया कि रीठा, शिकाकाई और आंवला बहुत लाभदायक होता है। बहुत अच्छे अच्छे टिप्स लेकर भेजे,
0: बहुत अच्छी बात है। तो सभी को हम शुक्रिया कहते हैं और एक आखिरी गीत और सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल, सुनते हैं गीत।

0: आंटी
1: दिल देके देखो पर दिल तो दिया हुआ है हमने, मंदाकिनी जी को भी दे रखा है और साथ ही अपने सभी श्रोताओं को सभी सखियों को सखाओं को दे रखा है
0: बिल्कुल, और तुम्हारा दिल भी हमारे पास है
1: बिल्कुल
0: जी। तो अब इन्हीं बातों के साथ जो है कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति,
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग और संगीत की मिठास घुली होगी, है ना? तो आइए आज फिर सजाते हैं गीतों की ये महफिल आपकी बातों और आपकी पसंद के साथ। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: मैं जिला रामपुर तहसील स्वार ग्राम समोदिया यूपी उत्तर प्रदेश से इलियास पाशा बात कर रहा हूँ। मैम आपसे तो मेरी पहली बार बात हो रही है। मैम आपकी आवाज बहुत प्यारी लगती है, आपका प्रोग्राम पेश करने का अंदाज बहुत बेहतरीन है। मैम
0: आपका सुनने का अंदाज भी बेहतरीन होगा तभी आपको हमारा प्रोग्राम बेहतरीन लगता है ना?
1: जी मैम, काफी दिनों से ट्राई कर रहा, काफी दिनों में फोन लगा मेरा, कम से कम 2 साल में आपको लगा। आपकी आवाज सुनते हैं घर में, बच्चे सुनते हैं, मैडम सुनती हैं, अम्मी सुनती हैं, तो बहुत खुश होती हैं कि मैम की आवाज में मिठास बहुत है।
0: आपके सुनने में भी मिठास होगी। और बताइए क्या करते हैं आप?
1: मैम यहाँ समोदिया चौराहे पर हमारी चावलों की दुकान है, हम हर वैरायटी का चावल बेचते हैं। मैम
0: तो बताइए आपकी दुकान में कौन कौन सी वैरायटी के चावल हैं?
1: मैम हमारे पास हर वैरायटी का चावल है, बासमती है, 1121 है, 1509 है, 26 है, सरबती है, बहुत सारी वैरायटी आती है। मैम एक दो नहीं है, कम से कम 15-20 वैरायटी का चावल बेचते हैं।
0: फिर तो आपकी दुकान बहुत फेमस होगी।
1: जी बिल्कुल मैम, इस महीने में तो ज्यादातर बहुत बिक्री होती है क्योंकि मुस्लिम धर्म के तरह से 11वीं शरीफ होती है हुजूर वो आजम के नाम की, तो ज्यादा बिक्री होती है। मैम
0: अच्छी बात है, वो हर जगह ये होता है कि हम अपने अपने त्योहार मनाते हैं और खास पकवान बनते हैं, तो लगता है कि भाई कहीं चावल है कहीं गेहूं है।
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा इलिया जी ये बताइए कि जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर बड़ी खुशियों का इंतजार करते हैं, है ना? लेकिन क्या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ऐसी छोटी सी बात होती है जो हर दिन आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है?
1: जी जी मैम, अगर जैसे हमारा थोड़ा बहुत मूड खराब होता है ना, आकाशवाणी विविध भारती सुनते हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। मैम
0: अरे वाह, तो आपने अपनी थकान मिटाने का तरीका विविध भारती में चुना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बहुत अच्छी बात है। चलिए आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
1: फिल्म का नाम है प्रेम रोग और गीत के बोल है मेरी किस्मत में तू नहीं शायद क्यों तेरा इंतजार करना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मन्ना की बहन को नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन है, अपना नाम बताइए हमें।
1: आपका भाई उदयलाल टेलर उदयपुर राजस्थान से।
0: क्या बात है, बहुत स्वागत है आपका।
1: विविध भारती से जुड़े रहते हैं तो मस्ती रहते हैं,
0: ये तो बिल्कुल सही बात।
1: विविध भारती है वहाँ कोई गम प्रवेश कर ही नहीं सकता है।
0: इतनी पसंद है आपको विविध भारती।
1: जी 55 साल से जुड़ा हूँ विविध भारती से।
0: अच्छा,
1: और मेरी उम्र है 74।
0: लेकिन आपकी आवाज़ से तो नहीं लग रहा है, आप तो बिल्कुल युवा लग रहे हैं आवाज़ से।
1: ये आप लोगों की मेहरबानी और आशीर्वाद है, इसलिए आवाज़ ऐसी है।
0: अच्छा, तो आपकी दिनचर्या बहुत टाइट रहती है, अनुशासन में रहते हैं, इसलिए भी फर्क होता होगा स्वास्थ्य में, आवाज़ में, सब में फर्क आता है।
1: जी जी।
0: सोचने का तरीका बहुत पॉजिटिव होगा, हर बात को पॉजिटिव लेते होंगे आप।
1: जी मैं कभी गुस्सा नहीं करता हूँ, थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता भी है तो विविध भारती चलती रहती है तो उसमें आप लोगों की आवाजें सुनता हूँ और मस्त हो जाता हूँ।
0: चलिए, सुबह कितने बजे उठते हैं आप बताइए।
1: सुबह हम 6 बजे उठते हैं,
0: सुबह की शुरुआत
1: स्कूल भेजते हैं और हमारी दिनचर्या शुरू होती है। दिन में थोड़ा बहुत काम करते हैं ट्रेनिंग का और दिन भर विविध भारती चलती रहती है, आप जैसी बहनों की आवाजें सुनते रहते हैं, मस्त रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो सुबह की शुरुआत चाय से होती है या विविध भारती से?
1: विविध भारती से होती है और चाय भी चलती रहती है।
0: ये हुई ना बात। तो बताइए कहाँ जाते हैं टेलरिंग करने, घर पे ही है या बाहर है दुकान?
1: पहले बाहर थी शॉप, अभी घर पे ही करता हूँ। अभी एज का फैक्टर है तो थोड़ा कम ही होता है काम।
0: तो एक बात बताइए, 74 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं आप, तो अभी तक काम कर रहे हैं, आपके बच्चे भी काम करवाते होंगे, आपका हाथ बटाते हैं कि नहीं?
1: जी मेरे 2 बच्चे थे, एक बच्चा एक्सपायर हो गया है।
0: हाँ, और आपका दूसरा बेटा?
1: दूसरा बेटा एक रेडीमेड का शोरूम है, उस पे सेल्समैन है।
0: अच्छा, यानी कि वो भी काम करते हैं अलग, लेकिन आप टेलरिंग का काम अभी भी करते हैं, है ना?
1: हाँ।
0: कोई उम्र कहीं आड़े नहीं आती अगर हमने अपने आप को बिल्कुल सकारात्मक बना रखा है तो?
1: जी मेरी जिंदगी में तकलीफें बहुत आई है लेकिन विविध भारती ने सहारा दिया और इसके सहारे हम जी रहे हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, और ये सहारा ता उम्र आपको मिलेगा, ये हमें विश्वास है।
1: जी।
0: कौन सा गाना सुनवाएं बताइए?
1: पुरानी फिल्म है जुगनू, उसका गीत है।

0: मोहम्मद रफी साहब और नूरजा की आवाज में, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, बहुत ही सुरीली आवाज है नूरजा जी की।
1: जी तो आप गा के बता सकते हैं इस गाने को?
0: यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी दीदी को राधे राधे।
0: राधे राधे, नमस्कार। अपना नाम बताइए।
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है केसरी जी आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे हैं दीदी आप?
0: अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए।
1: जी जी, हमको बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात हो रही है। पहले भी मेरी एक दो बार आपसे बात हुई है।
0: केसरी जी, अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: मैं दीदी आर्टिस्ट हूँ, पेंटर, और प्लस में खेती भी है, तो बढ़िया काम चल रहा है। दीपावली आने वाली है और नवरात्रे चालू हैं, तो बढ़िया आनंदमय स्थिति है। सब जगह माता रानी की प्रतिमाएं विराजमान है और बढ़िया सुंदर वातावरण है दीदी।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बताइए, आपने 9 दिन व्रत रखे हैं या पहले और आखिरी दिन उपवास रखेंगे, ऐसा कोई है आपके दिमाग में?
1: हाँ दीदी, ये हमारी कुल की माता पूछती है अष्टमी को, तो उस दिन उपवास रखेंगे दीदी। जैसे हम 9 दिन रखते थे, लेकिन इस बार किसी कारणवश नहीं रह पाए।
0: अच्छा, लेकिन अष्टमी के दिन आप रखेंगे?
1: हाँ जी।
0: अच्छा, उस दिन क्या खास बनाएंगे? कुछ खास फलाहार बनेगा घर में?
1: उस दिन दीदी पूरे घर की मतलब लिपाई पुताई होती है, ऊपर से नीचे तक की एक कमरे की, और उसमें माता जी विराजमान होती हैं, और फिर पूरा वित्त परिवार वित्त फैमिली के पूजन होती है, और बढ़िया अच्छा आनंद आता है दीदी। शाम के टाइम होती है, सब घर परिवार उपवास रखता है उस दिन। पूरे पकवान बनते हैं दीदी, लगभग अपने जितने बन सके अपन से,
0: तो
1: सब बनते हैं।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अष्टमी के दिन आप ये करते हैं। तो गरबा में हिस्सा लेते हैं, जाते हैं 9 दिनों में खास कहीं?
1: बैरसिया शहर है, इसमें गरबा होता है तो देखने जाते हैं दीदी, लेकिन हिस्सा नहीं लेते, भागीदारी नहीं लेते।
0: अच्छा, बताइए आपकी पसंद का गाना।
1: दीदी नवरात्रे चल रहे हैं, तो एक मर्द मूवी में एक गाना है, माँ शेरों वाली, वो माँ शेरों वाली।
0: चलिए सुनते हैं माँ शेरों वाली।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: आदरणीय दीदी को सादर सप्रेम प्यार नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लबानिया बोल रहा हूँ। मंदाकिनी दीदी जी।
0: राजू जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप बताइए।
1: बिल्कुल ठीक है दीदी जी, मैं आपके सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, जैसे त्रिवेणी रहा, सखी सहेली रहा, आज के फनकार रहा, और रात को मैंने सुना था आपके लिए, बहुत अच्छे गीत सुनवाए गए थे उसमें।
0: बिल्कुल।
1: और त्रिवेणी कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसमें अलग अलग तरह के विषयों पे बात की जाती है और श्रोताओं को एक नई ऊर्जा मिलती है उस कार्यक्रम के माध्यम से।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा बताइए, इन दिनों नवरात्रा पर्व चल रहा है, आपने व्रत रखा है, उपवास रखा है, माँ की पूजा कर रहे हैं या क्या है?
1: जी दीदी, मैंने व्रत उपवास तो नहीं रखा है, मेरे ऊपर माता रानी की कृपा है, मैं आपको फोन लगाता हूँ या गाना बजाना करता हूँ, सब उन्हीं ने सिखाया है दीदी मेरे को। शाम को मंदिर जाना होता है डेली, उसी तरह माँ को याद करते हैं, और माँ ही हमारी सब कुछ है, माँ ही हमारे ऊपर कृपा किए हुए है।
0: तो नवरात्रि में हम माँ के 9 रूपों की आराधना करते हैं और माँ से हमें शक्ति मिलती है और प्रेरणा मिलती है।
1: बिल्कुल।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: जाने तमन्ना फिल्म का गाना सुना दीजिए, गाने के बोल हैं तू चांद है पूनम का।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
1: विकास बोल रहे हैं दादनपुर प्रयागराज से, ट्रक ड्राइवर।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे मैम, आपका कार्यक्रम सुनते हैं तो और भी अच्छे हो जाते हैं।
0: तो ट्रक चलाते हुए विविध भारती सुनते हैं क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल विविध भारती हमारा हमेशा ऑन रहता है।
0: तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि भाई आपका ध्यान विविध भारती की ओर है और आपने अपनी स्टीयरिंग को ढंग से नहीं संभाला? रास्ते में बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, हाईवे में चलाते होंगे ट्रक तो?
1: बिल्कुल हाईवे में चलाते हैं, लेकिन अपना ध्यान हम लोग रख लेते हैं क्योंकि हमारा काम हमेशा का हो गया है और विविध भारती साथ होता है तो अच्छा लगता है।
0: विविध भारती दोस्त का काम करती है यहाँ पर, है ना?
1: बिल्कुल, कार्यक्रम हम लोग सुनते हैं। और अभी जो पूर्णिमा जी और ये सब कार्यक्रम आपके यहाँ से आया था जो, और उत्तम जंघेल जी जो आए थे आपके यहाँ, वो सभी हम लोग कार्यक्रम सुन रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, जो कि आप लोगों की प्रस्तुति बहुत अच्छी होती है।
0: क्या बात है।
1: और हम लोग आज के फनकार है, छाया गीत है और गीतमाला है, गीतों भरी कहानी है, ये हम सारे कार्यक्रम हफ्ते में जितने कार्यक्रम आपके यहाँ से रिले किए जाते हैं हम सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: बिल्कुल सुनते होंगे। ड्राइविंग कितने घंटे करते हैं आप ट्रक की?
1: वैसे तो मैम हम खासकर रात में ड्राइव करते हैं और इसको लगभग 12 घंटा तक हम लोग ड्राइव करते हैं और जहाँ की डिलीवरी आती है वहाँ हमें जाना पड़ जाता है।
0: अच्छा, तो रात में जब आप ड्राइविंग करते हैं तो दिन भर सो लेते हैं क्या?
1: हम लोग दिन में आराम कर लेते हैं और रात में अपना जो है सफर करते हैं, या तो अगर दिन में कहीं सी डिलीवरी तो हमारे साथ जो एक हमारे सहयोगी होते हैं वो करते हैं।
0: हाँ, लेकिन नींद का तो एक वक्त होता है, जैसे रात में ही नींद आती है, तो इसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं? रात को इतनी लंबी ड्राइविंग करते समय कभी झपकी लग जाए तो?
1: हाँ जी, ऐसा होता है, पहले ऐसा कई बार हुआ था, लेकिन अब हम लोग कई साल से हम लोग जो ड्राइव कर रहे हैं तो ये एक नियम सा पड़ गया है। अब
0: आँखों को भी आदत हो गई है जगने की, है ना?
1: बिल्कुल, दिन भी ऐसा है जो कि 9 दिन हमारे लिए साल में एक बार या दो बार आता है, ये इसलिए कि ये बहुत अच्छा लगता है और समय भी ये बहुत अच्छा होता है।
0: बिल्कुल, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन 9 दिनों में आप अपने मन से किसी बुरी आदत को या किसी नकारात्मक विचार को या क्रोध को दूर करने का प्रयास करते हैं कि नहीं?
1: बिल्कुल, इसीलिए तो मैम हम लोगों का काम और भी अच्छा चलता है।
0: बिल्कुल सही कहा। बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: जैसा कि अब हम सब जानते हैं आज नवरात्रि का दिन, इस पर मुझे एक गाना याद आ रहा है, करण अर्जुन है फिल्म का नाम, और इसके गाने के बोल हैं जान चाहे देनी पड़े।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं, नाम बताइए अपना।
1: गोपाल ऊजा, ग्राम ककवासा, जिला गुना से। आपसे तो दिमाग ली, बहुत ही दिनों में बात हो रही है, पहले हुई थी बहुत, 3-4 महीने में। अभी तो क्या है, नवरात्रि चल रहे हैं तो फसल भी कट चुकी है हमारी मक्का की, तो जो अभी इकट्ठी करेंगे मक्का निकालेंगे।
0: कब कटी
1: जी? अभी कटी हुआ है, 7-8 दिन होगा जी।
0: अच्छा, तो नवरात्रा का पर्व मना रहे हैं, तो कोई खास होगा इस पर्व में, इन 9 दिनों में क्या करने वाले हैं?
1: नवरात्रि कर रहे हैं जी, मान लीजिए, और जो काम में भी बिजी है हम, और हमारे जी मान ली विविध भारती चलता रहता है, देश की सुरीली धड़कन है। कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं, हेलो परमाई सखी सहेली, हेलो सहेली आते हैं 3 बजे, सभी कार्यक्रम जी मान ली चलता रहता है। हमें सेहतनामा आता है 4 बजे, कभी सुनते हैं हम तो जी मानिए।
0: अच्छी बात है, आप सुनते हैं, लेकिन हमें बताइए कि आपने कहा नवरात्रा का पर्व चल रहा है, इन 9 दिनों के भीतर आपके अंदर कोई बदलाव आया कि मैं अब ये अगली फसल डालने वाला हूँ?
1: फसल ये गेहूँ धनिया लगाएंगे अब।
0: अच्छा, कब लगाने वाले हैं?
1: ये लगाएंगे नवंबर में।
0: तो उसके बीज बीज ले आए हैं?
1: हाँ, बीज तो लाएंगे, अभी नहीं लाए, अभी तो थोड़ा लाया खाद।
0: तो बीज के ऑनलाइन लेते हैं, पोर्टल जो आप लोगों का किसानों का पोर्टल है वहाँ बातचीत करके लेते हैं या किसी दुकान से?
1: नहीं नहीं, वो पोर्टल से करते हैं ऑनलाइन।
0: तो अच्छी क्वालिटी का बीज आ जाता है?
1: अच्छी क्वालिटी का आ जाता है। और क्या?
0: कौन सा है गेहूँ की अच्छी क्वालिटी का बीज?
1: गेहूँ का है जी, सजाता भी है और चल रहे है, सभी बीज बहुत बढ़िया है। हम तो घर के भी है, घर के भी बो देते हैं।
0: अच्छा, और धनिया के?
1: नहीं, धनिया तो हम लेते हैं अभी तो।
0: अच्छा, अच्छा खरीदते हैं। चलिए, कौन सा गाना सुनेंगे आज आप?
1: वो आरजी पिक्चर का सुनना है, सोनू निगम की आवाज में, दुनिया से दूर जा रहा हूँ मैं तेरे पास आ रहा हूँ।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: टेक चंद अग्रवाल बोल रहा था, परासिया चंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: टेक चंद जी, कैसे हैं?
1: हम बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए क्या करते हैं?
1: सबसे पहले तो मैडम आपको नव दुर्गा पूजा महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हमारे सभी श्रोता मित्रों के साथ।
0: बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत बधाई। बताइए, नवरात्रा का पर्व कैसे मनाते हैं आप? व्रत उपवास रखते हैं, माँ की पूजा करते हैं, या मन में एक शक्ति महसूस करते हैं इन दिनों खास?
1: जी जी बिल्कुल मैडम, क्या है जो ये नवदुर्गा जब आती है तो एक कहना चाहिए 10 दिन जो है कुछ अलग सा अनुभव होता है।
0: इन 9 दिनों में अपने भीतर एक सकारात्मक बदलाव हम महसूस कर सकते हैं अगर चाहें तो।
1: जी जी, कहते हैं मैडम क्या है कि हमारा तो ये मतलब रोजाना का वो है, हम एक सीनियर सिटीजन है, सुबह उठ करके थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक के साथ साथ जब आते हैं तो कुछ अपने दूसरे काम निपटा करके सुबह स्नान वगैरह कर करके पूजा पाठ का जो हमारा रोज का नियम है वो हमारा रोटेशन में ही हैगा। खास तौर पर इन दिनों में जब आता है तो एक पता नहीं कहाँ से एक अद्भुत शक्ति आ जाती है, माता के प्रति हमें आकर्षित करती है।
0: बिल्कुल,
1: ये हमारे संस्कार भी है, साथ में एक संस्कृति भी है जो हमें विरासत में मिली हुई है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आने वाला जो जनरेशन है उसको भी वैसे ही बरकरार रखे।
0: आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसे हमें अपनाना है और आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी हमें ये सिखाना है कि इसे बनाए रखना है, है ना?
1: बनाए रखे।
0: जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपनी पसंद का गाना बताइए हमको।
1: मुझे सुनवा दीजिए, 1964 की एक फिल्म थी दादी माँ, महेंद्र कपूर और मन्ना डे की आवाज थी इसमें, उसको नहीं देखा हमने कभी।
0: अरे वाह, माँ के नाम है ये गाना। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार नमस्कार, बोलिए अपना नाम क्या है ये तो बता दीजिए पहले।
1: वाराणसी पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज टू से मैं श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता गोंड।
0: बहुत शानदार जगह से बोल रहे हैं आप।
1: अरे मैं शानदार
0: जी बिल्कुल।
1: अभी आप लोगों ने जो प्रोग्राम किया था, जो लाइव आप लोग फेस कर रही थी, और इला अरुण जी को आपने बुलाया था, तो आप तो पहली बार मैंने आपको देखा कि बहुत खूबसूरत हैं। हम तो मैं आप और चश्मा उश्मा लगाई है।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत दिन से तमन्ना थी आपसे बात करने की, वो पूरी हो गई।
0: आप ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पर नंदी गाय घूमती है, सब कुछ आपको हर पल देखने को मिलता है, तो आदिशक्ति माँ को याद कर रहे हैं इन दिनों नवरात्रा के पर्व पर कुछ रखा है?
1: जय अम्बे जगदम्बे माँ। माँ के जगह जगह पंडाल बन रहे। हमारे यहाँ बंगाल के बाद कलकत्ता के बनारस के अंदर ही सेकेंड नंबर पे पंडालों का पोजीशन रहता है। बहुत बड़े बड़े पंडाल बनते हैं हमारे यहाँ दुर्गा माता जी के।
0: तो फिर लोग आते होंगे बहुत ज्यादा, क्या माहौल रहता है?
1: जी जी, भीड़ तो इतनी रहती है कि जो परिवार वाले लोग हैं, जो बाल बच्चेदार हैं, वो अक्सर यहाँ शाम को रात को ना जाके 2 बजे रात के बाद जब अगली सुबह होने वाली होती है तो भोर में लोग जाते हैं पंडालों के दर्शन करने बच्चों को लेकर।
0: अच्छा, इतनी भीड़ होती है इसलिए।
1: हाँ
0: चलिए गाना बताइए। तो श्रोताओं, तकनीकी कारणों से ये बातचीत किसी कारण से यहीं कट गई है, लेकिन हम विविध भारती जो परिवार है उन्हें सुनवाना चाह रहा है गाना फिल्म कुंवारा बाप का, मैं हूँ घोड़ा ये है गाड़ी। किशोर कुमार और महमूद साहब की आवाजों में ये गीत है। चलिए, तो अनिल साहब के लिए हम ये गीत पेश कर रहे हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं रंगापड़ा सोनीतपुर असम से अमल बसुमतारी बात कर रहा हूँ।
0: असम से, असम की चाय हमें बहुत पसंद है, पता है आपको?
1: जी जी जी।
0: और क्या खासियत है असम में बताइए?
1: असम में तो हमारे कामाख्या मंदिर है, सिराकाना है, काजीरंगा पार्क है, बहुत सारे खास है असम में।
0: और वहाँ की जो मेखला चादर है वो मुझे बहुत पसंद है।
1: जी जी।
0: तो अभी बताइए, माँ दुर्गा का पर्व चल रहा है इन दिनों, 9 दिनों में हम नवरात्रि का व्रत।
1: इन दिनों में तो हमारे चाय का खेत है ना, यहाँ पर लगातार काम हो रहे थे और इसमें काम किया।
0: चाय का बागान है आपका?
1: जी, घर में चाय का बागान है।
0: कौन सी किस्म की चाय?
1: हमारे ये लोकल चाय है।
0: तो चाय की खेती कैसे होती है बताइए ना थोड़ा सा।
1: चाय की खेती तो बहुत हमारे प्रोसेस रहता है, उसका फूल तो जमीन में लगा के उसको छोटा छोटा पेड़ बनाता है, उसके बाद है लगाते हैं उसको
0: जमीन में। क्या क्या डालते हैं? चाय की बीज?
1: हाँ हाँ, इसके पाउडर करके जमीन को इस तरह से बना दे के उसको चाय का खेती बन सकते हैं। उनका फूल है ना चाय का, यहाँ में लगा देते हैं, उसे पैकिंग करके आराम से रखा जाता है।
0: चलिए गाना बताइए।
1: क्रांति फिल्म का गाना सुना दीजिए, दुर्गा माता।
0: तो आइए सुनते हैं फिल्म क्रांति का ये गाना आपकी पसंद पर, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ।

0: मुझे रिश्तों की लंबी कतार से मतलब नहीं है, मुझे रिश्तों की लंबी कतार से मतलब नहीं है, कोई दिल से मेरा हो तो एक शख्स ही काफी है।
1: अरे वाह, क्या बात है, मुकर्रर मुकर्रर।
0: मैं मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट, जिला बिजनौर, यूपी, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद वक्कार फरीदी बात कर रहा हूँ।
1: स्वागत है आपका, क्या हाल है आपके,
0: और
1: बताइए।
0: कम से कम मैम मेरी सालों के बाद हेलो फरमाइश में आज कॉल लगी है।
1: अच्छा।
0: सारे प्रोग्राम में बहुत अच्छे चल रहे हैं। विविध भारती का मैं बहुत ही पुराना श्रोता हूँ और बचपन से ही मैं विविध भारती सुनता हूँ।
1: कितने समय से?
0: कह लीजिए मैम, मैं कम से कम जब 13, 14 या 15 साल का था ना, उस समय से लेके आज मेरी एज 35 है, अभी तक मैं मतलब विविध भारती सुनता हूँ।
1: तो क्या अच्छा लगा आपको, इतने साल हो गए, आप 35 साल की हो गई हैं,
0: मैम जो
1: पैंतीस
0: बात विविध भारती में मतलब मुझे दिखती है वो बाकी जो स्टेशन है पे हम सुनते हैं, विविध भारती का एकदम सब कुछ एकदम अलग से है। एकदम उसका साउंड, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और उसका जो धुन, ये है विविध भारती। ये बहुत ही बचपन से मेरे कानों में ये शब्द गूंजते हुए आ रहे हैं और आज तक गूंज रहे हैं।
1: क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप विविध भारती को इतनी शिद्दत से सुनते हैं कि आपको उसकी हर बात बहुत पसंद आती है।
0: और
1: अच्छा,
0: मनचाहे गीत भी मैं सुनता हूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है। वो भी दोबारा से स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम, और ज्यादा हमारी खुशी दोगुनी हो गई है।
1: अगर आपको अपनी पसंद का कोई कार्यक्रम पेश करने का मौका मिले, कल्पना कीजिए विविध भारती में, तो आप क्या पेश
0: तो
1: करना चाहेंगे?
0: मैं अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो जो फरमाइशी कार्यक्रम है ना, मैं मनचाहे गीत उसे प्रस्तुत करना चाहूंगा।
1: क्यों? क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं से जुड़ने का
0: क्योंकि
1: मौका
0: बहुत सारे
1: मिलेगा।
0: श्रोताओं से जुड़ने का मौका मिलेगा और उनके ढेर सारे खत पढ़ने का मौका मिलेगा।
1: बहुत अच्छी बात है, चलिए अच्छा लगा आपसे
0: जी
1: बातचीत करके। गाना
0: बिल्कुल।
1: बता दीजिए, कौन सा सुनेंगे?
0: फिल्म का नाम है मैम बंदिश, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पे फिल्माया गया है। 1980 में मूवी आई थी और इसका गीत है, रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, आ देखो तेरी मांग में सिंदूर सजा के, सिंदूर सजा के।

0: तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लें। हमारे फोन नंबर है 02228670288। दूसरा नंबर है 02240024662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
3: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
4: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
2: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
5: मेरा सारा साथ होगा।
0: आप सुन रही हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छायागीत कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: पत्रकारों ने पलमा गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का भ्रमण किया। इस दौरान बेड़ो बाईपास पर उपलब्ध तकनीकी व्यवस्थाओं, नियंत्रण कक्ष के पीटीजेड कैमरों और सड़क सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों ने पौधारोपण भी किया। लोहरदगा के कृषि विज्ञान केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र प्रमुख डॉक्टर किरण सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में 100 से अधिक महिला किसानों ने भाग लिया। इस दौरान महिलाओं को पोषण से भरपूर पारंपरिक कृषि उत्पादों जैसे मड़वा और स्थानीय साग के उत्पादन व वैज्ञानिक खेती के अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। साहिबगंज के उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत चलाई जा रही ग्रामीण जलापूर्ति और बल्क वाटर सप्लाई योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उपायुक्त ने अधिकारियों को सभी लंबित कार्यों को समय सीमा के भीतर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के कड़े निर्देश दिए हैं। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में दुर्गा पूजा के मद्देनजर उत्पाद विभाग ने सार्वजनिक स्थलों पर शराब की अड्डेबाजी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया। इस दौरान एक शराब विक्रेता को गिरफ्तार किया गया। जिला प्रशासन ने शेर पंजाब चौक, RIT मोड़ समेत कई इलाकों में जांच कर सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार सामिन, मैं एक किताब हूँ। हाँ, एक किताब। तसल्ली से पढ़ा होता तो समझ पाती मुझको। सिर्फ मुखपृष्ठ देखा, भूमिका पढ़ी और कुछ पन्ने उलट पलट कर बिना पढ़े ही रख दी किताब तुमने एक कोने में। कांच की सेल्फ के भीतर बस सजा दिया मुझको। काश मुझे पढ़ते तो समझ पाते कि क्या हूं मैं और क्या है मेरे भीतर तुम्हारे लिए।

मैं एक नदी भी हूं, बहती रहती हूं, कल कल करती, छल छल बहती, अकेली सी, सिसकती, मचलती, गरजती, उलझती सी। मैं नदी हूं, उतरती हूं दिलों में किसी सुबह के उजास की तरह, कानों में गुनगुनाती हूं, दरवाजों से बहती आती हूं तुम्हारे भीतर, खुले दिलों में उतरती हूं। हां, मैं भीड़ में खोना नहीं चाहती खुद को, हां मैं भीड़ में खोना नहीं चाहती खुद को, मैं तुम में विलीन हो जाना चाहती हूं, डुबो देना चाहती हूं खुद को तुम्हारे भीतर नदी बनकर।

सुनो, हाँ मैं रात हूं सहमी हुई। तुम लिख सकते हो मुझ पर कोई कविता? एक रात में कवि कितनी कविताएं लिख लेता है। जब सभी सो जाते हैं, कवि चुपचाप छत पर नंगे पैर आता है रात को निहारने के लिए, है ना? काश तुम भी छत पर आते, मैं रात सुहानी बन जाती जब बन जाते तुम मेरे चांद। हाँ, मैं रात सुहानी बन जाती जब बन जाते तुम मेरे चांद।

सोचती हूँ मैं एक हवा हूँ। मेरे स्पर्श से रोमांचित हुए हैं पेड़, पहाड़ और कबूतर, चिड़िया भी। तुम्हें छूती हूँ तो तुम में भर जाती हूँ, तड़पती हुई तुम में समा जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे प्यार में सरस सरल बनकर बह रही हूँ, अनवरत अनवरत अपने ही भीतर, हाँ अपने ही भीतर।

मैं बारिश हूँ किसी प्रेम कविता सी। धीरे धीरे गिरती बूंदें, बादलों की ओट में छुपा चांद, पहाड़ियों पर उतरती धुंध, मुझसे भीग कर तुम्हारा वो मुस्कुराना, वक्त जैसे थम जाता है, ये भीगी वादियां और तुम्हारा साथ, उफ, सब मिलकर जैसे इश्क की एक नई कहानी बन रही होती है तब। हाँ, एक नई कहानी।

सुनो, मैं एक स्त्री भी हूं और तुम अपनी किताब के पन्नों में मशगूल एक प्रेमिल कवि। सोचती हूं तुम्हारे संग बर्फीली वादियों में खो जाऊं, तुम्हारा हाथ थामकर चलूं, यूं ही किसी चांदनी रात में दूर तक किसी घने जंगल में खो जाऊं तुम्हारे साथ। हां, अच्छा लगता है तुम्हारा ये साथ। वो सर उठाकर बंद आंखों से जाने क्या सोचते हुए बुदबुदाते हो तुम, बहुत अच्छे लगते हो तब। हाँ, बहुत अच्छे लगते हो तब। मैं तो

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्य।
1: बहुत बहुत स्वागत है। हर शाम की तरह आज की शाम भी हम हाजिर हैं लेकर आपका अपना कार्यक्रम। मैं हूं प्रीति और मेरे साथ हैं
2: सुषमा। नमस्कार साथियों, आपको, आप सभी श्रमिक साथियों का को सुषमा का भी प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, हाँ, आज नवरात्रि का पांचवा दिन है और आज की दिन हम माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं। ये पार्वती का ही ममतामयी रूप है और इनका नाम भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय की माता होने के कारण स्कंद माता पड़ा।
1: इनका वाहन सिंह है और ये कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। इनका स्वरूप मातृत्व और वात्सल्य के साथ एक योद्धा की शक्ति का अद्भुत
2: और वात्सल्य के साथ साथ एक योद्धा की शक्ति का समागम मतलब संगम दिखता है, दर्शाता है। इनकी आराधना से विशुद्ध चक्र जागृत होता है और भक्त को मोक्ष व सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज के दिन हम माता की वंदना करते हैं और सुनते हैं ये गाना कैसा रहेगा।

0: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं और श्रोताओं ये सुनते हैं युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवानी। युवानी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है, सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस युवानी कार्यक्रम के तहत आप जानेंगे चर्चा में विश्व खाद्य दिवस और साथ ही साथ सुनेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अंसारी पर ली गई जानकारी देंगे हम आपको। और इसी कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे अमन कुमार से ली गई वार्ता, विषय है खनिज लवणों से भरपूर स्थानीय साग। तो आइए सुनते हैं सर्वप्रथम खनिज लवणों से भरपूर स्थानीय साग।
1: सामाजिक दृष्टिकोण से प्लामों का नामकरण हुआ, प्लास से, ला से और महुआ से प्लामों की पहचान थी, इसी को आधार बनाकर प्लामों नामकरण हुआ। प्लामों जिस तरह से प्लास, ला और महुआ के नाम से प्रसिद्ध है, प्लामों और झारखंड के निवासी अपने भोजन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है ही, इसके साथ साथ कहा जाए

तो हमारा संस्कृति भी है, अगर हम चाहे तो हमें मुफ्त में भी मिल सकता है। और समय के साथ अन्य कृषि का भी एक महत्वपूर्ण भाग बन चुका है। विभिन्न प्रकार के सालों साल किसान खेती करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से हरी साग आती है। इसके अलावा बिना पैसा के यानी निशुल्क घर की बाड़ी, घास भूमि खेतों से, सड़क किनारे अथवा जंगल से प्राप्त हो जाती है। पालक, मेथी, चौलाई, सरसों ऐसे साग हैं जिन्हें हम अपनी बाड़ी में लगाते हैं अथवा बाजार से खरीद कर खाते हैं। साग या हरे पत्ते ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल किसी बीमारी से निपटने या स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने में मदद करते हैं, जो कि खनिज लवण से परिपूर्ण है। पलामू के गांव में रहने वाले गरीबों के लिए राशन दुकान से निशुल्क मिल रहे चावल और फ्री में जंगल से मिल रहे करमी और कोनार का साग तथा विभिन्न प्रकार के साग कोरोना जनित संकट काल में बड़ा काम आ रहा है। स्वास्थ्य का खजाना है पलामू का साग। हमारे खाद्य पदार्थों में पलामू का साग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इससे हमें विटामिन और खनिज लवण मिलते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। आज हम आपको पलामू के विभिन्न स्थानों पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की हरे सागों के स्वास्थ्य संबंधी फायदों से अवगत कराएंगे। हर शख्स चाहता है कि उसका दिमाग आखिरी वक्त तक चुस्त दुरुस्त और युवा बने रहे, याददाश्त हमेशा उम्दा रहे, पर हकीकत में सबके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया क्रमशः छिड़ होने लगती है। साउथ फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में एक शोध हुआ, इससे पता चला कि हरे पत्तेदार सब्जियां खाकर, खासकर मेथी, पालक, सरसों, चौलाई व सलजम को आहार में खास स्थान देने से व्यक्ति दिमाग वृद्धावस्था में भी चुस्त दुरुस्त व युवाओं की तरह सक्रिय बना रह सकता है। शोधकर्ताओं ने परीक्षण के तहत कुछ चूहों को इंजेक्शन के जरिए पालक का रस दिया और शेष चूहों को नहीं। अध्ययन से पता चला कि जिन चूहों को पालक का इंजेक्शन दिया गया, वे किसी प्रक्रियात्मक व्यवहार को तेजी से सीखने में सफल रहे। इसके विपरीत जिन चूहों को इंजेक्शन नहीं दिया गया, वे ऐसा नहीं कर सके। शोधकर्ताओं की राय में हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन सी व ई और खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही इनमें कई एंटीऑक्सीडेंट भी उपलब्ध रहते हैं, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं के क्षीण होने की प्रक्रिया को कम करते हैं। नतीजतन उम्र ढलने के बाद भी आपकी दिमागी सक्रियता व याददाश्त उम्दा बनी रहती है। स्त्रियों के लिए पालक का साग अत्यंत उपयोगी है। युवतियों यदि अपने चेहरों का नैसर्गिक सौंदर्य एवं रक्तिमा बढ़ाना चाहती हैं, तो उन्हें नियमित रूप से पालक के रस का सेवन करना चाहिए। प्रयोग से देखा गया है कि पालक के निरंतर सेवन से रंग में निखार आता है। इसे सब्जी कहे तो भाजी बनाकर खाने की अपेक्षा यदि कच्चा ही खाया जाए तो अधिक लाभप्रद व गुणकारी है। पालक से रक्त शुद्धि व शक्ति का संचार होता है। बचपन में आपने अपने बड़े और बुजुर्गों से सुना होगा कि हरी साग सब्जियां नहीं खाओगे तो जल्द ही बीमार पड़ जाओगे। वैसे तो खाने की हर चीज हमारे शरीर को फायदा देती है, लेकिन अगर बात की जाए हरी साग सब्जियों की, तो यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ ये शरीर के अन्य विकास में भी मदद करती है। इतना ही नहीं, इसमें पाए जाने वाले फाइबर और प्रोटीन शरीर और मानसिक विकास के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। लेकिन आज भी अधिकतर लोग ऐसे हैं जो हरी साग सब्जियों को ज़्यादा महत्व न देकर अन्य चीज़ों का ज़्यादा सेवन करने लगते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अब हम आपको पलामू के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हरी सब्जियों को संक्षेप में अवगत कराएंगे। जैसे सरसों का साग हुआ। सरसों के साग में कैलोरी, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, पोटेशियम, विटामिन ए, सी, डी और B12, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। यह प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सरसों साग में फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है। अब बात करते हैं मेथी का साग। सर्दी का मौसम आते ही सब्जी बाजार में मेथी खूब दिखने लगती है। मेथी में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी एवं अन्य प्रकार की चीज़ें पाई जाती है, जो शरीर के लिए बेहद जरूरी है। पेट ठीक रहे तो स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और खूबसूरती भी बनी रहती है। यह अन्य बीमारियों में इसका उपयोग लाभकारी है। अब अगली बात करूँ तो बथुआ का साग। बथुआ कई औषधीय गुणों से भरपूर है। इसमें बहुत सा विटामिन ए, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम पाया जाता है। इसके उपयोग से कई बीमारियों को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। इससे गुर्दे में पथरी होने का खतरा काफ़ी कम होता है।
अब मैं आपके सामने एक अंतिम चने का साग के बारे में बताना चाहता हूँ। चने का साग खाने में पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। चने साग में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, नमी, फाइबर और कैल्शियम जैसे चीजें पाई जाती है। यह हमारे शरीर में प्रोटीन की पूर्ति करता है, इसलिए इसे प्रोटीन का राजा कहा जाता है। और अंततः इस प्रकार हमारे प्लामू के साग खनिजों एवं लवणों से परिपूर्ण है। धन्यवाद।

जी अशोक, अभी आप सुन रहे थे एक अमन कुमार से लगी वार्ता। विषय था खनिज लवणों से भरपूर स्थानीय साग। और भाई जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जयंती पर चर्चा। जी अशोक, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के महान वैज्ञानिक, पूर्व राष्ट्रपति और

युवाओं के प्रेरणा सत्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को मनाई जाती है। इनका पूरा नाम अबुल वकील जलालुद्दीन अब्दुल कलाम था, जिसे हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, और इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके जीवन का संघर्ष, सादगी और देश के प्रति समर्पण प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणादायक है। डॉक्टर कलाम ने कठिन परिस्थितियों में अपनी शिक्षा पूरी की। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके पश्चात उन्होंने भारत के अंतरिक्ष एवं रक्षा कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से भी जुड़े रहे। भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यान तथा मिसाइल विकास कार्यक्रमों में उनकी अहम भूमिका रही है। उनके योगदान के कारण उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में रहे। वे अपनी सादगी, ईमानदारी और जन सेवा के लिए प्रसिद्ध थे। मुख्य रूप से विद्यार्थियों और युवाओं से संवाद करना उन्हें अच्छा लगता था। उनका कहना था कि देश का भविष्य युवाओं की शिक्षा, मेहनत, वैज्ञानिक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। डॉक्टर कलाम को वर्ष 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020 जैसे प्रेरणादायक पुस्तकें भी लिखी हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास की प्रेरणा दी। डॉक्टर कलाम की जयंती एक विशेष महत्व है श्रोताओं, क्योंकि इस दिन विद्यालय, महाविद्यालय और कई विभिन्न संस्थानों में भाषण, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी के साथ साथ प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन उनके विचारों को याद करके विद्यार्थियों में शिक्षा, अनुशासन, मेहनत और राष्ट्र सेवा की भावना विकसित करने का प्रयास किया जाता है। तो देखा जा सकता हो तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से सफलता प्राप्त की जा सकती है। वे 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में विद्यार्थियों को व्याख्यान देते समय ही इस दुनिया से विदा हो गए थे। उनका जीवन और उनके विचार सदैव देशवासियों को प्रेरित करते हैं। उनकी जयंती पर हमें यह सोचना चाहिए, हमें यह संकल्प भी लेना चाहिए श्रोताओं, कि हम ईमानदारी, ज्ञान और मेहनत के बल पर देश के विकास में योगदान दें। तो निश्चित रूप से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो जीवन है वो काफ़ी कठिनाइयों से भरपूर रहने के बाद सिर्फ अपने मेहनत और लगन से उन्होंने कई पदों पर उपस्थित रहे, कई पदों को उन्होंने प्राप्त किया। तो श्रोताओं, ये तो थी बातें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जयंती पर, और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। जामताड़ा में पीपीपी मोड पर 420 बेड का मेडिकल कॉलेज अस्पताल खुलेगा। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पहले चरण में जामताड़ा के साथ ही खूंटी, धनबाद और गिरिडीह में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और केपीएमजी द्वारा जारी समग्र जिला रैंकिंग में रामगढ़ जिला पूरे राज्य में पहले स्थान पर रहा है। शिक्षा विभाग के 23 सूचकांकों पर आधारित इस मूल्यांकन में कोडरमा दूसरे और चतरा तीसरे स्थान पर है। लोहरदगा थाना पुलिस ने हिरही नावाटोली मार्ग पर एक अल्टो कार से 53 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने मौके से बिहार के कैमूर निवासी एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि कार चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। यह खेप बनारस ले जाई जा रही थी। पाकुड़ पुलिस ने मंटू दास हत्याकांड का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि आरोपियों ने मृतक के साले की संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत से कुल्हाड़ी और हथौरे से मंटू दास की हत्या की थी। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में टाटा स्टील UISL द्वारा पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। कागज रहित ई बिलिंग अपनाने वाले उपभोक्ताओं के सम्मान में उनके नाम पर पौधे लगाए गए। इस मुहिम के तहत कुल 3000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। रामगढ़ जिले के बरकाकाना में शारदीय नवरात्रि के मौके पर माँ भगवती की एक अनूठी साधना भक्तों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। पोचरा के झोपड़ी टोली की रहने वाली रूपा देवी नुकीली कीलों की सेज पर लेटकर 9 दिवसीय निर्जला व्रत कर रही हैं। उनके पेट पर पीतल का कलश और अखंड दीप स्थापित है, जिसे देखने दूर दराज से लोग आ रहे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान कर पसीना देश कर नगीना
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनो ये सब भाई और बहन मन के और मन के रेडियो संगे मनोज और
0: विष्णु भाई कर
1: जोहार और एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
3: पुतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं
3: मतलब
2: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी। अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा
3: पर हम तो सब यही डाले
2: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच
2: है एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: तब का हाल चाल है विष्णु भाई कैसन खेती बारी मन चलत है
0: एकदम नगद है मनोज भाई रावरे कर कहूँ कैसन हाल समाचार है।
1: एकदम बढ़िया है विष्णु भाई और देखो निखन पर्व त्योहार भी आई जा है तो खेती में तो हरियर है ये है संगे संगे देखो मनो हरियर हो जाते काले की घूमे फिरे कर मौका जे भेटाएला।
0: रावरे सही कहा थी और देखो काम धंधा और खेती बारी में न सबकर से बेसी एकदम महिला मनक होएला।
1: सही बात है और देखो बहन मन कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं जमीन से लेकर आसमान तक पहुंच जाते और खेती बारे में कहब तो महिला मन का खास योगदान रहेला
0: एकदम। और गांव घर में देखब तो जे पहले तो पुरुष मन रहे से मैंने गरु काड़ा से जोदात रहे मकील एखन तो ट्रैक्टर मन हो गलग तो पुरुष मन ओते खटनी नी करे ना।
1: और देखो नी बहन मन भी ट्रैक्टर मन चलाए के हर जवन जोते ना और संगे संगे यह बता देव चाहे देखो आज अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कर और हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसंबर 2007 के और एक पहल धाव जो मनाए जा रहे दिवस वो रहे 15 अक्टूबर 2008 के।
0: और ये गाँव घर कर महिला मन खेती में पशुपालन पालन में जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में बेस भूमिका निभाएना सेले ई दिवस ऊ मनकर मेहनत और सम्मान देवे के ले और उनकर शिक्षा स्वास्थ्य और अधिकार मन के दिवाक ले जोर देवल जाएला।
1: और ये दिवस का एक खास उद्देश्य भी है कि कृषि ग्रामीण विकास खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन ले महिला मन कर विशेष रूप से ध्यान देवल जाएला और ये मन कर जो योगदान है इकर बारे में हमारे मन के इकर बारे में बताल जाएला और हमारे के मन के सम्मान भी करे के चाहिए।
0: एकदम नगद बात के कहली और देखो हमरे के सबके जागरूक भी होक चाहिए और बेटा बेटी में कोई अंतर नी करे के चाहिए और पढ़ाई लिखाई दियो के एक समान स्कूल में भेजे के चाहिए।
1: सही बात है विष्णु भाई और देखो बेटा छुआ तो कमाबे करे ना और आज के युग में कहो तो बहन छुआ भी देखो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और बढ़िया बढ़िया नौकरी चाकरी से लेकर खेती बाड़ी और सब देने देखब तो बहन मन कर खास योगदान रहते हैं आजकल युग में।
0: तो आजकल कार्यक्रम में का जुगाड़ है सके बता दे
1: एकदम बता दो।
0: आज कर बात में किसानों की सेवा में कृषि विज्ञान केंद्र जेके बतावे विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत कुमार सिंह और इनकर से गोठियाए हैं हमारे कर रेडियो संगी मनोज कुमार तले आज रीज रंग भी कर लो और रीज रंग में हमारे मन रूना देवी और संगी मनकर गावल गीत के सुनो तले नई उम्र कर नई फसिल में ड्रोन दीदी जे की महिला किसान हैं सीतामोनी कुमारी और इनकर से गोठियाए हैं मनोज कुमार।
1: और विष्णु भाई देखो हमरे कर 2400 जिला में कहब तो कृषि विज्ञान केंद्र है और कृषि विज्ञान केंद्र कर माध्यम से हमरे कर किसान मन ले काफी सुविधा में भेटा थे और बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण में भेटा थे जो कि किसान कर फायदा ले है तो हमको लगा था कि कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में हमारे मन के जाने के चाहिए।
0: एकदम जाने के चाहिए कृषि विज्ञान केंद्र से हमरे के बहुत कुछ लाभ मिलेला जैसे कि एखन कहब कि हमरे मन गांव देहात में सीधे बिलौती कर खेती करत रही लेकिन एखन ग्राफ्टेड जे रहेला उकर में बैगन नीचे जुड़ल रहेला जैर और ऊपरे बिलौती फरेला और संगे संगे बैगनों भी फरेला।
1: तो इस तरह बहुत सारा हमरे के नवा नवा जानकारी मन भेटाते रहेला तो चलो हमके लगत इकर बारे में हमरे मन के जाने के चाहिए।
0: एकदम जाने के चाहिए
1: तो आज कर बात में हमरे मन जानब किसानों की सेवाओं में कृषि विज्ञान केंद्र और इकर बारे में बतावे डॉक्टर अजीत कुमार महतो
0: और इनकर से गोठाए हैं मनोज कुमार।
1: किसान भाइयों नमस्कार। आज हम जानेंगे कृषि विज्ञान केंद्र क्या है, कितने जिलों में इसका स्थापना की गई है और किसानों के लिए किस किस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची। अजीत सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
5: नमस्कार।
1: जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में, तो ये कृषि विज्ञान केंद्र है क्या?
5: कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो का एक जिला स्तरीय संस्थान है, जो कि शोध संस्थान है और जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट उसके बीच में वो कार्य करता है। यह नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम का एक पार्ट है। इनका मुख्य उद्देश्य है कि जब हमारी जो भी तकनीकियां हैं वो हमारे जो शोध संस्थान है, चाहे वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शोध संस्थान हो, चाहे सभी राज्यों में अवस्थित जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनसे जो तकनीकियां निकलती हैं राज्य स्तर या देश के स्तर पे, उन तकनीकियों का लोकेशन स्पेसिफिक और यहाँ के पर्यावरण और कृषि पारिस्थितिकी के अनुसार उन तकनीकियों का अवलोकन करना, उनका फिर अवलोकन के बाद उनका प्रथम प्रत्यक्षण करना और ये तकनीकियाँ जब यहाँ के एग्रो क्लाइमेटिक के हिसाब से सही जब पाई जाती हैं तब इसको हम आगे लाइन डिपार्टमेंट को अग्रसित करते हैं कि वो लार्जर एरिया एडॉप्शन में इन तकनीकियों को ले जाए, जिससे कि हमारे ज़िले के जो उत्पादन उत्पादकता है उसमें वृद्धि हो, किसानों की आय में वृद्धि हो और लागत कम हो।
1: वर्तमान समय में झारखंड में कितने जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र हैं?
5: मालूम है झारखंड में 24 जिले हैं और 24 जिलों में 2400 में कृषि विज्ञान केंद्र आज के डेट में कार्यरत हैं, जिसमें कि 17 जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा एक राज्य का कृषि विश्वविद्यालय उसके अंतर्गत कार्य कर रहा है, 3

0: जो एनजीओ हैं उनके अंदर कृषि विज्ञान केंद्र, जैसे कि रांची में रामकृष्ण मिशन आश्रम, गुमला में विकास भारती और गोड्डा में ग्रामीण विकास ट्रस्ट के अंतर्गत कार्य कर रहा है, और तीन जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डायरेक्ट कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और एक जिला के द्वारा चलाया जा रहा है जो देवघर का है। तो सब मिला के 24 कृषि विज्ञान केंद्र 2400 जिला में कार्य कर रहे हैं।
1: ये किसानों के लिए किस किस तरह की सुविधाएं देता है?
0: कृषि विज्ञान केंद्र का आप उद्देश्य है कि जो तकनीकियां हैं वो जो तकनीकियों का एग्रो क्लाइमेटिक के हिसाब से जो पारिस्थितिक है उसके पारिस्थितिक के हिसाब से उनका अवलोकन करना, जब हम उसको हम लोग बोलते हैं ऑन फार्म ट्रायल, OFT बोलते हैं, उसमें उन तकनीकियों का हम परीक्षण करते हैं, या किसानों के द्वारा किसानों के खेत पे विज्ञान के सुपरविजन में यह किया जाता है। जब ये देखा जाता है कि ये तकनीकी जिले के जलवायु अनुरूप, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार, यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से ये तकनीकियाँ फिट होती हैं, तब इसका हम लोग देखते हैं कि लार्जर एरिया में फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण, उसमें ले जाके इनकी इसकी उत्पादकता को प्रूफ इस्टेब्लिश किया जाता है, और फिर उसको हम लाइन डिपार्टमेंट को जब देते हैं कि लार्जर एरिया में एडॉप्शन के लिए। इसके साथ साथ केवीके में प्रशिक्षण का है, विभिन्न तरह के प्रशिक्षण का आयोजन किया जा सकता है। केवीके में बहुत सारे सवाल मृदा और पौधे से संबंधित डायग्नोस्टिक लैब है, जैसे कोई मिट्टी जांच कराना चाहे तो वो यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र से लाभ ले सकता है किसान भाई, या किसी की बीमारी होती है फसल में या पौधे में या पशु में भी बीमारी है तो वहाँ पे भी आप इसका निदान किया जा सकता है। जो नई नई तकनीकियाँ निकलती हैं उन तकनीकियों से कैसे संपर्क किया जाए वो हो सकता है। जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो योजनाएं हैं उनका भी संकलन कृषि विज्ञान केंद्र के पास इंफॉर्मेशन रहता है, इसीलिए बोलते हैं केवीके एक्ट एज ए रिसोर्स एंड नॉलेज सेंटर। और साथ में नई नई जो आजकल ICT के जमाने में किस तरह व्हाट्सएप ग्रुप है, कैसे और भी ग्रुप है उनके बारे में, उनसे कैसे कनेक्ट किया जाए, फिर FPO का कैसे फॉर्मेशन है उसकी जानकारी प्राप्त किया जा सकता है, SHG कैसे हो सकता है, सेकेंडरी एग्रीकल्चर जिसको द्वितीय कृषि बोलते हैं उससे कैसे हम इसको जोड़ सकते हैं, कौन कौन से अच्छी बीजें हैं, बीज उत्पादन भी क्या एक मुख्य कार्य है, तो बीज उत्पादन अच्छे अच्छे जो प्रगत जो अधिक उत्पादन वाली प्रजातियां हैं जो इस जिले के लिए सही हैं उनकी जानकारी, और वहां से बीज भी हम प्राप्त कर सकते हैं, पौधे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ओवरऑल देखा जाए तो वो एक रिसोर्स जिसको संसाधन और ज्ञान का एक केंद्र है, जहाँ पे किसान सिर्फ ज्ञान ही नहीं तकनीकियां भी प्राप्त कर सकता है, उससे संबंधित उत्पादन उत्पादकता के लिए जो जो उपादान की जरूरत होती है वो भी प्राप्त कर सकता है।
1: कृषि विज्ञान केंद्र में किसान अगर जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं?
0: हाँ किसान भाई, क्योंकि एक जिले में डिपेंड, जैसे रांची जिले का उदाहरण ले ले तो रांची जिले में करीब 18 प्रखंड हैं, 303 पंचायत हैं, 1300 करीब करीब हमारे गांव हैं, 3 लाख से ज़्यादा कृषक भाई हैं, तो वो विभिन्न तरीकों से जुड़ सकते हैं, वो एक प्रशिक्षण के द्वारा जुड़ सकते हैं। सबसे अच्छा तो अभी आज के समय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया, किसान सारथी ऐप। आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं, किसान सारथी ऐप लिखें और उसमें अपना नाम दें, अपना ब्लॉग दें, और संबंधित जिले से वो जुड़ जाएगा। किसान भाई इतनी अच्छी तकनीक, किसान भाई कभी भी, क्योंकि किसान का समय नहीं कि 10 से 5 ही वो बात कर सकते हैं, तो वो कभी भी रात में दिन में कभी भी वो कॉल करेंगे, वैज्ञानिक नहीं उपलब्ध होगा तो वो क्वेश्चन वहाँ रजिस्टर्ड हो जाता है, चाहे उनकी आवाज़ में उठाएं या लिख के बोलेंगे तो भी लिख के टेक्स्ट चला जाएगा या आवाज़ के रूप में चला जाएगा, और वहाँ पर अगले दिन जब हम लोग पहुँचेंगे, ऑफिस पहुँचते हैं तो वहाँ पर दिखाता रहेगा, वो हमको करना ही करना है इसका निस्तारण, तो उसके बाद उनका जवाब दिया जा सकता है। इसके अलावा किसान भाई जो FPO का फॉर्मेशन, उसके द्वारा केवीके जुड़ सकते हैं, बहुत सारे IG ग्रुप है उनके द्वारा जुड़ सकते हैं, जो हमारा अंग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण या समूह पंक्ति प्रत्यक्षण होता है उनके द्वारा हम जुड़ सकते हैं। प्रशिक्षण डिफरेंट टाइप का, 1 दिन से लेकर 5 दिन 20 दिन 25 दिन का प्रशिक्षण का आयोजन होता है, उनके द्वारा हम जुड़ सकते हैं। बहुत सारे हम लोग गाँव में जो फ्लैगशिप प्रोग्राम होते हैं तो उसमें उन लोग को जागरूक करने के लिए विभिन्न ब्लॉकों में केवीके में हम आयोजन को उनके द्वारा जुड़ सकते हैं। किसान मेला का आयोजन होता है कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा, उनसे हम जुड़ सकते हैं। डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके द्वारा हम जुड़ सकते हैं। तो बहुत सारे माध्यम है किसी भी तरीके, जब भी किसान को किसी भी तकनीकी पक्ष, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि के विज्ञान का केंद्र है, तो तकनीकी की कोई भी जानकारी है वो कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा आसानी से जुड़कर उसका लाभ लिया जा सकता है।
1: जो किसान प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उनके लिए रहने खाने की सुविधाएं मिलती हैं क्या?
0: जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे किसान भाइयों को रहने खाने और प्रशिक्षण लेने का फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं है। वो 5 दिन का प्रशिक्षण वो बना रहता है शेड्यूल, किसान भाई उससे जुड़ के केवके के चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वेबसाइट है, चाहे मेल के द्वारा या खुद केंद्र में आके उससे जुड़ के प्रशिक्षण ले सकते हैं। और जहाँ वैल्यू एडिशन का है या द्वितीयक कृषि का है या ब्रांडिंग करना है, मार्केटिंग करना है, इन सब चीज़ों से भी जुड़ के किसान भाई लाभ ले सकते हैं।
1: प्रशिक्षण लेने के बाद किसानों को ऐसे छोड़ दिया जाता है कि उसके बीच बीच में देखभाल करते रहना पड़ता है दिखते हैं?
0: जो भी किसान भाई लेते हैं जैसे उसमें हम लोग हमेशा उनसे फॉलोअप करते रहते हैं, क्योंकि कुछ गांव को हम लोग एडॉप्ट भी करते हैं, क्योंकि अपने गांव को एडॉप्ट लेते हैं, वहाँ इंटेंसिव फॉलोअप होता है, उसमें फार्मर साइंटिस्ट इंटरेक्शन के द्वारा फिर हम लोगों का एक फॉलोअप मीटिंग होता है जो हर 3 महीने पे केवीके के द्वारा होता है। उसमें विभिन्न गाँव के जो प्रतिनिधि हैं, मतलब एक तरह से हमारा जैसे रांची केवीके की बात है तो जो ट्रेनिंग करके जाता है तो वो एक विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन का गठित करता है विवेकानंद सेवा संघ, तो वो ग्रुप जो है वहाँ से दो दो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, हर 3 महीने पे एक फॉलोअप मीटिंग होती है, उससे जुड़ के योजनाओं का फॉलोअप भी किया जाता है, जो समस्या उनको भी किया जाता है, डिफरेंट स्टेक होल्डर को भी बुलाया जाता है कि किसी भी तरह का कोई भी चीज़ किसानों की जरूरत है तो वो एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे उसका लाभ ले सके।
1: जिले में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
0: हाँ, ये अच्छा प्रश्न है आज के संदर्भ में, क्योंकि ये जिस हिसाब से मौसम में बदलाव आ रहा है, जिस हिसाब से कभी कभी रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, बारिश कभी कम हो रही है, सूखा सने, तो इसमें केवके बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। जो भी जैसे मान लीजिए जिला के लिए बारिश है, ड्राई स्पेल आ जा रही है, तो सूखा रोधी या सूखा सहने वाली क्षमता वाली कौन कौन प्रजातियाँ हैं उसका हम सीड में अपना फार्म पे सीड लगाते हैं, फार्मर्स पार्टिसिपेटिव सीड प्रोडक्शन करते हैं, वो सीड जो बीज है किसानों तक जाता है जिससे कि उनका उत्पादन उत्पादकता प्रभावित ना हो। दूसरा है कि केवके जैसे मेरे केवके का कि मेरा पूरा केवके ही नेचुरल फार्मिंग का एक मॉडल फार्म है, उस केवके के द्वारा इसे प्रूव किया जा चुका है कि कोई भी तरह का ये मिथ नहीं है, अधिकतम उत्पादन जितना रासायनिक विधि से लेते हैं इवन उससे ज़्यादा हम लोगों ने सीआर धान 320 का 64 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पिछले साल हम लोगों ने उत्पादन लिया। इसी तरह हमारा फार्म भी ऑर्गेनिक है, हम लोगों ने 13 गाँव में करीब 760 किसान अनगढ़ा में 13 गाँव में ये खेती ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के द्वारा कर रहे हैं। हम लोग क्लाइमेट रेजिलियंट की बात करें, जलवायु अनुकूल, तो मधुमक्खी पालन की बहुत संभावना है यहाँ पे, जलवायु अनुकूल ये मधुमक्खी पालन एक खेती का विषय है, ला की खेती है, मड़ुआ का खेती का हम लोग बीज उत्पादन भी कराते हैं, बीज भी दिलवाते हैं और साथ में उसका खेती का भी बढ़ावा देते हैं। तो इन सब चीज़ों के द्वारा हम लोगों के द्वारा जलवायु अनुकूल खेती पे काफ़ी कार्य किया जा रहा है और ये जिले के लिए काफ़ी किसानों के लिए एक रास्ता बताया जा रहा है कि जलवायु से लड़ते हुए कैसे हम अपने उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं।
1: अंत में हमारे किसान भाई को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: किसान भाई से यह अनुरोध है कि अपने कृषि विज्ञान केंद्र, क्योंकि उसमें 16 स्टाफ होता है, 7 वैज्ञानिक ही होते हैं, तो आप केवके से जुड़िए, वो हर जगह नहीं जा सकते तो अपने कृषि विज्ञान केंद्र तक जरूर जाइए, वहाँ मिट्टी परीक्षण कराइए, बीमारियाँ हैं पशु की बीमारियाँ हैं, फसल की बीमारियाँ उनसे जुड़िए, अधिक अधिक कौन कौन से बीज हो सकते हैं, कौन कौन फसल बीज है, इनसे जुड़कर तकनीकियों के द्वारा अपनी आय में वृद्धि करेंगे तो वो टिकाऊ होगा, संरक्षित होगा और आपका आय हमेशा वृद्धि की तरफ जाता रहा, जिससे कि आप इनकम आपका काफ़ी बढ़ सकता है।
1: किसान भाइयों, आज आपने जाना कि किसानों की सेवा में कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह काम कर रही है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अजित कुमार सिंह जी। अजित सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: तो भाई बहन देखो, एखन हमने मन सुन ली कि किसान के सेवाओं में कृषि विज्ञान केंद्र का है, का लेखे काम करत है और का प्रशिक्षण में देवल जाएगा, और संगे संगे हमरे के प्रशिक्षण देवे कर माध्यम से भी कहब तो रहे और खाए कर फ्री है, जेकर से हमरे मन फायदा उठाए सकेला।
2: एकदम। और मनोज भाई, आज तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला उनकर दिवस लगे और उमन हर क्षेत्र में आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमरे के एगो रीज रंग कर लो आपका, जे कि महिला मन भी बहुत बेस गीत मन के गायन है।
1: सही कहली विष्णु भाई, देखो नहीं आजकल हमरे कहब तो गीत गोविंद में कहब तो बहन मन कर काफी योगदान है और इनकर गीत कर माध्यम से काफी हमरे मन के संदेशों भेटाला है कि नहीं? तो चलो विष्णु भाई, आज हमरे मन कृषि विकास गीत में सुनो नागपुरी में रूना देवी और संगी मन कर गावल गीत।
2: तो चलो सुनीला।

0: तो एखन हमारे मन गीत सुनत रही नागपुरी लोकगीत में रूना देवी और संगी मनकर गावल गीत के और इकर में नारी मनकर सम्मान और उनकर गुणगान रहे।
1: गीत कर माध्यम से हमरे के संदेश भी दे रहे हैं कि भाई नारी कर कितना महत्व है और कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं कि
0: एकदम नकद बात के कह ली भाई।
1: और विष्णु भाई देखो जब नारी कर बात कर रहे थे ना तो आज हम एक महिला किसान से भेंट कर रही है जो कि ड्रोन दीदी कर नाम से हमरे मन जानी ला और उके सरकार देने से बहुत सारा फायदा बन भेटा है और उके सहायता भेटा है। ड्रोन कर माध्यम से अपन गाँव देहात में सब नाम भी कमाते हैं और ड्रोन से खेती बाड़ी भी करते हैं।
0: अच्छा अच्छा ड्रोन खेती का हो
1: ड्रोन देखो एक ठो एक तरह से मशीन है जो कि हवा में ऊपर उड़ेला उकर से हमरे मन कोनो दवा मन के छिड़काव मन करेला चाहे कोनो खाद मन देवेला उकर से का होला कि एक घंटा में कहब चाहे तनी सन समय में बगरा से बगरा ठाव में हमरे मन छिड़काव करके आराम से समय के बचा सकेला।
0: तो बड़ा बढ़िया जानकारी तब तो मिली किसान से।
1: सही बात है भाई। तो आज का किसान है
0: सीतामुनि कुमारी और इनकर हमरे का रेडियो संगी मनोज कुमार भेटाहिस।
2: नमस्कार, मेरा नाम है सीतामणि कुमारी, मेरा गांव है तुसमू, प्रखंड नगड़ी, जिला रांची, झारखंड राज्य की मैं रहने वाली हूं।
1: आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ हुई थी?
2: शादी से पहले मेरा पढ़ाई हुआ था मैट्रिक तक और शादी के बाद हमने इंटर फाइनल किए हैं।
1: तभी आप क्या कर रहे हैं?
2: किसान घर से ही बिलोंग करते हैं तो अभी तो हम लोग खेती बाड़ी ही करते हैं।
1: कितना एकड़ जमीन है आपका?
2: धान खेती जो करते हैं ना वो लगभग 2 एकड़ में करते हैं, 1 से 1.5 एकड़ में, और टाँड खेती है वो हम लोग का होगा 50-60 डिसमिल में, लेकिन हम लोग लीज पे लेके और खेती करते हैं अभी 5-6 एकड़ में।
1: तो अभी आपके खेत में क्या क्या लगा है?
2: अभी हम लोगों का खेत में लगा है धान लगा हुआ है, मिर्चा है और बैगन है और फिर भिंडी भी लगा हुआ है।
1: जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप ड्रोन दीदी हैं, तो ड्रोन दीदी कैसे आपका नाम आपका उपनाम हुआ, कैसे पड़ा?
2: भारत सरकार ने चलाई थी लाखपति दीदी योजना, उसी में हमको चयनित किया गया HURL के तरफ से, जिसमें हमने बिहार के समस्तीपुर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय में जाके 15 दिन का ट्रेनिंग लिए। ट्रेनिंग करवाने के बाद हम लोगों को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण मिला।
1: तो झारखंड में कितने ड्रोन दीदी हैं?
2: झारखंड में तो हम लोग जैसे गडूरा के अभी 4 ड्रोन दीदी हैं।
1: पहले आप खेती बाड़ी करते थे, अब जब ड्रोन मिला तो दोनों में क्या बदलाव आपको पड़ा?
2: ड्रोन जब से हम लोगों को मिला है तो खेती बाड़ी काफी बदलाव हो गया है। पहले होता था कि ड्रोन नहीं था तो खेत में छिड़काव करने जाते थे तो थोड़ा सा दिक्कत होता था, जैसे समय का बचत हुआ भी ड्रोन के माध्यम से। हम लोग 1 एकड़ में पहले लगता था कि 1.5 से 2 घंटा का समय लगता था और अभी लगता है 1 एकड़ में 7 मिनट, 7 मिनट में हम ड्रोन से छिड़काव कर लेते हैं।
1: तो ड्रोन से अपने खेतों में क्या क्या प्रयोग करते हैं?
2: ड्रोन से हम खेतों में अभी तो कीटनाशक ही छिड़काव कर रहे हैं, और जैसे नैनो यूरिया हो गया, नैनो DAP हो गया, वही सब का यूज कर रहे हैं।
1: ड्रोन आप जब चलाते हैं तो खुद चलाते हैं या किसी से चलवाते हैं?
2: नहीं, ड्रोन हम खुद से चलाते हैं।
1: ड्रोन आपको फ्री मिला है कि उसके लिए कुछ पैसा दिया गया?
2: नहीं, ड्रोन हमको मुफ्त में मिला है।
1: तो सीतामणि जी, आपको जब ड्रोन मिला तो क्या देख के आपको चयनित किया गया?
2: HURL के तरफ से ये देखा गया कि मतलब हम उस लायक हैं या नहीं, ड्रोन चला सकते हैं या नहीं, या फिर पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए, उसी के हिसाब से जैसे हम इंटर फाइनल किए हुए थे के हिसाब से ही हमको चुना गया।
1: तो आप में ऐसा कुछ तो और कुछ खास बात होगा जिसे आपको ही चुना गया? आपके क्षेत्र में खेती बाड़ी अच्छा से करते हैं या फिर?
2: किसान है तो खेती बाड़ी बहुत जगह में पहले मतलब लगाते थे तो इतना कम उम्र में खेत जाते थे, तो हम भी मतलब खेती को देख के अपने से भी दवा हम पहले भी देते थे, और जैसे गांव घर में होता है ना कि कोई बहुत कोई अपने से जाके खेत उत में नहीं जाती है और नहीं देखभाल करती है, तो हमको खेती बाड़ी करने का भी नॉलेज है, हम खुद से भी खेती लगाते हैं।
1: जब ड्रोन से आप छिड़काव करते हैं तो सिर्फ रासायनिक दवा का इस्तेमाल करते हैं कि जैविक दवा का भी इस्तेमाल करते हैं आप?
2: नहीं, ड्रोन से हम तो जैविक भी छिड़काव करते हैं, जैसे बीजामृत हो गया, घनजीवा अमृत हो गया, निमास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, और रासायनिक भी छिड़काव करते हैं।
1: तो सिर्फ दवा का इस्तेमाल करते हैं कि उसमें कुछ खाद मिला कर भी छिड़काव कर सकते हैं?
2: नहीं, अभी तो बस नैनो यूरिया और DIP का ही हम लोग लिक्विड फॉर्म में छिड़काव कर रहे हैं।
1: एक बार जब आप ड्रोन को चार्ज करते हैं तो कितने देर तक उड़ान भर के अपना छिड़काव करता है वो?
2: एक बार हम जब ड्रोन को चार्ज करते हैं तो 1 एकड़ का छिड़काव कर लेता है।
1: तो उसमें कितना लीटर का दवा आप उसमें रख सकते हैं?
2: 10 लीटर का टैंक है मेरा ड्रोन में, और 1 एकड़ में हम जितना दवा भरेंगे उतना ही दवा को 10 लीटर टैंक में भर के हम छिड़काव करते हैं।
1: आपके गाँव में जब आपका ड्रोन दीदी के नाम से सब कुछ जानते हैं तो कैसा महसूस होता है, कैसा आपको लगता है?
2: जब से ड्रोन दीदी बने हैं तो पूरा प्रखंड जानता है, पहले तो गांव घर ही जानता था, लेकिन अभी पूरा प्रखंड लेवल तक हमको जानता है कि ड्रोन दीदी सीतामणि कुमारी है। तो अच्छा महसूस होता है कि ड्रोन दीदी आ रही है, ड्रोन दीदी है, मान सम्मान मिला और आज मेरा नाम रोशन हो रहा है।
1: सीतामणि जी, जैसा कि आप अपने खुद से जब छिड़काव करते थे और अब ड्रोन से छिड़काव कर रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं?
2: पहले हम लोग जैसे पीठ में लाद के छिड़काव करते थे तो छिड़काव करने में काफी परेशानी आती थी। जैसे खेत में हम लोग छिड़काव करते थे तो नाक मुंह में भी दवा घुस जाता था, उससे हम लोग का शरीर को नुकसान भी होता था। और अभी हम ड्रोन के माध्यम से छिड़काव कर रहे हैं तो ड्रोन ऊपर उड़ के छिड़काव कर रहा है, ड्रोन से छिड़काव कर रहे हैं तो सभी पौधा में बराबर मात्रा में हम लोगों का दवा पहुंच रही है। पहले हाथ से करते थे तो सभी पौधा में बराबर मात्रा से दवा नहीं पहुंचता था। और झाड़ी जैसे ऊंचा गन्ना हो गया, मक्का हो गया, ये सब फसल में छिड़काव करने में हम लोगों को मतलब दिक्कत होता था पहले, लेकिन अब ड्रोन के माध्यम से हम छिड़काव कर रहे हैं तो अभी हम फसल में
1: हमारी बातों को सुन रहे हैं, उसको क्या सलाह देना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
2: जो हमारे बात ड्रोन का इस्तेमाल करें और ड्रोन से ही दवा का छिड़काव करें, काहे कि ड्रोन से छिड़काव करने से हर पौधा में सीमित मात्रा में दवा पहुंच जाती है, उसमें कीट लगने का संभावना नहीं रहती है।
1: तो किसान भाइयों, आज हमारे साथ थे ड्रोन दीदी सीतामणि कुमारी, जो कि अच्छी अच्छी बातें कहीं और ड्रोन के बारे में काफी कुछ बातें कहीं। तो किसान भाई, आप लोग को भी ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने खेतों को हरियाली बनाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहिए। तो भाई बहन देखो, जैसे कि आज हमारे मन किसान से भेंट मुलाकात कर लीजिए रहे ड्रोन दीदी, तो भाई बहन देखो, तुम्हारे मन भी कम से कम अगर खेती बाड़ी बढ़िया से करा और इसन बहुत सारा सरकार देने से योजना में चला जाला, जेके हमारे मन के फायदा उठाए चाहिए, का विष्णु भाई?
0: एकदम नगद बात के कह ली।
1: और हमके लगा थे कि आज कर किसानों निकर बेरा भी सिरात है कि कोनो का एक साथ है।
0: तो हम बता देवीला, ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार,
1: और कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे प्रभु शरण कर।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
2: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
3: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
2: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
3: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों

आज के खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार जोहार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम के तहत आप जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पर चर्चा सुनेंगे आप, और आज की बात का विषय है कृषि में महिलाओं की भागीदारी और उनका स्वावलंबन। और इसी कार्यक्रम के कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे ग्राम खनवा प्रखंड पाटन जिला पलामू के एक सफल ग्रामीण महिला हसरत बानो से ली गई भेंटवार्ता। विषय है सरकारी कार्यक्रमों की लाभुक और कृषि कार्य। इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार। और साथ ही साथ आज की नसीहत का हमारा विषय है फसलों में रसायन का अत्यधिक प्रयोग घातक, और आज का मौसम का मिजाज भी हम आपको बताएंगे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हुए आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। जी हाँ श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं के योगदान को सम्मान देना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना है। ग्रामीण महिलाएं कृषि, पशुपालन, परिवार के पालन पोषण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण महिलाएं खेतों में बुआई, रोपाई, निराई गुड़ाई, कटाई, अनाज की सफाई और भंडारण जैसे कई कार्यों को पूर्ण करती है। इसके अलावा गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी पालन, साथ ही साथ सब्जियों की खेती में भी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रहती है। महिलाएं घर और परिवार के जिम्मेदारियों के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहती है। अगर देखा जाए तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी वे छोटे छोटे व्यवसाय चलाकर परिवार की आय बढ़ाने में सहयोग प्रदान करती है। ग्रामीण महिलाओं की मुख्य समस्याएं हैं, उनकी भी हम बात करेंगे श्रोताओं। तो इनकी जो मुख्य समस्याएं हैं, प्रायः देखा जाता है कि उनके पास शिक्षा की कमी होती है, गरीबी है, कुपोषण का भी शिकार रहती है और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की भी कमी के साथ साथ रोजगार के भी सीमित अवसर के कारण इनके पास समस्याएं बड़ी रहती हैं। कई महिलाएं अपने श्रम के अनुरूप उचित पारिश्रमिक उन्हें नहीं भी मिल पाता है। साथ ही साथ कृषि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद भी भूमि के स्वामित्व और आर्थिक निर्णयों में उनकी भागीदारी कहीं ना कहीं सीमित हो जाती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए इन्हें शिक्षा, कौशल विकास और सम्मान अवसर उपलब्ध कराना जरूरी हो जाता है। महिला सशक्तिकरण के भी कई उपाय हैं। इसमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर इन्हें प्रदान करने होते हैं। स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण, सरकारी योजना और बाजार से जोड़ना भी जरूरी है। महिलाओं को आधुनिक कृषि यंत्र, जैविक खाद, खाद प्रसंस्करण, सिलाई कढ़ाई, मशरूम उत्पादन और पशुपालन का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे कि ये इन चीज़ों को जानकारी लेकर अपने घर के, अपने परिवार के आय की बढ़ोतरी कर सके। साथ ही साथ स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और कानूनी अधिकारों के प्रति भी इनकी जागरूकता होनी चाहिए। सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना और विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ जो है महिलाओं तक पहुंचे और उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध कराया जाए। तो देखा जाए श्रोताओं, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हमें ग्रामीण महिलाओं के परिश्रम, त्याग और उपलब्धियों को सम्मान अवसर देने का प्रदान करता है, क्योंकि ये ग्रामीण महिलाओं के द्वारा ही कृषि से लेकर पशुपालन की बात हो, बाजार में सब्जी बेचने की बात हो या परिवार चलाने की बात हो, इन सभी कार्यों में महिलाओं की जो भागीदारी है वह अतुलनीय रहती है। तो निश्चित रूप से इन्हें सम्मान देना चाहिए। ग्रामीण महिलाओं का विकास के लिए बिना गांव और देश का विकास संभव नहीं है। जी हाँ श्रोताओं, यदि

0: ग्रामीण महिलाओं का विकास नहीं होगा तो हमारे देश का भी विकास प्रायः नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी है इन्हें शिक्षा, सम्मान, समान अधिकार और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा। सशक्त महिलाएं ही सशक्त परिवार, समृद्ध गांव और विकसित भारत की आधारशिला रख सकती है। तो श्रोताओं, ये तो थी बातें अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पर एक चर्चा, और अब आइए हम आपको सुनाते हैं खरवा पाटन पलामू के हजरत बानो से ली गई एक भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, प्रतिवर्ष हम 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों के योगदान को मान्यता देना है। कृषि और खाद्य सुरक्षा में योगदान, गरीबी और भूख का उन्मूलन, संसाधनों तक उनकी पहुँच, उनका सशक्तिकरण और साथ में अवैतनिक कार्य को मान्यता देना मुख्य उद्देश्य है आपका अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का। और आज इस विशेष दिवस पर हमारे साथ स्टूडियो में हैं पलामू जिला के डाल्टनगंज प्रखंड के खनवा गांव की एक प्रगतिशील महिला, जो झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी की ट्रेनर हैं। इसके साथ ही कल्याण गुरुकुल कार्यक्रम से ये जुड़ी हुई हैं। इन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जो महिलाओं को सुविधाएं दी गई हैं, उस कार्यक्रम से जुड़ करके ये अपने गांव, गांव के आसपास के जो भी गांव हैं वहां ये महिलाओं को जागरूक करती हैं और कृषि के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। आप हैं हसरत बानो, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सर्वप्रथम तो हमारी ग्रामीण महिलाओं को आप ये बताइए कि झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी कार्यक्रम जिससे आप जुड़ी हुई हैं,
2: जी,
1: इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
2: हम लोग का उसका मुख्य उद्देश्य यह है, जो गांव गिराव के लोग, मतलब क्या बोलते हैं, जो गरीबी से जूझ रहे थे, उसको JSRPS ने समूह में जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया है। हम लोग को काम यही है कि उन लोग को अपना कुटीर उद्योग, मतलब जैसे छोटा छोटा काम बिजनेस शुरू करना है अपना, जैसे जिसमें कि दाल फैक्ट्री, तो हम अपना घर अरहर को दाल बनाएंगे, मड़ुआ को आटा बनाएंगे, ज्वार को आटा बनाएंगे, बाजरा को आटा बनाएंगे, उसको हम पैकेजिंग करेंगे, उसको हम हर जगह दुकान में, गाँव में, बाजार में बेचेंगे, तो उससे हम लोग को ज़्यादा मुनाफा मिलता है। तो दीदी लोग उसमें अच्छा फायदा भी होता है और अपने आप पर आत्मनिर्भर बनते हैं कि अपना दुकान हम चला रहे हैं। दूसरा, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ के दीदी लोग एक काम करते हैं, चूड़ी का ट्रेनिंग देते हैं। चूड़ी का ट्रेनिंग में बहुत, उसमें सबसे ज्यादा फायदा होता है कि चूड़ी दीदी लोग घर से बनाती है और अपना मेला में, बाजार में जा जाके बेचती है, उससे भी अपना आत्मनिर्भर बनती है, अच्छा उसे दीदी लोग को मुनाफा होता है। हम लोग को दीदी लोग क्या करते हैं, दीदी जगह जब दीदी कैफे खुलता है, दीदी कैफे में है कि सब चाट है, चौमिंग है, नाश्ता है, खाना है, उसमें भी दीदी लोग अपना जगह जगह पर अपना होटल खोल खोल के अच्छा सा, मतलब अपना आजीविका अपना पैर पर खड़ा होकर बहुत खुश नजर आती हैं कि हम लोग अपना पैर पर खड़ा है और अपना काम कर रहे हैं, किसी अपने हस्बैंड से या किसी से दो पैसा लेने की हमको जरूरत नहीं है,
1: मतलब आश्रित नहीं है कि
2: नहीं, नहीं किसी पर हम लोग आश्रित नहीं है, क्योंकि खुद पर हम अपना पैर पर खड़ा है और खुद का अपना पैसा का खुद मालिक है। अब हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसी से, मतलब किसी से हमको दबाव नहीं है कि आपको ये नहीं खरीदना है, वो नहीं खरीदना है, जितना हम पैसा कमाए अपना हिसाब से खर्चा करेंगे, अपना बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई, भविष्य हम लोग को सबसे ज़्यादा पीछे जाता था बाल बच्चे को, जो स्कूल फीस नहीं दिया जाता था, ट्यूशन नहीं दिया जाता था, उससे हम लोग अभी समय समय पर बड़ा स्कूल में बच्चे लोग को पढ़ाते भी हैं और ट्यूशन कोचिंग भी कराते हैं।
1: तो इसमें मुख्य रूप से आप क्या भूमिका अदा करती हैं?
2: हम लोग इसका ट्रेनिंग देते हैं दीदी लोग को कि मतलब ऐसे दाल को तैयार कीजिए, ऐसे पैकिंग कीजिए, यहाँ यहाँ मार्केटिंग है, यहाँ बेचिए। हम लोग दीदी लोग को मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, वहाँ रास्ता बताते हैं, उसका हर जगह जाने का तरीका बताते हैं, कहाँ जाइएगा, कैसे कितना बिकेगा, कहाँ ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, वो सब हम लोग काम करते हैं
1: जी। और इस JSLPS कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपको कब ऐसा लगा कि इससे जुड़ा जाए तो काफी फायदा होगा?
2: हम लोग इसमें 12 से जुड़े थे,
1: 2012
2: से जुड़े थे, और इसमें हम लोग को बहुत पहले तो बिल्कुल हम लोग क्या बोलते थे, गरीब गांव घर का महिला मतलब दबे हुए थे, खेत बाड़ी गहना गिरवी सब रखना पड़ता था, लेकिन
1: मतलब ब्याज पर पैसा लेने,
2: हाँ, ब्याज पर
1: परंपरा थी,
2: परंपरा थी जो 10 रुपये देता था। अब तो उस सब चीज से हम लोग को छुटकारा मिल गया है, क्योंकि अब हम लोग 1 रुपये पर ही काम करते हैं, जो हम लोग को बैंक लीकेज होता है, और 1 लाख से अब तो 10 लाख तक कर दिया है बैंक। हर 10 दीदी पर 10 लाख रुपया बैंक हम लोग को देती है, जो 1% पर देती है। अच्छा। तो इससे हम लोग को बहुत ज्यादा राहत है, और हम लोग किसी का अब
1: तो इस कार्यक्रम के तहत जोड़ने की प्रक्रिया है, कौन कौन गांव को जोड़ा गया आपके द्वारा?
2: ये हमारे गांव में हर गांव को जोड़ा गया है, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा प्रखंड, कोई ऐसा ब्लॉक है कि नहीं छोड़ा।
1: हमारे जो आपके द्वारा किया गया,
2: जो हम लोग के द्वारा, तो यही खनवा, जोड़, बड़का गाँव, रजवाड़ी, ये सब हम लोग बनाए हैं।
1: अच्छा, वहाँ की महिलाओं को, हाँ, मतलब
2: वहाँ की महिलाओं
1: जागरूक की, कार्यक्रम से जोड़ी है ना, और उनको जो भी हो मतलब सहायता,
2: हाँ, जो भी सहायता है, कैसे बैंक
1: लिए प्रशिक्षण देने के रूप में आप, हाँ, उनको बेहतर रूप से सब चीज सिखाती,
2: हाँ, सिखाते हैं
1: जी। और एक कार्यक्रम है कल्याण गुरुकुल कार्यक्रम, इसका महिलाओं के प्रति क्या उद्देश्य है?
2: कल्याण गुरुकुल का महिलाओं का प्रति है कि जैसे हम लोग 18 से 30 साल का बच्ची हो, लेडीज हो, जो पढ़ लिख कर घर में बैठे हुए हैं, किसी का बिना रोजगार है, तो इसमें कि 2 महीना का मतलब पलामू लातेहार जिला में मेनका में गुरुकुल एक संस्थान है, वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है 2 महीना का, उसके बाद में कंपनी से उसी प्रशिक्षण के दौरान ज्वाइनिंग लेटर आता है, तरह तरह के वहाँ पे, जैसे एसी डक हो गया, आपका क्या बोलते हैं सीएनसी ऑपरेटर हो गया, सिलाई हो गया, वायर हार्नेस हो गया, ये सब में
1: मतलब कुटीर उद्योग से जुड़ा,
2: हाँ,
1: हुआ जो
2: कुटीर, इसमें करके कंपनी में इसे मतलब 20+ सैलरी बच्ची लोग के 2 महीना के बाद 3रा महीना से कंपनी में ज्वाइनिंग लेटर आता है, अपना पढ़ के ज्वाइनिंग करेगा, उस 20,000 से महीना सैलरी
1: तो इसके लिए
2: है।
1: जो भी लड़कियां हैं या फिर महिलाएं जो साक्षर महिला हैं, तो कितना उनको पढ़ा हुआ होना चाहिए?
2: 5वीं से लेकर 12वीं तक वहाँ पे सबका जॉब लगता है,
1: उसी अनुसार कैटेगरी बटा हुआ,
2: उसी कैटेगरी बटा हुआ है
1: जी।
2: 5वीं से 8वीं है तो सिलाई में जाएगी, 10वीं से 12वीं है तो सीएनसी ऑपरेटर में जाएगी, जहाँ टीवीएस कंपनी का सब नट बोल्ट मतलब गाड़ी तैयार होता है,
1: अच्छा,
2: इन जरो से भी दिया जाता है, जैसे टीवीएस हो गया, स्कूटी हो गया, आपका अपाची गाड़ी हो गई, जिसका जब छोटा छोटा पार्ट पुर्जा हो तो वो सब मशीन द्वारा कटिंग किया जाता है।
1: अच्छा, तो इस कल्याण गुरुकुल कार्यक्रम जो है, इससे जुड़ने का जो आपका विचार है वो कब आया?
2: अभी तो ये हम 2 महीना पहले से इसमें जुड़े हुए हैं।
1: अच्छा जी, और इसे लाभ दे रही हैं?
2: बहुत,
1: अभी प्रशिक्षण भी दे रही हैं?
2: जी हाँ, दे भी रहे हैं, और सब बच्ची लोग को वहाँ पर मतलब बता के जागरूक करके वहाँ पर पहुँचाते हैं ट्रेनिंग सेंटर पर।
1: अच्छा, अब हम बात करेंगे भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की, जो झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में भी एक गाँव में ये कार्य होता है। इसके तहत, इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए विशेष कर हैं, तो जिसमें एक दीदी बाड़ी कार्यक्रम प्रमुख है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी?
2: दीदी बाड़ी के प्रमुख हम अभी तक 300 मतलब कितना 570-580 लोग को दीदी बाड़ी करवाए हैं अपने गाँव में, अपने अगल बगल के गाँव में, जिसमे है की उसमें कुपोषण के नाम सुने होंगे बहुत लोग, तो कुपोषण होने का कारण होता है की जो बाजार से सब्जियां आती है वो पूरा खाद वर्क होती है, और जब हमको 7 दिन सब्जी खाना है तो 7 दिन हमको ताजा सब्जी नहीं मिलता है, तो इसमें हम लोग ये करते हैं कि अपना घर में दीदी बाड़ी 1 डिसमिल 2 डिसमिल 3 डिसमिल में लगाते हैं, 7 तरह का सब्जी उगाते हैं, जिसमें जैविक खेती, जो घर का बकरी गोबर गाय सड़ा पूरा केचुआ खाद बनाकर या सड़ा हुआ गोबर, इसी से ही उपयोग होता है, इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, शुद्ध इसको ऑर्गेनिक खेती कहते हैं, तो हम खुद भी खाते हैं और अपने गाँव को भी मतलब लोग खिलाते हैं, बताते हैं, और बच्चे लोग भी खाते हैं, इससे होता है कि कुपोषण दूर होता है, सुस्त मतलब स्वस्थ भोजन स्वस्थ खाना, तो इससे मतलब पूरा आदमी स्वस्थ मिलता है खाना, तो भरपूर इसमें जितना मात्रा में मिलना है सब कुछ बच्चे को भी मिलता है, उस घर वाले को भी मिलता है, तो इससे मतलब बहुत राहत होता है, और सबसे राहत ही होता है कि डेली 100-100 रुपया की सब्जी खरीदाता है, वो बिल्कुल ही दीदी लोग का पॉकेट मनी बचता है, जो सब्जी नहीं खरीदना पड़ता है, हर तरह का सब्जी 7 तरह का 7 दिन रोज घर से निकलता है।
1: और इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपके घर के आसपास जो
2: छोटा मोटा जमीन है 1-2 डिसमिल उसी में जिसका पानी नहीं है, तो वो माइते धोते नहाते फिर भी हो जाता है,
1: उससे भी
2: तैयार हो जाता है, इसके लिए अलग से कोई पानी का व्यवस्था नहीं करना है।
1: कभी कभी आपको देख रेख करना है।
2: कभी कभी देख रेख करना है, वही कोड़ाई घास पात
1: और जैविक रूप से।
2: जैविक रूप से करना है।
1: वाह, तो इसके लिए तो फिर आप कंपोस्ट कैसे तैयार करें ये भी बताती होंगी।
2: हाँ बिल्कुल, जैसे हम लोग घर में गोबर है, बकरी है, सड़ा हुआ साग सब्जी की छिलन काटन है, तो एक छोटा मोटा हम लोग गड्ढा खोदेंगे, उसमें एक प्लास्टिक डालेंगे और उसको धीरे धीरे सब उसमें भरेंगे और केचुआ होता है, तो केचुआ उगार में थोड़ा बहुत कानून से केचुआ लाके उसमें छोड़वा देते हैं, तो पूरा भुरभुरा कर दो, पूरा जैविक खाद बना देगा केचुआ खाद। और उसका मत क्या बोलते हैं, उसमें जो हम लोग डीएपी यूरिया पोटाश डालते हैं वो तीनों का बराबर डीएपी खाद करता है, तो उसे हम लोग उस खाद का जरूरत ही नहीं जाना है जब

0: डालेंगे तो।
1: तो इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ करके आप अपने गांव और गांव के आसपास के भी जो गांव हैं, अपने अगल बगल के जो गांव हो गए वहां पर आप पहल करती हैं और महिलाओं को इससे जोड़ती
0: हैं। इसका हम प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, दीदी लोग को बताते हैं, एक जगह भीड़ इकट्ठा करते हैं, उन लोग इसका ट्रेनिंग देते हैं, दीदी ऐसे कीजिए तो ऐसे होगा, आपके घर में कोई बीमारी नहीं होगा, कोई आपका गैस्ट्रिक नहीं होगा, कोई आपका ठेहुना में दर्द नहीं होगा, कोई आपका कैंसर नहीं होगा, मतलब ये सब शुद्ध भोजन खाइएगा तो शुद्ध आपका स्वस्थ भी रहेगा, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो कोई बीमारी नहीं होगा, तो बीमारी नहीं होगा तो मेरा पैसा बचेगा।
1: अब एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम आते हैं जी। जब आप JSLPS कार्यक्रम से नहीं जुड़ी हुई थी या फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम से आप नहीं जुड़ी थी, तब की स्थिति, और आज जब आप जुड़ करके लाभ ले रहे हैं, तब की स्थिति, आज दोनों में कितना अंतर पाती हैं आप?
0: बहुत अंतर है। उसका से तो बहुत बुरा था, आदमी बाजार से जाता DAP यूरिया लाता, थाने थान देता, रोपता तो खाली जो आदमी पॉइजने खा रहा था, कीड़ा होता बाजार से जाता, दवा लाता, छींटता, लेकिन अब हम लोग निमास्त्र ब्रह्मास्त्र से छींटते हैं, मतलब घर का दवा बना के छींटते हैं, वो कोई फर्टिलाइजर नहीं, तो इससे है कि मेरा खेत भी अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और पौधा भी अच्छा रहेगा। अब हम लोग में जो कल का आय का स्रोत था वो 1 रुपया के दीदी लोग मोहताज रहती थी, अपने हस्बैंड पर आश्रित रहती थी, लेकिन आज का आय में हस्बैंड हम ही लोग पर आश्रित हैं कि 1000 2000 5000 मिलेगा, लेकिन हम लोग उन लोगों पर आश्रित नहीं है, बस हम लोग यही बहुत बदलाव हुआ कि समूह में जुड़ने से क्या अंतर रहा और जुड़ने के बाद क्या अंतर हुआ वो तो दिख रहा है सबको।
1: और अब हम खेती बाड़ी की बात करेंगे।
0: हाँ जी,
1: तो खेती बाड़ी में भी क्या क्या लगाई हुई है?
0: अभी हम लोग आलू लगा रहे हैं, लहसुन लगाए हैं, अब मतलब क्या बोलते हैं, पहला प्याज की घुनिया अभी जो आदमी जो जो दीदी भैया अभी करेंगे तो अभी इससे अच्छा आजीविका बढ़ेगा, अभी जो करेगा वो 70-80 रुपए किलो में बिकेगा, तो इससे हमको सभी दीदी को मतलब क्या कहना चाहते हैं कि अभी मतलब 5 किलो 10 किलो लेकर सभी अपना अपना खेत तैयार करके घुनिया कीजिए और अच्छा मुनाफा कमाइए प्याज के घुनी से।
1: अभी कितना में लगाई हैं आप?
0: अभी हम एक मतलब कितना 4 कट्ठा में लगाने जा रहे हैं घुनिया।
1: अच्छा, प्याज के लिए
0: जी,
1: प्याज की घुनी माने तैयारी की,
0: हाँ,
1: जा रही है,
0: की जा रही।
1: और रही बात आलू की, तो आलू के लिए कोड़ाई वगैरह हो गया?
0: हाँ, खेत जुताई हो गया है, अब कल रोपाई होगा।
1: वाह। और धान की अब हम बात करते हैं, धान की खेती कैसी हो रही है?
0: धान खेती से तो बहुत अच्छा है।
1: अच्छा, आप जो खेती कर रही हो कैसी?
0: हाँ, बहुत अच्छा है मेरा खेती, धान का भी देखने में लग रहा है कि हाँ धान है,
1: पूरा लहलहाया हुआ,
0: पूरा लहलहाया हुआ।
1: अच्छा, इधर कीट बीमारी का कोई प्रकोप?
0: किट गुमार के प्रकोप तो होता ही है, लेकिन हम लोग निमास्त्र बना के दवा धान में भी छिड़काव करेंगे तो जो भी कीड़ा मकोड़ा है मर जाएगा और उसका धान मतलब वो खखरी नहीं आएगा, पूरा पूरा धान होगा। जो अभी धान फूट रहा है या फूट गया है, जैसे दूध भरा है उसमें निमास्त्र का छिड़काव कर दीजिए, सब कीड़ा खत्म हो जाएगा।
1: ऐसे देखने के भी कृषि वैज्ञानिक लोग आते होंगे?
0: हाँ बिल्कुल आते हैं।
1: अच्छा, बुलाने पर आ जाते होंगे?
0: हाँ बुलाने पर आते हैं, या जहाँ लोग अपना बीज दिया रहता है वहाँ जाते हैं।
1: अच्छा, मक्का की खेती कैसी हुई?
0: मक्का खेती तो लमसम ठीक है इस वर्ष का भी, लेकिन नील गाय से आदमी परेशान है।
1: अच्छा, इधर नील गाय का?
0: हाँ, नील गाय का ज्यादा प्रकोप।
1: अच्छा, तो उससे बचने के लिए क्या करती हैं?
0: अब हम लोग तो अपना अपना घोरान करते हैं, लेकिन घोरान का भी तोड़ देता है ये।
1: और अब हम बातें करते हैं दलहनी फसल की, दलहनी में क्या क्या लगा रही है?
0: दलहनी में तो अभी हम लोग मसूर बुनेंगे, चना बुनेंगे, मूंग अभी तो नहीं बुनाएगा, मसूर चना दलहन में जाएगा।
1: अच्छा,
0: और अरहर तो बहुत अच्छा इस वर्ष का है
1: ना?
0: बहुत अच्छा।
1: और सिंचाई की क्या व्यवस्था है?
0: सिंचाई व्यवस्था है, कुआं है, बोर है।
1: अच्छा, ये सब है?
0: हाँ।
1: तो आप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत पंप वगैरह भी दिए जाते हैं ये सब, इसका लाभ ली?
0: अभी उसका लाभ नहीं लिए हैं, लेकिन अभी भरेंगे, भरना सोचे हैं।
1: अच्छा, उसका लाभ लेना
0: जी। हाँ,
1: तो सिंचाई की कैसी व्यवस्था है यहाँ पर?
0: अभी अपना घर का व्यवस्था है,
1: अपना घर से ही।
0: हाँ, घर का व्यवस्था।
1: बगल में कोई नदी वगैरह?
0: नदी है, लेकिन नदी तो अमानत नदी हम लोग घर के बगल में है ही, लेकिन नदी से हम लोग पंप नहीं चढ़ाते हैं, हम लोग अपना ही बोर से पंप करते हैं।
1: अच्छा, यहाँ बाजार व्यवस्था क्या है? जब कोई भी कृषि उत्पाद आप तैयार कर लेती हैं तो फिर उसको बेचने कहाँ जाती हैं?
0: यही तो यहाँ पे बाजार व्यवस्था का मुहैया ही नहीं है, दिक्कत यहाँ पे है कि घर घर जाते हैं और थोड़ा सा कम दाम में हम लोग को देना पड़ता है,
1: देना पड़ जाता है ऐसे। हाँ। ऐसे एक मुश्त जब ज्यादा हाँ। उत्पाद हो जाए तो फिर क्या करती हैं?
0: तो फिर हम लोग यहाँ JSLPS के द्वारा एक हम लोग APO खुला हुआ है।
1: अच्छा,
0: APO में हम लोग उसको दीदी लोग से संपर्क करके धीरे धीरे सब खरीद करेंगे, तो जो रेट है उसे हम लोग दीदी लोग को ज्यादा देंगे, और तो अब हम लोग उससे भी छुटकारा पाते जा रहे हैं कि हम लोग JSLPS APO खोल दिया है, तो APO एक बहुत बड़ा कंपनी है, तो उस कंपनी में हम लोग खरीद कर देंगे।
1: अच्छा, उस कंपनी में देती हैं। हाँ। खरीद करके, जिससे कि और फायदा हो जाता।
0: हाँ,
1: है
0: और फायदा होता
1: जो दीदी लोग वगैरह जो जुड़ी हुई हैं उनको।
0: हाँ, उनको ही फायदा होता,
1: फायदा होता है,
0: उनको
1: जी,
0: फायदा होता है।
1: और ये मुहिम एक चला हुआ है?
0: हाँ, मुहिम एक चला हुआ है, ये पूरे दिवस में हम लोग भी जुड़े हुए हैं।
1: आप लोग भी जुड़े हुए?
0: 1100-1100 रुपया हम लोग उसमें हिस्सा धन अपना दिए हैं पूंजी के रूप पर।
1: अच्छा,
0: और सरकार हम लोग उसमें 16-16.5 लाख रुपया भी अपना पूंजी दिया है
1: जी। अच्छा, मुख्य दलहन है विशेषकर आपका अरहर जी।
0: हाँ, इस बार बहुत अच्छा अरहर हर

0: जहाँ देखने को मिले।
1: आप कितना लगाई हैं?
0: हम तो लगाए हैं एक एकड़ में।
1: एक एकड़ में
0: जी।
1: वाह। और कीट व्याधि का प्रकोप उस पर
0: अभी तो नहीं कुछ है? नहीं है, लेकिन जब फूल पर आएगा तब हम लोग दवा छिड़के, वही निमास्त्र, वही सबसे दवा निमास्त्र ब्रह्मास्त्र, वो छिड़के एक भी कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा।
1: तो जैविक खेती के लिए जो निमास्त्र और ब्रह्मास्त्र की जो बात हो रही है, तो इसके लिए भी प्रशिक्षण देती होंगी?
0: जी बिल्कुल देते हैं।
1: अच्छा,
0: वो चीज घर का सामग्री से बनता है। आपका हर घर में गाय रहता है, गौमूत्र लगता है, गोबर लगता है और नीम पत्ता लगता है, बस यही तीन चीज से वो बनता है, जो तीन चीज दीदी के घर में मिलता है सामग्री। उसमें पैसा भी नहीं लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा, फिर का दवा मिलेगा, केवल ट्रेनिंग लीजिए और दवा लीजिए, बनाइए।
1: बहुत सुंदर। आप थी पलामू जिला डाल्टनगंज प्रखंड पोस्ट रजवाड़ी ग्राम खनवा की एक प्रगतिशील महिला, जो झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी कल्याण गुरुकुल कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जो कार्य चल रहे हैं, दीदी बाड़ी कार्यक्रम, इन सारी योजनाओं से, इन सारे कार्यक्रमों से जुड़ करके, और आप महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं और कृषि कार्य में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं आप
0: जी।
1: आप थी हसरत बानो, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और आज इस संदर्भ में खेती बाड़ी से जुड़ी बातें और जो सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उस संदर्भ में हमारे श्रोताओं के साथ जानकारियां साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
3: क्या हो गया ऐसा?
2: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
3: ये कमाल कैसे हो गया?
2: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
3: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
2: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
4: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
5: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, इसलिए
6: हमेशा पूछो WHY Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
5: आपका साइबर रक्षक।
7: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
8: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
5: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
6: हमेशा पूछो WHY Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
5: आपका साइबर रक्षक।
9: जी हर्षदा, अभी आप सुन रहे थे एक सफल ग्रामीण महिला से लेकर भेंटवार्ता, भेंटवार्ताकार थी हसरत बानो। और वही जानते हैं फसलों में रसायन का अत्यधिक उपयोग। जी हर्षदा, आधुनिक कृषि में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग फसल उत्पादन बढ़ाने में किया जाता है, सीमित मात्रा में इनका उपयोग उपयोगी हो सकता है, वहीं अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग से मानव स्वास्थ्य, मिट्टी, जल, पर्यावरण और जैव विविधता के लिए काफ़ी गंभीर खतरा बनता चला जा रहा है। इसलिए रसायनों का उपयोग विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक तरीके से ही करना जरूरी है। फसलों में रसायनों का अत्यधिक प्रयोग अल्पकालिक लाभ देकर दीर्घकालिक गंभीर नुकसान पहुँचाता है। स्वस्थ मिट्टी, स्वच्छ जल और सुरक्षित भोजन के लिए संतुलित कृषि पद्धति अपनाना जरूरी है। टिकाऊ और जैविक खेती ही हमारे किसान भाई के लिए, उपभोक्ता और पर्यावरण के लिए जरूरी है। और श्रोताओं, अब चलते चलते हम आपको बता दें आज का तापमान। जी हाँ श्रोताओं, डाल्टनगंज का आज का अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान रहा 22 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता का प्रतिशत जो है वो 77 दर्ज किया गया। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज के इस खेती बाड़ी कार्यक्रम से अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
2: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
1: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
2: बहन, पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
1: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
3: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
6: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
7: कंडो,
6: गर्भ निरोधक गोलियाँ।
8: खुशी का मंत्र रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
9: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
10: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेल 2026 के भारतीय दल से की बातचीत, कहा यह ऐतिहासिक सफलता नए भारत की बढ़ती खेल शक्ति का प्रतीक। राज्य सरकार की बड़ी पहल, जामताड़ा, खूंटी, धनबाद और गिरिडीह में पीपीपी मोड पर बनेंगे मेडिकल कॉलेज अस्पताल, समझौते पर लगी मुहर। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के थानों में सीसीटीवी टेंडर की प्रगति पर सरकार से मांगा जवाब, डीजीपी को सशरीर हाजिरी से छूट। झारखंड शिक्षा विभाग की समग्र रैंकिंग जारी, रामगढ़ जिला पूरे राज्य में पहले पायदान पर, कोडरमा को दूसरा और चतरा को मिला तीसरा स्थान। और राज्य में दुर्गा पूजा के दौरान राज्य भर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मुस्तैद, रांची में ड्रोन से निगरानी, खूंटी में किया गया मॉक ड्रिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल के साथ बातचीत की। इस अवसर पर खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी मौजूद रहीं। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक सफलता ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है और यह नए भारत की खेल शक्ति को दर्शाता है।
1: इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे हैं। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल।
0: जामताड़ा में पीपीपी मोड पर 100 एमबीबीएस सीटों वाला 420 बेड का मेडिकल कॉलेज अस्पताल खुलेगा। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पहले चरण में जामताड़ा के साथ ही खूंटी, धनबाद और गिरिडीह में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
2: जामताड़ा के लोगों का जो सपना था वो साकार हुआ। आज हम लोगों ने जामताड़ा जिला को मेडिकल कॉलेज हमने दिया है। जामताड़ा जैसे एरिया में मेडिकल कॉलेज का खुलना वहाँ के मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। आसपास के जो एरिया है उनका भी डेवलप होगा, वहाँ भी जो नियमित हम लोग है सेवा हेल्थ सेवा हम दे सकते हैं।
0: जमशेदपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पथराव में घायल कांग्रेस नेता मनोज उपाध्याय से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। तिलक पुस्तकालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यालय पर पथराव की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।
3: कुछ लोग आकर के झेला पत्थर करने का काम किया, हमारे एक कांग्रेस के साथी पूरी तरह घायल हुए, उन मंत्री के शिलालेखों को हटाया जा रहा है और जानबूझ करके एक अराजकता की स्थिति फैलाना चाहते हैं। यहाँ जानबूझ करके रण क्षेत्र बनाना चाह रहे थे। इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए, उसकी हम निंदा करते हैं।
0: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने के टेंडर की प्रगति पर सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने डीजीपी को सशरीर उपस्थिति से छूट दे दी। महाधिवक्ता रोहित राय ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके आवेदन 29 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस पर राज्य के रामगढ़ और लोहरदगा में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। रामगढ़ में महिला किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों में 100 से अधिक महिलाओं को मड़ुआ जैसी पारंपरिक फसलों की वैज्ञानिक खेती के लिए प्रेरित किया गया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और केपीएमजी द्वारा जारी समग्र जिला रैंकिंग में रामगढ़ जिला पूरे राज्य में पहले स्थान पर रहा है। शिक्षा विभाग के 23 सूचकांकों पर आधारित इस मूल्यांकन में कोडरमा दूसरे और चतरा तीसरे स्थान पर रहा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में बात पीएम विश्वकर्मा योजना से लोगों के जीवन में आए बदलाव की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र जन सेवा से देश सेवा आज विकास की नई परिभाषा लिख रहा है। इसी विजन के तहत शुरू हुई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना राज्य के पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के लिए एक नई उड़ान बनकर आई है। कभी जी तोड़ मेहनत कर गुजारा करने वाले शिल्पकार अब इस योजना के माध्यम से आधुनिक मशीनों और उन्नत तकनीकों का उपयोग कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं, जिससे उनके चेहरों पर एक बार फिर खुशी लौट आई है। आइए सुनते हैं इसी संकल्प को रेखांकित करता देश के प्रधानमंत्री का ये संदेश।
2: हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स बहुत ही आवश्यक है। आपको आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये का टूल किट वाउचर भी मिलेगा। आप जो सामान बनाएंगे उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग में भी सरकार हर तरह से मदद करेगी।
1: प्रधानमंत्री के इसी जन कल्याण के संकल्प को पलामू के धरातल पर उतारने में उद्योग विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पलामू के जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक रघुवर सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत 18 अलग अलग तरह के पारंपरिक और हुनरमंद व्यवसायों को शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ पाकर सदर प्रखंड के सुआ कोरिया निवासी राजमिस्त्री शंभू कुमार और गुड्डा गुड्डी का व्यवसाय करने वाले अलीमुद्दीन अंसारी जैसे अनेक शिल्पकारों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है।
3: हमारा भी है, हम प्रधानमंत्री योजना का लाभक है। 1 लाख रुपए लोन लिए हैं और हम उसे अपना रोजगार के लिए कुछ सामान लिए हैं, जैसे कि हम राजमिस्त्री काम करते हैं। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनको धन्यवाद देते हैं।
4: जी, हमको 1 लाख रुपया लोन पास, उसी से मैं कारोबार कर रहा हूँ और घर पर बना के मेला वगैरह में भी जाके बेचते हैं। अब हम लोग के बाल बच्चा खोस रहे हैं, इसी से धन्यवाद करता हूँ सरकार को।
1: पलामू के इन शिल्पकारों की बदलती जिंदगी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जनसेवा का ये महाअभियान आज देश सेवा का सबसे सशक्त माध्यम बन चुका है। आकाशवाणी समाचार के लिए पलामू से जसप्रीत सिंह के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
0: दुर्गा पूजा को लेकर राज्य भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी रांची में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए फिरायलाल चौक से सुजाता चौक तक फ्लैग मार्च निकाला और ड्रोन से निगरानी की। वहीं खूंटी जिले में एसपी की मौजूदगी में मॉक ड्रिल का आयोजन कर जवानों को भीड़ नियंत्रण और सतर्कता बरतने के कड़े निर्देश दिए गए।
5: हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल का अभ्यास किया यहाँ पे, जिसमें कि जो लोगों को कैसे लयबद्ध तरीके से कार्रवाई होती है, किस प्रकार से हम लोगों को एक्शन लेना है, कि अगर कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो उसके बारे में जानकारी दी गई और उसमें सभी ने अच्छे से अपने जो कार्रवाई उनको बताई गई थी उसके द्वारा कार्रवाई किया गया है। हम लोग पर आशा करते हैं कि जो हम लोग की मॉक ड्रिल है इसका हम लोग को वस्तु स्थिति में इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग अपने जिले में जो भी त्यौहार चल रहे हैं उनको संपन्न कराने में कामयाब।
0: सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में टाटा स्टील UISL द्वारा पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। कागज रहित ई बिलिंग अपनाने वाले उपभोक्ताओं के सम्मान में उनके नाम पर पौधे लगाए गए। मौके पर SP मनोज स्वर्गियारी और नगर आयुक्त ने इस पर्यावरण पहल की सराहना की। और अब मौसम का हाल। राज्य में अगले 4 दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कल यानी 16 अक्टूबर को सुबह में कोहरा या कुहासा छाए रहने की संभावना है, जबकि बाद में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेल 2026 के भारतीय दल से की बातचीत, कहा यह ऐतिहासिक सफलता नए भारत की बढ़ती खेल शक्ति का प्रतीक। राज्य सरकार की बड़ी पहल, जामताड़ा, खूंटी, धनबाद और गिरिडीह में PPP मोड पर बनेंगे मेडिकल कॉलेज अस्पताल, समझौते पर लगी मुहर। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के थानों में CCTV टेंडर की प्रगति पर सरकार से मांगा जवाब, DGP को सशरीर हाजिरी से छूट। झारखंड शिक्षा विभाग की समग्र रैंकिंग जारी, रामगढ़ जिला पूरे राज्य में पहले पायदान पर, कोडरमा को दूसरा और चतरा को मिला तीसरा स्थान। और दुर्गा पूजा के दौरान राज्य भर में कानून व्यवस्था

0: बनाए रखने के लिए पुलिस मुस्तैद। रांची में ड्रोन से निगरानी, खूंटी में किया गया मॉक ड्रिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बहन, मेरा बबलू तो ठीक से खाता पीता ही नहीं है, बार बार बीमारियां उसे घेर लेती हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, किससे सलाह लूं?
2: अरे बहन, 104 नंबर डायल कर, जहां पर तुझे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों से उचित सलाह मिलेगी।
1: 104 नंबर, वो क्या है बहन?
2: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन।
3: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: माँ, मुझे भी सब्जी दाल दो ना।
6: नहीं, तू ऐसे ही खा, इसे भैया को खाने दे।
7: अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं?
8: बढ़ती बच्ची, किशोरियों के साथ खान पान में भेदभाव ना करें।
7: किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है,
8: उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं,
7: माहवारी प्रारंभ होती है,
8: उन्हें अच्छा और उचित पोषक आहार की आवश्यकता होती है।
7: याद रखें, स्वस्थ बालिका ही भविष्य में स्वस्थ माँ बन सकती है।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
9: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता।
1: दुर्गा पूजा सहित अन्य त्योहारी सीजन को देखते हुए गोड्डा पुलिस तथा प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। इसको लेकर गोड्डा में एंटी ड्रग्स कैंपेनिंग चलाया जा रहा है। गोड्डा पुलिस विभाग की ओर से चलाए जा रहे इस एंटी ड्रग्स कैंपेनिंग के दौरान बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर सहित पैसा एवं बाइक बरामद कर पुलिस ने एक बड़े माफिया गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गत दिनों इसकी जानकारी देते हुए गोड्डा SDPO आकाश कुमार ने बताया की
2: एक गुप्त सूचना मिली थी कि नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड्डा जो ब्लॉक फील्ड मैदान उसके निकट कुछ व्यक्ति हैं जो ब्राउन शुगर का क्रय विक्रय कर रहे हैं। गुप्त सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक SIT का गठन किया गया, तलाशी किया गया और पूछताछ किया गया। तो कलेक्टिवली जो ऑपरेशन हुआ है उसमें हम लोगों ने लगभग जो कैश है 58,250 रुपये कैश, 51 ग्राम ब्राउन शुगर, 3 वेइंग मशीन, एक SUV कार, तो 5 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है।
1: विश्व मानसिक दिवस के अवसर पर गत दिनों गोड्डा कॉलेज एवं महिला कॉलेज प्रासार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खासतौर पर मनोविज्ञान विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर गोड्डा कॉलेज के सभागार में छात्रा शिखा कुमारी ने अपनी कविता के माध्यम से छात्राओं के बीच पढ़ाई एवं छात्रों को होने वाले आवश्यक दबाव का चित्रण किया। अपनी कविता के माध्यम से शिखा कुमारी ने कहा,
3: ना कहीं निकला खून, ना कोई चोट है, फिर न जाने ये कैसा अंदरूनी खोट है। आईने के सामने चेहरा तो मुस्कुरा रहा है, आईने के सामने चेहरा तो मुस्कुरा रहा है, पर न जाने अंदर ही अंदर मुझे क्या हुआ जा रहा है। दिन की रोशनी में जो ठहाके लगाता है वो सच रात को अचानक सहम सा जाता है। हर रात सिसकियों और तन्हाई में बीत रही है, जिंदगी रोज मुझसे मेरा सुकून छीन रही है। चीख नहीं निकलती बस तब घुटता है जब अंदर ही अंदर कोई सपना टूटता है। सपनों के टूटने का दर्द क्या होता है ये सिर्फ वही जानता है जो जाग कर सोता है।
1: चिकित्सा संपर्क से जुड़े डॉक्टरों ने लगातार आंदोलन कर रखा है। राज्य चिकित्सा संगठन के आह्वान पर गोड्डा में भी चिकित्सकों की ओर से आंदोलन करते हुए काला बिला लगाकर अपनी मांगों को बुलंद किया है। इस दौरान गोड्डा में सचिव डॉक्टर आकाश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि
4: डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट पिछले कई सालों से हम लोग हर बार आश्वासन मिलता है लागू हो जाएगा, लेकिन वो ठंडे बस्ते पे ही पड़ा हुआ है। इस बार आर या पार की लड़ाई है, हम लोग इसको पूरा पूरी प्रोटेक्शन को लागू करवाएंगे।
1: गोड्डा में दुर्गा पूजा एवं नवरात्रि को लेकर माहौल भक्तिमय हो गया है। हर तरफ मंदिरों में घंटे और शंख की आवाज के साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा रहा है। इस बीच गोड्डा में पर्व को और भी बेहतर बनाने के लिए लगातार डांडिया नाइट्स का आयोजन किया जा रहा है। गोड्डा में लगातार 3-4 वर्षों से गोड्डा गुरुकुल डांस अकेडमी की ओर से होने वाले डांडिया नाइट्स का आयोजन 17 अक्टूबर को किया जाएगा। इसको लेकर संस्थान की ओर से व्यापक तैयारी की जा रही है। इस वर्ष खरीफ फसल की तैयारी को लेकर किसान काफी खुश है। किसानों के खेतों में लहलहाते धान को देखकर सभी किसान प्रसन्नचित होकर मां दुर्गा भगवती की आराधना

0: उम्मीद है। गोड्डा के किसानों का कहना है कि इस वर्ष बेहतर बारिश के कारण उनकी फसल बेहतर है तथा फसल में कीट पतंग नहीं लगने के कारण उन्हें इस बार फसल के बेहतर होने की उम्मीद है। गोड्डा के जिला कृषि पदाधिकारी ने भी लक्ष्य निर्धारित करके बताया कि इस बार किसान अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरव किशोर।
1: अभी आप सुन रहे थे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।
2: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी।
3: श्रोताओं, अभी आप आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण सेवा सुन रहे थे। प्रादेशिक समाचार जिले में आजकल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:17 हो चुके हैं। हमारे स्टूडियो से लेकर हाजिर हैं कुछ ही पलों में फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। अभी आपने सुना केके की आवाज़ में फिल्म काइट के इस गाने को। नासिर फिरोज के बोल थे, राकेश रोशन के संगीत।

अभी आपने सुना दबंग टू केस गाने को? श्रेया घोषाल राहत फतेह अली खां की आवाज में, समीर के बोल थे दूसरे मिल के संगीत। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसंध्या। और अब आइए सुनते हैं ऋचा शर्मा और कुणाल गांजेवाला की आवाज में स्वानंद किरकिरे के बोल हैं अतुल अजय के संगीत। फिल्म का नाम सिंघम।

0: अभी आप सुन रहे थे सुरसन फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे थे 103 MHz पर। आइए सुनते हैं उजाले की ओर कार्यक्रम LWE द्वारा। वार्ता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना वार्ताकार हैं आनंद कुमार।
1: गरीबों के लिए स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार योजना। भूमिका, यह योजना 2 अक्टूबर 1993 में शुरू की गई थी। इस समय यह योजना देश के 2046 ऐसे प्रखंडों में क्रियान्वित की जा रही है जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा अत्यंत गरीब लोगों की संख्या ज्यादा है। सूखा क्षेत्रों में तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भी इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उद्देश्य, मुख्य विशेषताएं, गांव के अकुशल मजदूरों को वर्ष में कम 100 दिनों का रोजगार निश्चित रूप से उपलब्ध कराने के कारण ही इस योजना का नाम सुनिश्चित रोजगार योजना रखा गया है। 100 दिन का रोजगार एक जरूरतमंद व्यक्ति को मिल जाए यह सुनिश्चित करने के लिए गांव में जरूरतमंद परिवारों की पहचान के कर परिवार को परिवार कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। परिवार कार्ड में परिवार की पूरी जानकारी अंकित रहती है। उस परिवार में कम से कम 2 लोगों को जितना दिन रोजगार उपलब्ध कराया जाता है इसकी जानकारी परिवार कार्ड में दर्ज होती जाती है। स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन

कार्यान्वयन जिला विकास विभाग के माध्यम से करवाया जाता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रखंड एवं पंचायतों के द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाता है, अतः उन्हें इस योजना का कार्यान्वयन पदाधिकारी भी कहा जाता है। स्वरोजगार योजना के तहत जो काम होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार से हैं: वन रोपण, कृषि उद्यान तथा जल एवं भू संरक्षण संबंधी कार्य जो कि इसका 40% है, लघु सिंचाई कार्य जो कि 20% है, सड़कें 20% हैं, प्राथमिक पाठशाला तथा आंगनबाड़ी भवन जो कि 20% है। अर्थात यदि योजना में 10,000 रोजगार देने के लिए आरंभ किए जाने हैं तो इनमें से अधिक 2 ही सड़कें तथा स्कूल भवन तथा 1 आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कराया जा सकता है। इस योजना में काम करने वाले मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। स्त्री और पुरुष की मजदूरी में कोई अंतर नहीं रहता है। मजदूरी का भुगतान कार्यस्थल पर नगद रूप में किया जाता है। अगर आवश्यकता हुई तो मजदूरी का आधा भुगतान खाद्यान्न के रूप में भी किया जा सकता है, परंतु खाद्यान्न की कीमत खुले बाजार की कीमतों से कम लगाई जानी चाहिए। सप्ताह में 1 बार मजदूर की कीमत मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। भुगतान के समय मुखिया, सरपंच एवं पंचायत समिति के सदस्यों का उपस्थित रहना अनिवार्य है। जब कभी कम से कम 20 व्यस्त लोग जिनका नाम इस योजना के तहत पारिवारिक कार्ड में दर्ज है मंदी के मौसम के दौरान काम की मांग करते हैं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा 15 दिनों के अंदर नए काम शुरू कराकर तब तक रोजगार मुहैया कराया जाना चाहिए जब तक कि सुनिश्चित रोजगार योजना चल रहे अन्य कार्यों में इस तरह का रोजगार उपलब्ध न हो, किंतु 10 व्यक्तियों द्वारा ही रोजगार की मांग की जाती है। प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने विवेक से वैसे नए काम शुरू करा सकता है जो कि 30 दिनों के भीतर पूरा हो जाएगा। इस योजना के तहत शुरू किए जाने वाले स्थल पर एक बोर्ड भी लगाया जाता है जिससे कार्य का स्वरूप तथा बजट अंकित रहता है। इस योजना के अंतर्गत मजदूरों की सुविधा के लिए सुविधाओं का रहना भी अनिवार्य है, जैसे पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, महिला मजदूर के छोटे बच्चों के लिए एक महिला रखकर बालवाड़ी की व्यवस्था, न्यूनतम मजदूरी और इस मजदूरी के उत्पादन मानदंडों को दर्शाने वाले सूचना पट, गांव के अकुशल तथा गरीब रेखा के नीचे रह रहे मजदूरों को इस योजना से लाभ लेने के लिए पारिवारिक रोजगार कार्ड में उनका नाम रहना जरूरी है, अतः उन लोगों को चाहिए कि वे सर्वप्रथम यह जानकारी लें कि उनका प्रखंड सुनिश्चित रोजगार वाले प्रखंड में आता है या नहीं। अगर आता है तो अविलंब उसे प्रखंड विकास पदाधिकारी के संपर्क करना चाहिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी मजदूरों को पारिवारिक रोजगार कार्ड कोई उपलब्ध कराने की आवश्यकता कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप सभी जानते हैं, कोरोना जैसे महामारी में सभी देशों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा था। इस महामारी कई देशों में फैला हुआ था जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पूरा विश्व और हमारा भारत देश कोरोना वायरस जैसी महामारी के संकट में लड़ रहा था। कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोगों की नौकरी जा चुकी थी, लेकिन उन मजदूरों और श्रमिकों को काफ़ी क्षति हुई थी जो बाहर दूसरे राज्यों में रहकर काम करते थे। उनके पास रोजगार का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से इन प्रवासी श्रमिकों के रोजगार को अवसर बंद हो चुके थे। इस समस्याओं को देखते हुए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा देश के प्रवासी मजदूरों की मदद करने तथा उनके रोजगार को अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना की शुरुआत देश के 6 राज्यों और 116 जिलों में मिशन मोड के तौर पर शुरू किया गया था। गरीब कल्याण योजना के तहत यह अभियान 125 दिनों तक चलाया गया जिसमें 25 तरीके के काम इन प्रवासी मजदूरों को दिए गए थे और दिए जा रहे हैं। यदि आप इस योजना के संबंधी अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो कोरोना जैसे महामारी में न तो मजदूरों के पास रोजगार था और न ही जीवन यापन करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था। इन सभी परेशानियों को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करवाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान में 6 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को शामिल किया गया था। इस योजना के अंतर्गत लगभग 50,000 करोड़ रुपए का खर्च सरकार द्वारा किया गया था। इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का
का मकसद से 25 विकास कार्यों जैसे आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक केंद्र, कृषि सड़क, आवास, बागवानी, जल संरक्षण

आदि पर जोर दिया गया था। जिस जगह पंचायत भवन नहीं थे वहां पर पंचायत भवन बनाया गया था। कोरोना वायरस की वजह से इन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर बंद हो चुके थे और उनके पास रोजगार की कोई साधन उपलब्ध नहीं था। उन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना और उनकी आजीविका को सुधारना था। अगर अब इस योजना की बात अगर हम 2024 में करें तो उसका क्या लाभ है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2024 का लाभ कुछ इस प्रकार से हैं, जिसको हम क्रमशः एक एक करके देखते हैं। इस योजना में प्रवासी श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होना, राज्यों में बेरोजगारी कम होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। इस योजना का लाभ देश के प्रवासी मजदूरों को प्रदान किया जाएगा। इस अभियान में आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान का बजट 50,000 करोड़ रुपए रखा गया है। योजना के साथ सभी का समन्वय बना रहे इसके लिए 12 मंत्रालय एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन भी शामिल है। पीएम गरीब कल्याण योजना में किसी मजदूर को उसकी कार्य कुशलता के आधार पर ही काम दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत गरीब प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया जाएगा। अगर हम संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की बात करें तो भारत सरकार ने ग्रामीण गरीबों को लाभदायक रोजगार और भोजन उपलब्ध कराने के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मजदूरी और खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। इस लेख में हम इस संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य को विस्तार से वर्णन किया गया है, इसको हम लोग क्रमशः एक एक करके देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अतिरिक्त एवं अनुपूरक मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना, देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा प्रदान करना तथा पोषण स्तर पर सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिसंपत्तियों का सृजन तथा अवसंरचना विकास संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की विशेषताएँ, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की विशेषताओं को हम कुछ इस विस्तार पूर्वक समझते हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत धनराशि और खाद्यान्न पंचायत राज संस्थानों के सभी 3 स्तरों के लिए उपलब्ध होंगे। पहला होगा जिला पंचायत, फिर होगा मध्यवर्ती पंचायत और ग्राम पंचायत। एक जिले में जिला पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच संसाधनों का वितरण 20:30:50 के अनुपात में किया जाएगा। खाद्यान्न तथा MGRY संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत 5% धनराशि मंत्रालय में रखी जाएगी, जिसका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न गंभीर संकट के समय अथवा बाढ़ प्रभावित दीर्घकालिक सूखाग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में निवारक उपाय करने के लिए किया

अतिरिक्त एवं अनुपूरक मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना, देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा प्रदान करना तथा पोषण स्तर पर सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक सामाजिक एवं आर्थिक परिसंपत्तियों का सृजन तथा अवसंरचना विकास संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की विशेषताएं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की विशेषताओं को हम कुछ इस विस्तार पूर्वक समझते हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत धनराशि और खाद्यान्न पंचायत राज संस्थानों के सभी 3 स्तरों के लिए उपलब्ध होंगे। पहला होगा जिला पंचायत, फिर होगा रोजगार अभियान 2024 का लाभ कुछ इस प्रकार से हैं, जिसको हम क्रमशः एक एक करके देखते हैं। इस योजना में प्रवासी श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होना, राज्यों में बेरोजगारी कम होगी, लोगों

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चितपुर से, मैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में, सुनेंगे 8:45 पे हिंदी में समाचार, रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 10 उर्दू में समाचार। विविध भारती की प्रसारण सेवा सुनेंगे रात्रि 9:30 पर।

आज के फनकार 10 बजे हम लेकर हाजिर होंगे रजनीगंधा का कार्यक्रम फिल्म संगीत एक रंग, एक ही फिल्म से सुनेंगे रात्रि 10:30 पर हिंदी में समाचार, रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, होने सभा का समापन करेंगे रात्रि 11:10 पर।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना के लिए संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र खरीदे जाएंगे। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। सेंसेक्स 2% से अधिक बढ़कर 74,316 पर बंद हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। कहा, देश वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसकी विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नई प्रौद्योगिकियों को सीखने के अवसर और दूसरे शहरों में निर्भरता कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
1: यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन रहा है। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। GSAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित ये उपग्रह भारतीय वायुसेना की सुरक्षित और निर्बाध संचार क्षमता मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया, भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वाले के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है, उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग ने बताया कि सेवा प्रदाता 4G और इससे आगे के वायरलेस नेटवर्क पर इस सेवा का परीक्षण कर चुके हैं। विभाग ने कहा कि 2G और 3G तकनीक वाले वायरलेस नेटवर्क तथा सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पर CNAP सेवा शुरू करने के बारे में अलग से विचार किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों के लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ संलग्न किया जाएगा। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से संबंधित अन्य याचिकाओं पर भी केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। ये सुनवाई SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन के इस्तीफे की मांग के बीच हुई है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सोमवार को अपनी याचिका दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च निकाला था। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से भी SIR से कथित नाम हटाने पर जवाब मांगा है। सरकार ने कहा है कि शुल्क संबंधी बाधाओं के बावजूद इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात बढ़कर करीब $51 अरब हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि में ये निर्यात $45 अरब 73 करोड़ था। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायनों और कृषि उत्पादों के अधिक निर्यात से इस वृद्धि को समर्थन मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है।
2: न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते 20 अक्टूबर को यानी दशहरे के दिन से लागू हो जाएगा। वहीं 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता फरवरी या मार्च 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमान केंद्र का शुभारंभ किया। यह केंद्र भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी, विश्लेषण और प्रबंधन मजबूत करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस केंद्र को वरिष्ठ नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को भारत के व्यापार प्रदर्शन, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं, नियामक मंजूरियों, आवेदनों के निपटारे और अन्य कामकाज की एकीकृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला आज हम बताएंगे कि गिव इट अप अभियान जैसी पहलों के माध्यम इस दृष्टिकोण को कैसे कार्य जा रहा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में गिव इट अप अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत लोगों से स्वेच्छा से LPG गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी। इस अभियान के तहत 1,13,00,000 से अधिक LPG उपभोक्ताओं ने अपनी गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दी। इससे हुई बचत से गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। इस योजना से खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को लाभ हुआ, जो पहले पकाने के लिए लकड़ी और गोबर के उपलों का इस्तेमाल करती थी। सरकार देश भर में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को अब तक 10,56,00,000 से अधिक मुफ्त LPG कनेक्शन दिए हैं। वर्ष 2015 में दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गिव इट अप अभियान ने लोगों को एकजुट होकर गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया।
4: वी इंट्रोड्यूस द गिव इट अप कैंपेन seeking the cooperation of the public in voluntarily giving up cooking gas subsidies. We promise that for every connection given up, one poor family currently without gas would be given a connection. This will enable us to liberate many poor women from the health hazards of using firewood. This brings me to an achievement that I think even our worst critics do not dispute. This is the change in the levels of corruption.
3: उत्तर प्रदेश की रहने वाली संजू देवी ने बताया कि गैस चूल्हे से खाना बनाना काफी आसान हो गया है और उन्हें अब खाना बनाते समय धुएं का सामना भी नहीं करना पड़ता।
5: पहले जब चूल्हे पे खाना बनाया करती थी मैं तो मेरे धुएं से चेहरे पे एलर्जी हो जाती थी। अब मुझे इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि अब आराम से खाना बना लेती। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी।
3: गिव इट अप अभियान ने लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया है, साथ ही हर परिवार तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने के सरकार के प्रयासों को मजबूती दी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि पूर्ण संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।
1: हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है और खासकर हमारी महिला हॉकी टीम ने तो गोल्ड लाकर 44 लंबे इंतजार को खत्म किया है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार जीता है और जहां परमेश्वर शूटिंग प्रदर्शन 1982 के बाद मैराथन में भारत को मिली सफलता ये बड़ी है।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534 अंक उछलकर 74316 पर पहुंच गया। निफ्टी 375 अंक की तेजी के साथ 22997 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 रुपए पर बना।
0: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी और निचले तथा मैदानी इलाकों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है।
3: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू के रोहतांग दर्रे सहित ऊंची चोटियों पर आज सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं कांगड़ा, मंडी, चंबा और शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में वर्षा हुई है। रोहतांग दर्रे से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक अब यातायात सुबह 6 बजे से साय 5 बजे तक ही चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों को रोहतांग दर्रे पर जाने से पहले ताज़ा आधिकारिक निर्देशों की जानकारी लेने को कहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 4 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत के समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने SIR के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi unveils development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh, says Union Territories development remains a key priority for centre. Supreme Court issues notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and others on protest march to Apex Court over alleged SIR irregularities. Also seeks poll panel's reply over alleged voter deletions. Defence Ministry signs contracts worth over 4,000 crore rupees for GSAT-7C communication satellite for Indian Air Force and Varunastra heavyweight torpedoes for Indian Navy. Government man caller name display for telecom users from 1st of next month. Sensex climbs over 2% to close at 74,316. And Prime Minister Modi interacts with India's Asian Games contingent in New Delhi, says country is poised to emerge as a global sporting powerhouse. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and dedicated to the nation five major development projects worth over 3,300 crore.

0: साथ 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का मुआहिदा किया गया है। वरुणास्त्र एक मकामी तौर पर तैयार करदा और जहाज से दागे जाने वाला आबदोज शिकन टोरपीडो है, जिसे नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरीज ने तैयार किया है। जदीद सम्त बदलने की सलाहियत से लैस ये टोरपीडो दूरी से दुश्मन की आबदोजों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस तरह ये भारतीय बहरिया की जंगी सलाहियत को मजीद मजबूत बनाता है। हुकूमत ने आइंदा माह की पहली तारीख से टेलीफोन सारिफीन के लिए कॉल करने वाले के नाम को जाहिर करने की सर्विस लाजिमी करार दी है। टेलीमुवासलात के महकमे ने तमाम टेलीमुवासलात सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों को हिदायत दी है कि वो 1 नवंबर से सर्विस के तमाम इलाकों में कॉल करने वाले शख्स के नाम को जाहिर करने की खिदमत CNAP मुतारिफ कराएं। इस सर्विस के तहत कॉल करने वाले शख्स का नाम, जो टेली मुवासलात खिदमत फराहम करने वाली कंपनी के सारिफिन से मुतालिक डेटाबेस में दर्ज होगा, कॉल मौसूल करने वाले शख्स के फोन पर कॉल करने वाले के नंबर के साथ दिखाई देगा। गैर महफूज शुदा नंबरों से आने वाली बैनुल अक्वामी कॉलों की सूरत में स्क्रीन पर इंटरनेशनल कॉल जाहिर होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार साल 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की सम्त लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि सब्सिडी छोड़ने की मुहिम जैसे इकदामात के जरिए इस नजरिए को किस तरह हकीकी शक्ल दी जा रही है।
1: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 2015 में LPG सब्सिडी छोड़ने की मुहिम गिव इट अप शुरू की थी। सार्फीन को रजाकाराना तौर पर अपनी LPG गैस सब्सिडी छोड़ने की तरगीब दी गई थी। इस मुहिम 1,13,00,000 से ज्यादा LPG सार्फीन ने रजाकाराना तौर पर अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दी। इससे होने वाली बचत को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब कुंभों को LPG कनेक्शन फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस स्कीम से खास तौर पर देही इलाकों की उन खवातीन को फायदा पहुंचा जो खाना पकाने के लिए लकड़ी और गोबर के उपलों पर इन्हिसार करती थीं। हुकूमत ने मुल्क भर में गरीब कुंभों की बालिग खवातीन को इस स्कीम के तहत 10,56,00,000 से ज्यादा मुफ्त LPG कनेक्शन फराहम किए हैं। 2015 में दिल्ली इक्तसादी कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा था कि गिव इट अप तहरीक ने शहरियों को पसमादा कुंभों की मदद और उन्हें माहौलियात के लिए साजगार ईंधन फराहम करने के लिए मुत्तहिद होने की तरगीब दी।
2: वी प्रॉमिस दैट फॉर एवरी कनेक्शन गिवन अप वन पुअर फैमिली करंटली विदाउट गैस वुड बी गिवन अ कनेक्शन। This will enable us to liberate many poor women from the health hazards of using firewood. This brings me to an achievement that I think even our worst critics do not dispute. This is the change in the levels of corruption.
1: उत्तर प्रदेश की रहने वाली संजू देवी ने कहा कि गैस के चूल्हे ने खाना पकाने के अमल को काफी आसान बना दिया है और उन्हें धुएं की मुजर असरात से निजात मिली है।
3: पहले जब चूल्हे पे खाना बनाया करती थी मैं, तो मेरे धुएं से चेहरे पे एलर्जी हो जाती थी। अब मुझे इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि अब आराम से खाना बना लेती। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी।
1: LPG सब्सिडी छोड़ने की मुहिम ने शहरियों में समाजी जिम्मेदारी के एहसास को फरोग दिया है और सभी लोगों को माहौलियात के लिए साजगार ईंधन फराहम करने की सरकार की कोशिशों को तकवीत बख्शी है। दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: आज शेयर बाजार में काफी तेजी रही। घरेलू हिस्स इशारिया जबरदस्त इजाफे के साथ बंद हुआ। पेश है एक रिपोर्ट।
4: सेंसेक्स 1,534 पॉइंट्स यानी 2.11% के इजाफे के साथ 74,316 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 375 पॉइंट्स यानी 1.66% इजाफे के साथ 22,997 पर बंद हुआ। नई दिल्ली से आयुषी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: पाकिस्तान के शहर पिशावर में आज एक प्राइवेट स्कूल की छत मुनहदिम होने के वाके में 34 बच्चों और एक टीचर की मौत हो गई। पिशावर कैपिटल सिटी पुलिस के सरबराह मियां सईद ने कहा है कि ये वाकया शहर के अंदरूनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में वाके दीर कॉलोनी में पेश आया। अल खैर स्कूल की छत जिस वक्त मुनहदिम हुई उस वक्त ऊपरी मंजिल पर वाके क्लास रूम्स में 30 तालिबे इल्म मौजूद थे। पुलिस ने कहा कि 3 मंजिला इमारत की छत सही तौर पर तामीर नहीं की गई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत खेलों का एक आलमी पावर हाउस बनने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने एशियन गेम्स के फातिहीन की सताइश की और कहा कि उन्होंने तिरंगे को बुलंद किया। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों की हुसूलियाबियों से जोश, इस्तिक्लाल और यकीन की अक्कासी होती है।
2: साथियों, इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेटिक्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल।
0: एशियन गेम्स में तारीखी संग मील को याद करते हुए वजीर आजम ने मर्दों और खवातीन की हॉकी टीमों की जानिब से सोने का तमगा जीतने का जश्न मनाया। खवातीन हॉकी टीम की जीत से 44 साल का इंतजार खत्म हुआ है। नौजवानों की उमूर और खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया, नौजवानों की उमूर और खेलों की वजीर मुमलिकत रक्षा खटसे के अलावा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की सदर पीटी उषा भी इस मौके पर मौजूद थीं। जापान के आईची नागोया में मुनाकिद होने वाले एशियन गेम्स में भारत सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगों समेत कुल 85 तमगे जीतकर चौथे मकाम पर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हिंदू मजहब से इस्लाम या किसी दूसरे गैर हिंदू मजाहिब में तब्दील होने वाले अफराद खुदकार तौर पर पसमानदा तबकात के जुमरे में रिजर्वेशन के फवायद का दावा नहीं कर सकते। अदालत आलिया ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु हुकूमत की अर्जी खारिज करते हुए जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि किसी शख्स को उसकी साबिका जात की बुनियाद पर हासिल समाजी पसमानदगी का फायदा मजहब तब्दील करने के बाद बरकरार नहीं रह सकता। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्कियाती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की तरक्की मरकजी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फेरिस्ट की खसूसी जामे नजर सानी में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए एहतजाजी मार्च के मामले में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव और दीगर अफराद को नोटिस जारी किया है। अदालत आलिया ने वोटर फेरिस्ट से मुबैना तौर पर वोटरों के नाम हज़्व किए जाने के मामले में इंतखाबी कमीशन से भी जवाब तलब किया है। वजारत दिफा ने भारतीय फजाइया के लिए GSAT-7C मुवासलाती सैटेलाइट और भारतीय बहरिया के लिए वरुणास्त्र नामी भारी टोरपीडोज की फराहमी के लिए 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय दस्ते से मुलाकात की। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: किसने कहा है? यशोदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

मैं हूं अमरकांत के फनकार। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के संगीतकार शंकर के बारे में।

चाहे कोई भी हो। जब वो शंकर जयकिशन के साजों स्वर लहरियों पर सवार हुआ तो सीधे सुनने वालों के दिलों तक पहुंच गया और फिर वो श्रोता श्रोता नहीं आशिक बन गया।

आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार शंकर को, जिनका जन्म हुआ 15 अक्टूबर सन 1922 को हैदराबाद स्टेट के दक्षिणी हैदराबाद में, जो कि अब तेलंगाना राज्य में है। संगीतकार शंकर का पूरा नाम था शंकर सिंह राम सिंह रघुवंशी।

संगीतकार शंकर की शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में हुई और फिर शंकर ने बाबा नासिर खान साहिब की देखरेख में तबला वादन की शिक्षा लेना शुरू कर दी। कुछ वर्षों के बाद

नारायण और पति का एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था, जिससे शंकर जुड़ गए और थोड़े ही दिनों के बाद पृथ्वीराज कपूर द्वारा स्थापित पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। यहाँ वो संगीतकार हुसनलाल भगतराम के सहायक के रूप में काम करते

0: बात उन दिनों की है जबकि शंकर पृथ्वी थिएटर में काम किया करते थे। तब स्वतंत्र संगीतकार के रूप में काम की तलाश में वो कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के यहाँ स्ट्रगल के लिए जाया करते थे। उन्हीं में से एक थे गुजराती फिल्मों के निर्देशक चंद्रवदन भट्ट। शंकर इनके यहाँ नियमित रूप से जाते थे। चंद्रवदन भट्ट ने भी शंकर से वादा किया था कि जब कभी भी वो खुद कोई फिल्म प्रोड्यूस करेंगे तो उन्हें संगीतकार के रूप में साइन जरूर करेंगे। इस बात का जिक्र मैं इसलिए यहां कर रहा हूं क्योंकि यहीं पर शंकर की मुलाकात अक्सर एक युवक से होती थी जो कि बहुत अच्छा हारमोनियम बजाया करता था। तो एक दिन जबकि शंकर को पृथ्वी थिएटर में एक अच्छे हारमोनियम प्लेयर की जरूरत पड़ी तो उन्हें उसी युवक की याद आई और वो जाकर उसे अपने साथ ले आए और पापा जी यानी पृथ्वीराज कपूर से पूछे बगैर उन्होंने इस युवक पृथ्वी थिएटर में काम पर रख लिया। अब जब पापा जी ने उस युवक को हारमोनियम बजाते सुना तो बेहद खुश हुए और शंकर को उन्होंने उनके इस चुनाव पर बहुत बधाई दी।
1: हर दिल जो प्यार करेगा वो

0: जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना।
1: हाँ, तो हम बात कर रहे थे हारमोनियम बजाने वाले उस युवक की, जिसे शंकर ने अपने साथ पृथ्वी थिएटर में काम दिला दिया। दोनों साथ काम करने लगे, दोनों के बीच बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। जहाँ भी जाते दोनों साथ जाते। अब पृथ्वी थिएटर में उस समय होने वाले नाटकों में संगीत के अलावा दोनों छोटे मोटे रोल्स भी करने लगे। लोगों ने इनकी दोस्ती को देखते हुए इन्हें राम लक्ष्मण की जोड़ी का नाम भी दे दिया। अब ये जरूरी हो जाता है दोस्तों कि मैं उस युवक का नाम आपको बता दूं। वैसे ये कोई रहस्य नहीं है, आप जानते भी हैं। जी हाँ, जय किशन पांचाल।

तो शंकर जयकिशन की जोड़ी यहीं बन चुकी थी। अब यहीं यानी पृथ्वी थिएटर में दोनों की मुलाकात हुई पापा जी के बेटे राज कपूर से, जो कि उस समय निर्देशक केदार शर्मा के सहायक के रूप में काम कर रहे थे। राज कपूर ने जब खुद फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा तो अपनी पहली फिल्म आग के लिए उन्होंने बतौर संगीतकार राम गांगुली को साइन किया। फिल्म रिलीज हुई, संगीत भी लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन फिल्म के रिलीज होते होते राज कपूर और संगीतकार राम गांगुली के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए। और फिर जब राज कपूर ने अपनी अगली फिल्म प्लान की तो संगीत के लिए उन्होंने चुना शंकर जयकिशन को, और फिल्म थी बरसात।

यहाँ से शुरू हुई सुरीले गीत संगीत की वो बरसात जिसने संगीत प्रेमियों को बार बार अपने सरगमी छींटों से भिगोया। राज कपूर और शंकर जयकिशन के बीच एक ऐसा सुरीला रिश्ता बन गया जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया।

0: बहती है।
1: शंकर जयकिशन के बीच के सुरीले साथ ने एक के बाद एक कई ऐसी फिल्में दी जिन्हें आज भी सिने संगीत के रसिया याद करते हैं। आवारा, बादल, पूनम, नगीना, औरत, पर्वत, काली घटा, आह, पतिता, शिकस्त, बादशाह, मयूर पंख, नया घर, सीमा, श्री 420, बसंत बहार, हलाकू, राजहट, कठपुतली, अनाड़ी, चोरी चोरी, यहूदी, लव मैरिज, उजाला और न जाने कितनी। अगर मैं सिर्फ नाम ही बताता रहूं तो शायद मुझे दो या तीन प्रोग्राम इन पे करने पड़ेंगे।

साथियों, शंकर जयकिशन की ये जोड़ी 12 सितंबर 1971 को अचानक टूट गई, जबकि महज 41 वर्ष की उम्र में जयकिशन का देहांत हो गया।

अब खेल में जय किशन नहीं थे, लेकिन संगीतकार शंकर ने उनके नाम को अपने से अलग नहीं किया। जब तक वो रहे, शंकर जयकिशन के नाम से ही संगीत देते रहे।

और आखिर 26 अप्रैल 1987 को शंकर ने भी अपनी तमाम धुनों और साजों को अकेला छोड़ दिया और इस दुनिया से विदा ले ली, और पीछे उन्हें भी अकेला छोड़ दिया जो उनके सुरों के मुरीद थे, जो उनकी सरगम के इंतजार में रहते थे।

0: संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के संगीतकार शंकर पर केंद्रित आज के फनकार प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले, शोध आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण आकाशवाणी। आज के फनकार हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, 103 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। आइए, हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

आपने सुना सुरेश वाडकर, लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म क्रोधी का के इस गाने को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत और आनंद बख्शी के बोल थे। और अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में आर डी बर्मन के संगीत, गुलशन बारबरा के बोल हैं, फिल्म का नाम है सत्ते पे सत्ता।

आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। अभी आपने सुना फिल्म सागर के गाने को आशा भोसले, शैलेंद्र की आवाज़ में आरडी बर्मन के संगे, जावेद अख्तर के बोल। और अब आइए सुनते हैं वो सात दिन फिल्म के गाने को लता मंगेशकर शब्बीर कुमार की आवाज़ में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत है, आनंद बख्शी के।

0: आइए सुनते।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: रक्षा मंत्रालय भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। GSAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने जाने और अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SIR करने का निर्देश दिया है। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के कनॉट क्षेत्र में कल प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लागू की हैं। नई दिल्ली में आज आयोजित प्रेस वार्ता में DCP नेहा यादव ने प्रदर्शनकारियों और जनता से अपील की कि वे ऐसे किसी भी भीड़ में शामिल न हो जो धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली नगर परिषद ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क अगले 2 दिनों तक बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों ने 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and dedicated to the nation five major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the development of Ladakh remains a key priority for the centre.
2: Ladakh ki pragati aur vikas mein ek aur adhyay jud raha hai. Aaj Ladakh mein kai ahem development projects ka lokarpan hua hai. In pariyojanaon se kai logo ka safar aasan hoga, kahin bijli ki suvidhaen behtar hogi, kahin pani ki uplabdhata badhegi aur हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: The Prime Minister said a centre of excellence is being established in Leh to provide quality education and technology training to youth of Ladakh. The Ministry of Defence today signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of the GSAT-7C communication satellite for the Indian Air Force and Varun Astra heavyweight torpedoes for the Indian Navy. The contract for the GSAT-7C satellite, valued at over 2,500 crore rupees, was signed with New Space India Limited, Bengaluru. The contract for Varun Astra heavyweight torpedoes, worth over 1,500 crore rupees, was signed with Bharat Dynamics Limited, Hyderabad. The ministry said the two contracts signed in New Delhi mark a significant step towards strengthening domestic defence manufacturing and promoting self-reliance in critical technologies. The Supreme Court has issued notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and other India bloc leaders on a petition raising concerns over their march to the Apex Court in the national capital over alleged irregularities in the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls. Mr. Gandhi and other opposition leaders held a march to the Supreme Court and entered the court registry on 12th of this month to file the petition amid protests demanding the resignation of the Chief Election Commissioner over alleged SIR irregularities. It also issued notices to Congress leader Mallikarjun Kharge, Samajwadi Party, TMC MP Mahua Moitra, the Kerala Pradesh Congress Committee. The top court observed that nobody can browbeat the judiciary. During the

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे आपकी सेवा में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।